0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को। अभी आप घर में आते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार या सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें मॉरिशस का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा। नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लेंगे। बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण के बाद आर्या नावामाई ने आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति हाल में हुई है, लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहले से तैयार हैं और उन्हें अपने परिवार तथा मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को हॉलिडे इन मॉरिशस मोथेजो में किया गया। इसमें मॉरिशस नौजवान शामिल हो रहे हैं। इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। विदेश की खबरों में अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कल एक हादसा ज्यादा गंभीर रूप लेने से पहले थमा। एयरपोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़कर रनवे पार कर रहे एक व्यक्ति की विमान से टकराकर मौत हो गई। इस हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। लॉस एंजेलिस जा रही फ्रंटियर एयरलाइन के विमान के उड़ान भरते समय यह हादसा हुआ। टक्कर के तुरंत बाद विमान की इंजन में आग लग गई। कैबिन में धुआं भरने लगा। टेक ऑफ तुरंत रोक दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा हमारे इलाके पर स्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। रात के दौरान ऊंचाइयों पर फिर से बादल घिराएंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:29 पर, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: ताजगी भरी शुरुआत आपकी रहे, यही हमारी उम्मीद है। सुप्रभात, नमस्कार। आज रविवार 10

0: ज्योतिषमयी की इस भोर की बेला कार्यक्रम में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। सुबह की ये बेला है, सुबह की ये बेला शांति लेकर आती है, ताजगी लेकर आती है, और आती है जब भी विश्वास को अपने साथ लेकर आती है। आइए इसी ताजगी, इसी सौंदर्य, आस्था और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं हम इस सुबह को, इस दिन को, और इस सुबह की बेला में ये आस्था, ये विश्वास ही हमें अपने मंतव्य की ओर ले जाएगी। तो आप लोगों का हम स्वागत करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज के वैदिक वाणी कार्यक्रम के साथ। सुनिएगा आर्य सभा मॉरिशस के आचार्य बद्री जी को।
1: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
2: ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतग्म समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्रिय श्रोतागण, आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वैदिक वाणी कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जिस दिव्य मंत्र का चिंतन करने जा रहे हैं वह मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है बल्कि जीवन की दिशा, कर्तव्य की प्रेरणा और मुक्ति का रहस्य अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। यह मंत्र मानव को यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है, कर्म का महत्व क्या है, और कैसे मनुष्य संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रह सकता है। यह हमें जीवन से भागने की नहीं बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की शिक्षा देता है। श्रोताओं, जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं कुर्वन् नेवेह, तो यह शब्द हमारे भीतर एक चेतना जागता है, यह हमें आलस्य से बाहर निकालता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम कर्म करें, निरंतर कर्म करें, जागरूक होकर कर्म करें। वैदिक दृष्टि में कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है बल्कि विचार, भावना और संकल्प भी कर्म ही है। मनुष्य का प्रत्येक क्षण कर्म से जुड़ा हुआ है। इस संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य कर्म न कर रहा हो। वह यदि बैठा है तब भी सोच रहा है, यदि मौन है तब भी मन में विचार कर रहे हैं। अतः कर्म से बचना संभव नहीं है। यही कारण है कि यह मंत्र कहता है कर्म करते हुए ही जीवन जीने की इच्छा करो। जिजी विषय क्षतग्म समाह, इस वाक्य में दीर्घ जीवन की कामना व्यक्त की गई है, किंतु यह दीर्घ जीवन केवल भोग और सुख के लिए नहीं है, यह जीवन कर्तव्य के लिए है, साधना के लिए है, आत्मविकास के लिए है। मनुष्य को लंबा जीवन इसलिए चाहिए ताकि वह अपने कर्मों के माध्यम से स्वयं को परिष्कृत कर सके, समाज की सेवा कर सके और अंततः आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। श्रोताओं, आज के युग में जीवन की परिभाषा बदल गई है। लोग जीवन को केवल सुविधाओं, धन और भौतिक उपलब्धियों के आधार पर मापते हैं, किंतु यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक मूल्य कर्म है। वह कर्म जो धर्म के अनुरूप हो, जो कर्तव्य पर आधारित हो और जो निस्वार्थ

0: निस्वार्थ भाव से किया गया हो। श्रोतागण, अब इस मंत्र का सबसे गूढ़ और गहन भाग है, न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ है कि कर्म करने पर भी कर्म का बंधन नहीं होता। यह बात पहली दृष्टि में विरोधाभासी लग सकती है। सामान्यतः हम समझते हैं कि कर्म ही बंधन का कारण है। यदि हम कुछ करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि कर्म करने पर भी बंधन नहीं होगा? इसका उत्तर इस मंत्र के गूढ़ भाव में छिपा हुआ है। जब मनुष्य अपने कर्म को स्वार्थ, अहंकार और फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है, तब वह कर्म उसे बांधता नहीं। जब वह अपने कर्तव्य को केवल कर्तव्य समझकर निभाता है, तब वह कर्म शुद्ध हो जाता है। जब एक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मुझे इसका फल चाहिए, तब वह अहंकार और आसक्ति में बंध जाता है। यही बंधन का कारण है। किंतु जब वह यह समझता है कि वह केवल एक साधन है, वास्तविक कर्ता परमात्मा है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। वह अपने कर्म को समर्पण के भाव से करने लगता है। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य कर्म का फल नहीं प्राप्त करेगा। इसका अर्थ यह है कि वह फल की चिंता में उलझे बिना कर्म करेगा। वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा, किंतु परिणाम को लेकर व्याकुल नहीं होगा। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम वैदिक के सामान्य उदाहरणों को देख सकते हैं। श्रोताओं, एक विद्यार्थी यदि केवल परिणाम की चिंता करता है तो वह पढ़ाई को तनाव के रूप में देखेगा। उसका मन भय और दबाव में रहेगा। किंतु यदि वह अध्ययन को अपने कर्तव्य के रूप में देखे, ज्ञान प्राप्ति के आनंद के रूप में देखे, तो उसका मन शांत रहेगा और वह अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। श्रोतागण, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह पूरी मेहनत करता है। वह भूमि को तैयार करता है, जल देता है, देखभाल करता है, किंतु वह हर क्षण यह चिंता नहीं करता कि फसल कब आएगी। वह अपना कर्म करता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है। यही निष्काम कर्म है। एक चिकित्सक यदि केवल धन के लिए सेवा करता है तो उसका कर्म सीमित हो जाता है। किंतु यदि वह सेवा भाव से कार्य करता है तो उसका कर्म महान बन जाता है। यह केवल रोग का नहीं करता, बल्कि मानवता की सेवा करता है। श्रोताओं, यह मंत्र हमें सिखाता है कि हमारा प्रत्येक कर्म एक यज्ञ बन सकता है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है समर्पण। जब हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब वह पवित्र हो जाता है। वैदिक परंपरा में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि जीवन को एक यज्ञ के रूप में जीना है। जब हम अपने समय, श्रम और प्रतिभा को समाज और ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमारा जीवन यज्ञमय हो जाता है। यह मंत्र आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आज का युग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, तनाव और असंतोष का युग है। लोग अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु भीतर से शांत नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्होंने कर्म को केवल साधन बना लिया है, साध्य नहीं। वे कर्म को केवल फल प्राप्त करने के लिए करते हैं, न कि कर्तव्य के रूप में। श्रोताओं, यदि वही व्यक्ति इस मंत्र के सिद्धांत को समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। वह अपने कार्य को सेवा के रूप में देखेगा, कर्तव्य के रूप में देखेगा। वह पूरी निष्ठा से कार्य करेगा किंतु परिणाम को लेकर चिंतित नहीं होगा। इससे उसका मन शांत रहेगा और उसका कार्य भी अधिक प्रभावी होगा। श्रोताओं, भविष्य के संदर्भ में यह मंत्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा है, मानव जीवन की गति तेज होती जा रही है। मशीनें कार्य को सफल बना रही हैं, किंतु मनुष्य का मन अधिक जटिल होता जा रहा है। ऐसे समय में यह मंत्र मानव को संतुलन सिखाएगा। यह उसे याद दिलाएगा कि वह केवल एक यांत्रिक प्राणी नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है। उसका उद्देश्य केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि सही भावना से कार्य करना है। श्रोतागण, शिक्षा के क्षेत्र में यदि इस मंत्र को अपनाया जाए तो विद्यार्थियों में केवल बौद्धिक विकास ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होगा। वे केवल सफलता के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि कर्तव्य और चरित्र को भी महत्व देंगे। समाज में यदि प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाए तो भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण में कमी आ सकती है, क्योंकि जब कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाएगा तब किसी को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मंत्र अत्यंत उच्च कोटि का मंत्र है। यह हमें सिखाता है कि संसार और आध्यात्मिकता अलग नहीं है। हम संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इसके लिए केवल दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपने कर्म को समर्पण के भाव से करते हैं, जब हम अहंकार और आसक्ति को त्याग देते हैं, तब हमारा प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है। यही कर्मयोग की अवस्था है। श्रोताओं, जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। वह कार्य करता है किंतु कार्य उसे बांधता नहीं। वह सफलता प्राप्त करता है किंतु अहंकार में नहीं डूबता। वह असफलता का सामना करता है किंतु निराश नहीं होता। अतः श्रोताओं, यह मंत्र हमें एक स्पष्ट संदेश देता है। जीवन से मत भागो, कर्म से मत डरो, बल्कि कर्म को समझो, उसे सही भावना से करो। अपने प्रत्येक कार्य को कर्तव्य के रूप में स्वीकार करो। फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करो। इसी भाव के साथ हम अपने जीवन को एक यज्ञ बनाएं, अपने कर्म को पूजा बनाएं और अपने अस्तित्व को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी,
2: और आज हम सुन रहे थे आचार्य बद्री जी को।
3: रेडियो 24 hours a day।
2: इस समय 6:19 हुए हैं। चलिए आप लोगों के लिए पढ़ते हैं हम कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाकवा के निवासियों को सूचित करता है कि तौकिल गली, पावे दामो, गुतबुंतिया के एक भाग में

गुत क्लेफो नंबर एक नंबर तीन के एक भाग में, गुत वैता नंबर एक नंबर दो और नंबर तीन के एक भाग में मॉडर्न स्क्वेयर, गुत लिम्बैतो के एक भाग में, गुज क्लब के एक भाग में, गुत जैक्सन और गुत लॉम्बेची के भी एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 10 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये भी सूचित करता है कि पोर्टो कॉलोनी के रुई कोस्टल, रुई कासगुन और ला पॉइंट लग्जरी लिमिटेड फेज 2 में आज रविवार 10 मई को सुबह 8 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये भी विज्ञप्ति है कि पुथरदो हमलेट वीओएस में बाजार पुथरदो और मैडम बॉब रोड एस्पेरेंस ट्रेविशे में आज रविवार 10 मई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई इन सभी इलाकों में फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। और अब वक्त हुआ है हमारे कुछ भाव भरे गानों का, तो चलिए ज़रा हम सुनते हैं हेमलता की आवाज़ का ये गाना। ये गाना हमने फ़कीरा मूवी से लिया है और अकेले चलने वालों को हिम्मत देता है ये गाना। साथ चलने वालों की कमी नहीं होती इस जहां में, पर हर कदम पर साथ मिल जाए ये ज़रूरी भी नहीं होता। इसीलिए अपने मन को अकेले चलने की आदत दिलानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अकेले चलने की ताकत का अभ्यास हम सबको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। तो चलिए इस अभ्यास में ज़रूर लगे रहें हम।

चलते जाना है हमको, इस राह पे चलते जाना है और इस ज़िंदगी को बहुत हसीन तरीके से निभाना है। ज़िंदगी को नाटक ही समझिएगा, हर कोई अपना अभिनय करता है, अपने अभिनय के साथ ही हम इस ज़िंदगी को सुंदर बना सकते हैं। चलिए ज़रा नाटक मूवी का ये गाना सुनिएगा और इस गाने के साथ ही हम थोड़ा सा आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि अभी 6:30 बजे आप सुनिएगा आज का समाचार बुलेटिन याचना से।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार और आदाब। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत। मॉरिशस से एक भारी डेलीगेशन इसमें भाग ले रहा है। बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण समारोह के बाद आया नवा माह आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाल रही है। इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी। उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए तैयार। वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को की गई। इसमें मॉरिशस नौजवान शामिल हो रहे हैं। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने इन सभी युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका की निभाने की मांग। विदेश की खबरों में फ्रंटियर एयरलाइंस का एक विमान कल अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक व्यक्ति से टकराया जो रनवे पार कर रहा था। इस हादसे के बाद विमान की इंजन में आग। सभी यात्री सुरक्षित और रनवे पार करने वाला व्यक्ति की मृत्यु। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्रीय और सरकारी नेता तथा ठेकेदार और निवेशक सहित 4000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठकों में भाग लेंगे। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पाले दे लीलीजे में कई आर्थिक पार्टनर हाल में राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों की मौजूदगी में एकत्र हुए और अगले 11 और 12 मई को नैरोबी में लगने वाली अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के बारे में चर्चा की गई। IBR के CEO और बिजनेस मॉरिशस के अध्यक्ष अनुलाशेस भी इस तैयारी बैठक में उपस्थित। फ्रांस और अफ्रीका के बीच व्यावसायिक संबंधों की मजबूती, उन्होंने कहा,
2: il était important pour le président Macron donc de mettre en place cette coalition et de faire
1: राष्ट्रपति मैक्रों के लिए ये मुलाकात जरूरी। साथ में कई क्षेत्रों में तैनात पक्षों को बुलाया गया। निसंदेह इससे संकेत मिलता है कि इसकी बदौलत मॉरिशस की विजिबिलिटी बढ़ेगी और इन सभी प्रतिनिधियों को विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। अफ्रीका फॉरवर्ड को लेकर चुनौतियों के बारे में भी बेहतर रूप से जानने का अवसर मिलेगा। ठेकेदारों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी पैदा करने के लिए, समृद्धि उत्पन्न करने के लिए किस तरह हम एक वास्तविक साझेदारी कायम कर सकते हैं अफ्रीकी देशों से मॉरिशस और आज के यूरोप के बीच। अगले सोमवार और मंगलवार को मॉरिशस से पब्लिक एवं निजी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल केन्या जाएगा, जहां पर अफ्रीकी फ्रांसीसी आदान प्रदान पर बातचीत होगी। पोर्टिस में फ्रांस के राजदूतावास से फ्रेडेरिक बोंटन ने इस शिखर बैठक में सभी संबंधित पक्षों के लिए संभावना और चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अनुमान है कि पूरे अफ्रीका से 40 राष्ट्र एवं सरकारी नेता भाग लेंगे। निजी सेक्टर के लिए CEO समिट होगी। 1500 कंपनी मालिक होंगे, छोटे बड़े सभी, फ्रांस से एक तिहाई और दो तिहाई अफ्रीका से। फ्रांस और अफ्रीका के बीच नई गतिशीलता का प्रतीक है।
3: Illustre parfaitement le renouveau des relations entre la France et l'Afrique.
1: इस तरह अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर बैठक फ्रांसीसी अफ्रीकी आर्थिक सहयोग को फिर से निर्धारित करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मंच की तरह है। मॉरिशस इस उभरते महाद्वीप की ओर एक पुल की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।
0: बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवा माह ने आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति हाल में हुई, लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनको सुनते हैं।
4: Une faire prestation c'est bon précisément mercredi mais tout ça une activité qui vient après là c'est une activité qui organisée par le ministère du gender et qui finit prévoir avant

0: बुधवार को मैंने शपथ ग्रहण की। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय द्वारा जिन गतिविधियों का आयोजन किया गया है वो पहले से मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई थी। मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर मनोनीत करने से पहले ही मैं तैयार हूँ। यहाँ से मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना है जहाँ पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। फिर मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री को संबोधित संसदीय प्रश्नों के जवाब की तैयारी मुझे करना है, जिनका उत्तर मुझे ही देना है। फिर जेंडर इक्वालिटी मंत्री के रूप में मुझसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब की भी तैयारी करना है।
1: En tant que ministre gender, donc vous prépare moi ça. Donc nous guettons du coup, mais on pensait qu'il faut beaucoup pas faire.
2: Fonds militant progressif ne khud ko rajnitik paridrishy mein ek vikalp ke roop mein prastut kiya. Iske ek sadasya Paul Behange ne yuvaon aur mahilaon se naye andolan ke uddeshyon ka samarthan karne ki appeal ki. ये नया आंदोलन आधिकारिक रूप से कलवाकवा फिनिक्स नगर पालिका के हॉल में आयोजित संस्थापक सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया। पर बेहोशी को सुनते हैं।
3: Nous comptons sur tous nos jeunes. Jeunes c'est l'avenir. Nous comptons sur tous nos jeunes dans tous les 20 circonscriptions pour organiser. Mais nos moins jeunes aussi, nos vétérans aussi, nos madame, nous comptons. Nous avons tout pour nous organiser. Nous venons pour regret, non, rien. Nous priorité, c'était pour MSMDO. Mais aujourd'hui, nous priorité, c'est pas si main, pas seulement MSM, mais parti travailliste.
2: और फॉर्म मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के दूसरे सदस्य चेतन बाबूलाल ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आंदोलन की सोच और दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया। उनको सुनते हैं।
4: Nous visions dans un FMP clair. Nous avons nous ban 10 principes. Mais nous pour aussi rendre ban institution notre dignité. Protège nous l'environnement pour des bons et faire Maurice vienne un modèle innovation. Nous avons envie que nos pays produisent à son propre manger et son propre l'énergie pour qu'ils nous n'aient plus souffert chaque fois et la crise des eaux.
2: वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को हॉलीडे इन मॉरिशस मोथेजो में की गई। इसमें मॉरिशस नौजवान शामिल हो रहे हैं। इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। मंत्री ने अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों में अधिक निवेश पर भी बात की। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तनाव, परिवहन लागत और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का भी उल्लेख किया और कहा कि मॉरिशस को अपनी खाद्य सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने की आवश्यकता है। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्ग के लोग प्रभावित हैं। कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं। इस को ध्यान में रखकर मॉरिशस मरीजों के सर्जरी के लिए सरकार की पहल पर भारत से दो रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: 40 साल से कम आयु का ये मरीज पंक्रियास के कैंसर से पीड़ित हैं। इस बीमारी का पता केवल एक महीना पहले चला था। आज वो कई घंटों तक चली बेहद जटिल सर्जरी के बाद आईसीयू में हैं। डॉक्टर सरावना राजामणिकम कहते हैं,
6: In the last few days, we have seen that,
5: पिछले दिनों के दौरान हमने देखा कि छोटा देश होने के बावजूद कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा है। फेफड़े और पैंक्रियास के कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हमने देखा कि इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। सिगरेट जलाना एक मुख्य कारण है, लेकिन खान पान की बदलती आदतें और पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग भी कुछ कारण है। ये जटिल ऑपरेशन डॉक्टर दीप्ति मिश्रा की सहायता से किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अन्य सर्जरी भी निर्धारित हैं, जिससे भारतीय और मॉरिशस के सर्जन्स के बीच विशेषज्ञता का आदान प्रदान संभव होगा। डॉक्टर दीप्ति मिश्रा कहती हैं,
7: We are planning

0: मिनिमल इनवेसिव है, जस्ट लैप्रोस्कोपिक।
1: हमने फेफड़े के कैंसर से पीड़ित मरीजों पर पैरास्कोपी से ऑपरेशन किया है। इस सहयोग से हम सब और बहुत कुछ सीख रहे हैं। मॉरिशन डॉक्टरों के साथ हम अपनी विशेषज्ञता बांट रहे हैं। दोनों विशेषज्ञ मॉरिशस सरकार से अनुरोध पर मॉरिशस आए हैं। वे लगभग 10 मरीजों का ऑपरेशन करेंगे, जिनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजना पड़ता। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं, एक ऑपरेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लग रहे हैं बिना ब्रेक लिए, और हमसे एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं। हम उनका हवाई टिकट चुकाते हैं, उनका अच्छा स्वागत करते हैं। वे मॉरिशस आना पसंद करते हैं, मदद करना पसंद करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उनके साथ साथ उनके ग्रुप के अन्य विशेषज्ञों को भी हमारी मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पिछले सोमवार को मॉरिशस पहुंचे ये डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी के भी विशेषज्ञ हैं।
2: मॉरिशस में आवारा कुत्तों की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। उनके सटीक आंकड़ों पर हाल या जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद अधिकारी मानते हैं कि स्थिति लगातार बिगड़ रही है, खासकर जानवरों को छोड़ दिए जाने और नसबंदी की कमी के कारण। जैसा कि मानो डुगवी ने बताया, मोरिस स्टेरिलीज उजानिमो का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग इस पशु आपात स्थिति से निपटने के लिए टिकाऊ समाधान लागू करने में मदद कर सकता है। उनको सुनते हैं।
0: पशुओं की स्थिति चिंताजनक है, जो दिन ब दिन बिगड़ रही है, इसलिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर नसबंदी का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आवारा कुत्तों की आबादी को घटाने के लिए ये पर्याप्त नहीं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सीख ले सकते हैं, वे हमारी मदद के लिए तत्पर हैं, ताकि व्यापक नसबंदी चलाया जा सके निर्धारित समय में। हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।
3: Nous sommes complètement pour collaborer avec le gouvernement et je pense que c'est que comme ça que ça peut fonctionner d'ailleurs parce qu'on est beaucoup sur le terrain aussi nous les ONG.
2: विदेश की खबरों में अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कल एक हादसा ज्यादा गंभीर रूप लेने से थम गया। एयरपोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़कर रनवे पार कर रहे एक व्यक्ति की विमान से टकराने से मौत हो गई। ये हादसा लॉस एंजेलस जा रही फ्रंटियर एयरलाइन के विमान की उड़ान भरते समय हुआ। टक्कर के तुरंत बाद विमान की इंजन में आग लग गई और कैबिन में धुआं भरने लगा। टेक ऑफ तुरंत रोक दिया गया और सभी 224 यात्रियों तथा 7 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और ग्रीस में मछुआरों की एक रहस्यमय ड्रोन बोट मिला है, जिसमें विस्फोटक भरे हुए हैं। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। ये नौका यूक्रेन में बने एक मानव रहित सतही वाहन है, जो आयोनियन द्वीप पर मिला। अभी तक ये साफ नहीं कि ग्रीस की एयर गुफा में मिली ये नौका आखिर वहां पहुंची कैसे। जानते हैं मौसम का हाल। मॉरिशस में तेज लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा देश में अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी, रात को फिर से ऊंचाइयों पर बादल घिराएगी और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:29 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े

0: रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रेलवे रोड गुडलैंड्स में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्डर के श्री मुस्तफ़ा गुलक खान जो फिजा कवाश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके मकान रेलवे रोड गुडलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। जयपाल लेन प्लेंडीपापाई में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल बोक्यूस जो जीवन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके बेटे तश्विन कमल बोक्यूस के मकान जयपाल लेन प्लेंडीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रुई जुल मालक थोंगबा पोटली में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री जीत कुमार लक्ष्मी जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व पुलिस सर्जन थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी अमगम दाना लक्ष्मी के मकान मालाक थोंगबा पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रारो त्याहूज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री रामेश्वर गिरधारी जो हामिश बाजौ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 उनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रारो त्याहूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। एवेन्यू पांचू स्टैनली रोजिल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मजय भवानी दीन जो किशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके मकान एवेन्यू पांचू स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगाड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। कोपेलेन त्याहूज में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री राज माता जो राज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनकी पत्नी सीता पूर्णिमा माता के मकान कोपेलेन त्याहूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। फ्रांस में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जो अनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले लीबेट वाकवा रहा करती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दोपहर 1:45 उनके मकान फ्रांस में उठाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:45 PM इन फ्रांस। जोली स्ट्रीट 4 मे 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगत रॉय उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी और उनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट का थोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रेया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन लेटर। 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण, श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जो पिपित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी मंगलवार को सुबह 10 बजे मोहा पृथ्वी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आज की सूचनाएं।
2: आर्य सभा मॉरिशस के तत्वधान में विद्या एवं गुरुकुल समिति रिवजो हांपा, आर्य जिला परिषद तथा गुडलैंड्स आर्य समाज के सहयोग से विद्या दिवस के संदर्भ में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर छठी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को परिणाम पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्थान गुडलैंड्स आर्य समाज मंदिर। तारीख रविवार 10 मई 2026। समय दोपहर 1 बजे से सपहर के 3 बजे तक।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

सुबह के 6:52 सुनने वालों को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंग्लैंड के दो लाल और दोनों ही बेहाल, जबकि मैनचेस्टर सिटी का बना हुआ है दबाव। आज रात 7:30 आर्सेनल कैसे करेगा अपना बचाव सुनते रहिए, पर सबसे पहले कल के खेले गए मैचों के नतीजे सुनिए। लिवरपूल ने कल अपना मैच ड्रॉ किया एनफील्ड में कल चेल्सी के साथ। लिवरपूल 1-1। खेल का पहला गोल रायन ग्रेवेनबर्ग ने स्कोर किया खेल के 6th मिनट पर ही, जहां लगने लगा था कि लिवरपूल बाजी मार जाएगा, वहीं पर घुमा के मारा एंजो फर्नांडेज ने खेल के 35th मिनट पर। सो मैच अंत तक यही स्कोर पर रहा, 1-1। अपने ही मैदान में, अपने ही घर में लिवरपूल कह सकते हैं हार गया, ये बाजी हार गया, क्योंकि मैच उनके पक्ष में नहीं था। चेल्सी ने एक नया तेवर दिखाया, एक नया चेहरा दिखाया, और आर्ने स्लॉट की टीम में अब न जान है न दम है। इस बारे में सुनते रहिए। कल का जो दूसरा मैच था उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भी बेहाल हो गए, क्योंकि सन्डरलैंड के स्टेडियम ऑफ लाइट में वे एक भी गोल नहीं बना पाए। सन्डरलैंड ने भी खूब डोमिनेट किया अपने होम मैदान पे, अंत तक गोल बन सकते थे दोनों ओर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच 0-0 पर समाप्त हुआ, सन्डरलैंड 0-0। जबकि बाकी मैचों में बोर्नमुथ का दबाव जारी है, उसने कल एवजा कर फुलहाम को 1-0 से परास्त किया। अब बोर्नमुथ 6th स्थान पर है मजबूती के साथ, एक खतरा बनता जा रहा है एस्टन विला और लिवरपूल के लिए, अब जबकि केवल 2 सप्ताह बचे हैं। फुलहाम 0-1। ब्राइटन ने वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 3-0 से हराया, और कल के लेट मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी के द सिटीजन्स ने ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से परास्त किया। जेरेमी डोकू का एक पहला गोल सेकेंड हाफ में, अर्लिंग हैलन और आखिर में इंजरी टाइम में ओमार मारमुश का एक और गोल, यानी मैनचेस्टर सिटी 3-0। ऐसे में अब आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच फिर से केवल 2 अंकों का अंतर हो गया है। सिटी के पास हैं 74 पॉइंट्स, आर्सेनल के पास 76, मैनचेस्टर यूनाइटेड 65, लिवरपूल के पास 59, एस्टन विला 1 अंक पीछे 58 अंक। आज वो अपना लेट मैच खेलकर लिवरपूल को पार कर सकता है, जबकि बोर्नमुथ के पास हैं 55 अंक 55 पॉइंट्स, यानी बोर्नमुथ और लिवरपूल के बीच केवल अब 4 अंकों का अंतर है। सो इतना सब कुछ कल के खेले गए मैचों को लेकर। आज प्रीमियर लीग का ये 35वां सप्ताह जारी रखा जाएगा। बर्नली का मुकाबला 5:00 एस्टन विला के साथ। द विलेंस आज लिवरपूल को पार कर सकते हैं जीत की स्थिति में, बर्नली के टफ मूव में मैच टफ होगा। क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला एवर्टन से सिल्हर्स्ट पार्क में, जबकि नॉटिंघम फॉरेस्ट खेलेगी आज 5:00 ही न्यूकासल यूनाइटेड के विरुद्ध। और आज आर्सेनल के लिए आर या पार, वेस्टहैम यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल बड़ा कड़ा मुकाबला साबित

होगा दोनों टीमों के लिए। वेस्टहाम को चाहिए रिलेगेशन जोन से निकलना, वो अभी टोटेनहम से केवल एक अंक पीछे है, जबकि आर्सेनल को टाइटल हासिल करना है। सो दोनों ओर से तगड़ा मुकाबला, वेस्टहाम यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, आज रात 7:30 बजे। देखते रहिए और सुनते रहिए प्रीमियर लीग के अलावा। कल जो बाकी चैंपियनशिप हैं उधर भी कई मैच खेले गए। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप का दूसरा प्रमोशन प्ले ऑफ भी ड्रॉ पर ही संपन्न हुआ, मिडल्सब्रो 0-0। लीग वन में जो दो मैच खेले गए प्ले ऑफ में, उनमें स्टॉकपोर्ट ने एवेजाकर स्टेवेनेज को 1-0 से हराया, बोल्टन 1-0। जबकि स्पेन के लालिगा में आज रात 11 बजे एक महामुकाबला रखा गया है, द एल क्लासिको, एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच। अभी 11 अंकों का अंतर है, रियल मैड्रिड में एक क्राइसिस, संकट की घड़ी चल रही है। सो आज रात 11 बजे से ही बार्सिलोना चैंपियन बन सकता है, केवल उसको चाहिए एक अंक और जीत की स्थिति में सोने पे सुहागा। सो आज रात 11 बजे द एल क्लासिको, एफसी बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। इस बीच कल एथलेटिको मैड्रिड की हार हुई, एथलेटिको 0 सेल्टा वीगो 1, रियल सोसिएदाद 2 बेटिस 2, सेविलिया ने स्पानियोल को 2-1 से हराया और एल्चे 1 अलावेस 1। जर्मनी के बुंडेसलीगा में चैंपियन टीम बायर्न म्यूनिख की जीत हुई 1-0 से वुल्फ्सबर्ग के विरुद्ध, एन मौके पे ये गोल स्कोर किया गया, वुल्फ्सबर्ग 0 बायर्न म्यूनिख 1। स्टुटगार्ट ने लेवरकुसन को 3-1 से हराया, लाइप्ज़िग 2 सिन पाउली 1, होफेनहाइम 1 ब्रेमेन 0 और ऑक्सबर्ग 3 बोरुशा मंचनगढ़ 1। इटली के सीरिया में कल चैंपियन टीम इंटर मिलान ने एवेजाकर एसएस लाजियो को 3-0 से हराया, लेच्चे 0 यूवेंटुस 1 और कैग्लियारी 0 उडिनेजे 2। फिर बाकी जो मैच हैं उनमें इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो उनमें कल दो मैच खेले गए, मोहन बगान और गोवा के बीच मैच ड्रॉ रहा 1-1, तो जमशेदपुर की हार हुई, जमशेदपुर 0 बेंगलुरु 1। ऐसे में ईस्ट बंगाल अभी लीग टेबल के पहले स्थान पर है 21 अंक लिए, मोहन बगान के पास भी 21 अंक, जमशेदपुर भी 21, दूसरे स्थान पर है बेंगलुरु 20 अंक लिए, जबकि आखिरी पोजीशन पर है अभी मोहम्मदन केवल 3 अंकों के साथ। बात करें अब टेनिस की, कल परसों नोवाक जोकोविच की हार हुई थी, कल विश्व नंबर 1 लड़कियों की कैटेगरी में नंबर 1 अरीना सबालेंका भी इटालियन ओपन से आउट हो गई, उसकी ये 3 मैचों में ये उसकी दूसरी हार है। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका को हराया, सोराना क्रिस्चिया ने इटालियन ओपन के तीसरे राउंड में ही 2-6 से सबसे पहले अरीना सबालेंका की जीत हुई, लेकिन बाकी जो दो सेट हैं 6-3 और 7-5 से हरा दिया रोमेनिया के 27th रैंक्ड यानी 27वें स्थान पर स्थित क्रिस्चिया ने, कल क्रिस्चिया की कल जीत हुई। सो ऐसे में अरीना सबालेंका भी हार गई। और क्रिकेट की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के अंतर्गत कल जो मैच खेला गया उसमें कल आज दो मैच खेले जाएंगे, आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला है मुंबई इंडियंस से। कल के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से परास्त किया। स्थानीय तौर पर बात करें तो आज फिनिक्स के हैंडबॉल जिम्नेजियम में महा मैच रखा गया है, मॉरिशस की अंडर 20 टीम और रेनियन आइलैंड की भी एक अंडर 20 टीम आई हुई है यहाँ पर मॉरिशस में। आज इन दोनों के बीच एक फ्रेंडली और गाला मैच खेला जाएगा। सो आज दिन के 11 बजे फिनिक्स के जिम्नेजियम में हमारी लड़कियों को का समर्थन को सपोर्ट करने ज़रूर जाएगा। मॉरिशस की अंडर 20 टीम का मुकाबला हैंडबॉल में आज रेनियन आइलैंड की टीम से होगा दिन के 11 बजे से। फुटबॉल की बात करें तो मॉरिशस के एक्स इंटरनेशनल खिलाड़ी गोल्डन स्टार्स, द वन एंड ओनली गोल्डन स्टार्स का मुकाबला आज शाम क्यूपिप के स्टाद वेलोड्रोम में होगा लेक्सप्रेस अखबार के विरुद्ध। इस टीम गोल्डन स्टार्स की 32वीं सालगिरह के अवसर पर ये मैच खेला जाएगा, जबकि कैडेट्स क्लब भी आज दिन के सपहर साढ़े तीन बजे वेतियाँ कैडेट्स क्लब एक गला मैच खेलने वाला है पालमा में, अपने पुराने

खिलाड़ी कैनन पानिकन के मृत्यु के सम्मान में कैडिस क्लब का मुकाबला आज पाल्मा में ही शाम 3:30 बजे अमी दे लेस्ट के खिलाफ है। ये मैच एक आखिरी मैच होगा तैयारी के रूप में, क्योंकि कैडिस क्लब अब रोड्रिग्स में जाएगा वहाँ पर अपने कई मैच खेलने के लिए। सो इतना सब कुछ स्पोर्ट्स जगत में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय तौर पर भी। सुबह के 7:01 और 23 सेकंड, आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: इस समय सुबह के 7:01 हुए हैं और हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
0: हमारी आपकी मुलाकात रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना शो में हो रही है और हमारा आपका ये साथ बहुत ही प्यारा रहेगा। हमारा आपका साथ रहेगा 9 तक। आज रविवार 10 मई के सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप लोगों का हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। जहां भी होंगे आप, जिस कार्य में भी व्यस्त होंगे आप, आपको सफलता अवश्य मिले। और सुबह है ये रविवार का कि यह है संडे की सुबह, सो कितने लोग इस वक्त अभी आराम कर ही रहे होंगे और अभी अभी नींद खुली होगी, तो आपको सुप्रभात कहते हैं। ये सुबह आपके लिए बहुत ही शांत, बहुत ही मंगलमय रहे, ऐसी दुआ करते हैं। आइए, आप लोगों के लिए गीतों के साथ साथ कई आइटम्स रखे हैं हमने, सो सबसे पहले आपको हम आहिस्ता आहिस्ता मूवी का ये गाना सुनवाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिएगा, आहिस्ता आहिस्ता इस दिन को शुरू कीजिएगा और इस दिन की खूबसूरती को भी महसूस कीजिएगा।

इस वक्त सुबह के 7:06 हुए हैं और आप लोगों के लिए पेश करते हैं हम अगला गीत। और ये है गीत इस प्रकार कि आप के यहाँ अगर बारिश हो भी रही हो तो आप इसको एंजॉय करेंगे, आपके यहाँ बारिश ना भी हो रही हो तो आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस बारिश के मौसम में जो गाना है ये गाना आप लोगों के दिमाग में ही ऐसी ठंडक ला देगा कि मन आपका बड़ा ही शांत हो जाएगा।

0: इस समय सुबह के 7:15 बजे हैं।
1: NBC Radio, 24 hours a day.
0: चलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां पढ़ते हैं हम आपके लिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पेचित रिविये के निवासियों को सूचित किया है कि अवे निधि वैसी तेली बैते अमाउंडिये चेन कोंकोड शो

0: दनमोये मोसलमो चेदी और रॉलरोड के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 10 मई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीधे मार्शल ब्रांड वेयर के निवासियों को सूचित करता है कि गुला तानिये इंडियन हाजी इसाक दोगियाऊ और गुतमिदिते गलियों में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 10 मई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। एक्वायर गांव के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि जयश्री गली स्कूल गली डिस्पेंसरी गली विलेज होल गली बिकमंगा गली और रामखेलावन गली तथा आसपास के इलाकों में और रॉयल रोड के एक भाग में आज रविवार 10 मई को सुबह 8:15 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी क्योंकि ज़रूरी मरम्मत कार्य होने वाले हैं। फ्लोरियाल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रेजिडेंस मोंगालकॉन गोविंदन लेन एस्पिटालिये नोएल स्ट्रीट नेल्सन स्ट्रीट बाजाक स्ट्रीट फ्लोरियाल रोड और विदेशी लेन के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 10 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सीबी कॉमोसलिन और कथकोको के निवासियों को सूचित करता है कि एनएसएलडी एनएचटीसी चर्च लेन दसन लेन एवेन्यू अजालिया हाई स्ट्रीट बिलो स्ट्रीट कमेलिया एवेन्यू और आसपास के इलाकों में कल सोमवार 11 मई को सुबह 9:15 बजे से दिन के 11 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इन मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। अब चलिए जरा हम सुनते हैं आज का मंगल विचार कार्यक्रम जिसे डॉक्टर माधुरी रामधारी जी पेश करेंगी। इस समय 7:19 हुए हैं। ये है रेडियो मॉरिशस।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए। मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति के साथ मनुष्य का क्या संबंध है और प्रकृति के प्रति मनुष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए, आइए विचार करें। प्र और कृति को जोड़ने से प्रकृति शब्द बनता है। प्र माने श्रेष्ठ और कृति का अर्थ है रचना। प्रकृति ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। एक बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तब उसके माता पिता बच्चे के आने से पहले कुछ तैयारियां करते हैं। घर में बच्चे के लिए एक साफ और सुरक्षित जगह का प्रबंध किया जाता है। उसके कपड़े, कंबल, तकिया, चादर, तौलिया आदि अनेक जरूरी सामानों की व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चे को किसी चीज की कमी न हो। मनुष्य के प्रथम माता पिता ईश्वर हैं।

0: ईश्वर ने भी मनुष्य को बनाने से पहले कुछ तैयारियां की। उन्होंने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्रकृति के अनेक अंग बनाए, ताकि मनुष्य को जीने के लिए जो भी जरूरत हो वह उसे प्रकृति से मिल जाए। धरती बनाने के बाद ईश्वर ने मनुष्य की रचना की। उन्होंने प्रकृति के 5 मुख्य तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को मिलाकर मनुष्य के शरीर को बनाया। ये 5 तत्व मृत्यु के बाद फिर से प्रकृति में मिल जाते हैं, अर्थात मनुष्य का शरीर भस्म होकर प्रकृति के साथ मिल जाता है। माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनके बच्चे को अच्छे गुण प्राप्त हो। ईश्वर भी माता पिता के रूप में यही चाहते हैं कि मनुष्य गुणवान बने। मनुष्य के शरीर को आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बनाने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य के जीवन में आकाश का विस्तार हो, वायु की शीतलता हो, अग्नि की ऊर्जा हो, जल का बहाव हो और पृथ्वी की विशालता हो। इन गुणों को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य प्रकृति की तरह संसार का भला कर सकता है। ऋग्वेद का उपदेश है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, अर्थात हे मनुष्य, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा कल्याण करते हैं उसी प्रकार तू भी कल्याण के मार्ग पर चल। मनुष्य को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसे शरीर और जीवन दोनों ही संसार का हित करने के लिए प्राप्त हुए हैं। प्रकृति से 5 तत्व अगर मनुष्य को नहीं मिलते तो न उसका शरीर बन पाता और न ही धरती पर उसका जीवन होता। जीव और प्रकृति हैं तो मनुष्य हैं, इसीलिए प्रकृति की स्तुति की जाती है। प्रकृति का तिरस्कार करना अपना विनाश करना होता है। एक शहर में बहुत तेजी से प्रगति होने लगी, जगह जगह पर बड़े बड़े कारखाने खड़े हुए और लोगों को नौकरियां मिली, परंतु कारखानों से निकलने वाले काले धुएं ने शहर की हवा में इतना जहर भर दिया कि लोगों को मजबूर होकर शहर छोड़ना पड़ा। आज वह शहर न मनुष्य के लिए और न ही पशु के लिए रहने योग्य है। कहीं ऐसा न हो कि प्रगति के नाम पर पूरी धरती वीरान हो जाए। श्रोताओं, जीवन से मृत्यु तक हमें जो भी मिलता है प्रकृति से ही मिलता है। प्रकृति का उपकार मानते हुए हम उसकी रक्षा करें। प्राचीन काल के ऋषि मुनि यज्ञ द्वारा प्रकृति को भोजन देते थे और उसके पदार्थों की रक्षा करते थे। प्रकृति उन्हें बदले में कई गुना ज्यादा लौटाती थी। हम भी ऐसा उपाय करें जिससे कि प्रकृति की कृपा हम पर बनी रहे। कभी भूल कर भी प्रकृति से खिलवाड़ न करें, सही कदम उठाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध वायु प्राप्त हो। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: झलकियां
1: झलकियां
2: इस समय 7:33 हुए हैं। चलिए जरा आपको बताते हैं हम छोटी सी झलक हमारे रेडियो के प्रोग्रामों के बारे में। ये रेडियो मॉरिशस है और रेडियो मॉरिशस पर इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज का सुबह का नजराना प्रोग्राम। और अभी 8 बजे आप सुनिएगा भोजपुरी में समाचार, उसके बाद पैगाम आपके नाम प्रोग्राम पेश करेंगे हम, जिसमें आप अपने अपनों के नाम विशेष भेज सकते हैं। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मैसेजेस भी भेज सकते हैं। अगर मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो अभी से ही शुरू कर सकते हैं। नंबर हमारा है 5251700005। और फिर 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुनिएगा आज का मंगलाचरण कार्यक्रम। नीतूषा पेश करेंगी। आज का कार्यक्रम आधारित रहेगा सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से। 10 बजे के संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद उर्दू कार्यक्रम निसार लेकर आएंगे। और 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद तमिल कार्यक्रम लेकर आएंगे सुंदरम। फिर राजेंद्र पेश करेंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम आप सुनिएगा 12 बजे। 1 बजे मराठी प्रोग्राम सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में होगा। 2 बजे होगा आज का चाइनीज प्रोग्राम, जिसे जिन लेकर आएंगे। 3:30 बजे आप रंगारंग आज का गुजराती प्रोग्राम रत्ना जिसे सुनिएगा। फिर 4 बजे आप सुनिएगा आज का आप और हम कार्यक्रम पूजा से। और फिर 5 बजे पूजा लेकर आएंगे आज का तोहर पसंद कार्यक्रम। 6 बजे समाचार बुलेटिन होगा, और उसके बाद चाइनीज प्रोग्राम होगा जिसे होंग होंग पेश करेंगी। और पुवाना की प्रस्तुति में आज का तमिल प्रोग्राम होगा 7 बजे। 7:30 बजे शाम को आप तेलुगु प्रोग्राम सुनिएगा जिसे वंदना लेकर आएंगी। और शिरीष की प्रस्तुति में होगा आज का मराठी कार्यक्रम 7:50 पर। उसके बाद होगा आज का भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम, भक्ति गीतों का प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आज रोशनी

प्रस्तुति में सुनिएगा। 8:40 पर समीर जी लेकर आएंगे आज का महफिल शब कार्यक्रम उर्दू भाषा में, और 9 से 11 बजे तक रात्रि में आप सुनिएगा आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम सुमिता की प्रस्तुति में। फिर जो पुराने गानों के शौकीन हैं आप, तो जरूर साथ दीजिएगा 11 बजे से 12 बजे तक रात्रि में गिनीशाली कराएंगे आज का हमारा सुनहरे पल कार्यक्रम। तो ये थी एक छोटी सी झलक हमारे रेडियो मॉरिशस के प्रोग्रामों के बारे में, और मनोरंजन तो रेडियो मॉरिशस आपका करता ही रहता है। चलिए मनोरंजन का सिलसिला ही बढ़ाते हैं आगे। अनुराधा पोडवाल कुमार सानू की आवाज़ पेश करते हैं आपके लिए, आशिकी मूवी का ये गाना है गुनगुनाना तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए साथ मिलकर गुनगुनाते हैं।

0: सीटीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: आपके पति ने ना वो क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने से भरा नहीं है।
2: यहाँ मैंने अपनी मांग में 1 हफ्ते से सिंदूर नहीं भरा, आपको बिल की पड़ी है।
1: देखिए आप बुरा न माने तो मैं आपकी मांग भर देता हूँ।
2: मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला पड़ा
3: है। नौकरी बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए, ये अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ 6 महीने में।
4: रोड़ी चल रहा है यहाँ पर, टास्क दे रहे हो मुझे।
0: रविवार 10 मई को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म ड्रीम गर्ल 2, आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे पर फिल्माई गई ड्रीम गर्ल 2। ओए होए ओए, तेरे इश्क में दिल बन जा रहा ढूंढे है अपनी मंजिल। एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
5: मेरे सीने में दिल नहीं दोस्त, जिगर है जिगर, और वो कभी टूटता नहीं।
6: कौन? तेरा पप्पा बबुआ इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला, और यो तेरी अम्मा हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला। छोड़ो ना तने।
7: अरे खुद को तो छुड़ा ले पहले मोटे, सिर्फ चुलबुल नाम रख लेने से कोई दबंग नहीं बन जाता।
8: दिल का जो हाल है वो तुझे।
0: रविवार 10 मई को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म बेशरम रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा पर फिल्म आई गई 2013 की मूवी बेशरम।
9: बस रेडियो टेलीविजन पर हमारा आपका साथ रहता है और रहता है MBC की तरफ से बहुत सारे मनोरंजन के जज्बे, तो ज़रूर साथ देते रहिएगा और हमारी आपकी इस मुलाकात में कुछ मीठी मीठी बातें हो जाती हैं। चलिए ज़रा हम सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करें, पर याद रखिएगा कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। ज़िंदगी भी सड़क जैसी होती है, बस धैर्य के साथ चलते जाना है, सुखद मोड़ अवश्य आएगा।

चलिए लेकर आए हैं एक कहानी आपके लिए। एक ज्ञानी पंडित जी थे, उनके ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। एक बार वे एक शहर में ज्ञान बांटने गए। उन्हें वहां केवल 2 दिनों तक ठहरना था। पंडित जी का नाम बहुत लोगों ने सुना था। समस्या का हल निकालने में उनकी कुशलता पर हर कोई मोहित था। इस कारण पंडित जी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। समय कम था, लोग ज्यादा थे। पंडित जी का कार्य मुश्किल था, फिर भी पंडित जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक एक करके समस्या के बारे में सुनना शुरू किया, पर पहले व्यक्ति ने अपनी समस्या के बारे में बतानी शुरू की ही थी कि अगले व्यक्ति ने अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी। फिर क्या था, सभी ने एक दूसरे की बात काटनी शुरू कर दी, अपनी समस्या को जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द सुनाना शुरू किया, क्योंकि समय कम था। बातचीत के बदले हुआ क्या, शोर शराबा शुरू हो गया। पंडित जी ने सबको शांत कराया और उनसे मांग की कि हर कोई एक पर्ची में अपनी समस्या लिखे। सबने वैसा ही किया। पंडित जी ने सभी पर्चियों को एक टोकरी में डाला और उन्हें मिला दिया। फिर हर किसी को एक पर्ची निकाल कर पढ़ने को कहा। उसे पढ़कर यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या के बदले पर्ची वाली समस्या को

अपनाना चाहे तो वो सामने आए, ऐसा कहा पंडित जी ने। सभी ने एक पर्ची ली और पढ़ी, पर सामने कोई नहीं आया।

अछूता है इस जहां में। तो अगर हम भी साथ में इस बात को मान लें कि हर किसी के पास कोई न कोई समस्या है, इसलिए समस्या को बोझ न समझकर समस्या के समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश करें, तो जिंदगी में हमारी समस्याएं एक के बाद एक घटती जाएंगी। इस समय 7:51 हो चुके हैं। चलिए जरा सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज का ये गाना, और गमों को हम समेट कर उसे एक तरफ रखते हैं, गमों को सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं।

भूल के अपने गमों को आप आगे बढ़ते जाइए, यही उम्मीद हमारी रहेगी, सुख आपको हमेशा मिलती रहे। बस हम अंतिम गाना पेश करते हैं, फिलहाल भोजपुरी समाचार आप सुन पाएंगे और सुन पाएंगे भोजपुरी समाचार आप याचना की प्रस्तुति में। फिर उसके बाद मिलते हैं हम पैगाम आपके नाम शो लेकर। हम जा रहे हैं, हमारी याद आए तो बस इतना याद रखिएगा कि हम मिलेंगे अभी इस भोजपुरी समाचारों के बाद।

0: अपन घर मिलाल फजर के 8 बजल बा। सबके के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। 11-12 मई के केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगत बटे। फ्रांस आरी अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करे परी। ई महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 को राष्ट्र आरी सरकारी नेता आरी ठेकेदार लोग और निवेशक लोग के 4000 से जस्ती प्रतिनिधि लोग भाग लियन स। इमें मॉरिशस के गो 12 डेलीगेशन शामिल हुई। नवाचार आरी विकास खातिर साझेदारी के विशेषय के साथ फ्रांस ई महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करे खातिर प्रयास करत बाटे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 12 मई के दूसर सरकारी नेता लोग संगे राउंड टेबल बैठक में भाग लियन। बुध 6 मई के शपथ ग्रहण के बाद आज्ञा 9 माह आधिकारिक रूप से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर में के रूप में अपन काम करे शुरू कर दे रहन हवन। ई पद के संगे संगे जेंडर इक्वालिटी आरी परिवार कल्याण मंत्री के जिम्मेदारी ओ संगे संभलियन। हालांकि उनकर नियुक्ति हाल में होल बाटे। बखेर ओ ई बोलत हवन जा कि ओ मानसिक रूप से दोनों जिम्मेदारी संभाले खातिर अक्ते से तैयार हवन। आरी उनकरा ई में अपन परिवार आरी मंत्रिमंडल के सहयोगी लोग के समर्थन मिलत बाटे। वर्ल्ड फूड फोरम के गोनावा संस्करण के लॉन्चिंग काल सामदी के हॉलिडे इन मॉरिशस मोथेजो में करल गल। इमें मॉरिशस के नौजवान लोग भाग लेवत हवन स। ई लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल उपस्थित रहलन। अपन संबोधन के दौरान मंत्री युवा लोग से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन में अपन योगदान दे के मांग करलन। मंत्री अनुसंधान नवाचार आदि नवा तकनीक में अधिक निवेश परिबतियलन। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि प्रिसीजन एग्रीकल्चर खातिर ड्रोन के प्रयोग परी। औपचारिक आंकड़ा के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामला जोन बाओ खर संख्या बढ़ ले जात बा। आर जेकर से युवा लोग आरी बुजुर्ग लोग दोनों वर्ग के जना प्रभावित होवन स। कई गो मामला इतना कठिन होएला कि हैजा परी ओकर उपचार आनी इलाज करे के संभव नहीं होएला। ई कई बार स्थानीय स्तर पर ई उपलब्ध नहीं बाटे। एकर के ध्यान में रख के मॉरिशन मरीज लोग के सर्जरी खातिर सरकार के पहल परी भारत से डुगो रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग मॉरिशस आल हवन स। विदेश के खबर में अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कालीगो हादसा भेल। एयरपोर्ट के सुरक्षा घेरा के तुरकर रनवे पार करे होलाय गजना के विमान से टकराए के मौत होकल बाटे। ई हादसा लॉस एंजलस जावे होला फ्रंटियर एयरलाइन के विमान के उड़ान भरे बखत होल। टक्कर के तुरंत बाद विमान के इंजन में आग धर लेलक। आरी कैबिन में धुआं भरे लगल। टेक ऑफ के रोक देवल कर आरी सब 224 यात्री लोग आरी 7 को क्रूज सदस्य लोग के बचावल गल। ई रहल संक्षिप्त समाचार। तुहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Shok samachar sunaja. Jolie street 4 heures mais, jolie street 4 heures mais. Un chas paris ke 49 ans ke Shrimati Suvina Dwarka Prasad. Shrimati Suvina Dwarka Prasad pedashina mangatloi ke mrityu bhalvati. Unkar mati kal phajir ke 10 baje unkar pati शरद चंद द्वारका प्रसाद के घरे जोली स्ट्रीट काथोसिया से उठा के किराकरम खातिर दुफ्रे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुमोरो एट 10 AM रेजिडेंस मो प्लेजिया पंपलेमुस में 76 बरिस के 76 ओं के मिसिस बीबी राशिदा कुदरत मिसिस बीबी रशीदा कुदरत पेराशी नाम को दबक्स आर जे रशीदा नाम से जस्सी डानल जाथरन गुजर गल हवन उनका जनाजा आज सांझ के 2 बजे उनका बेटा दुल कुदरत के घरे रेजिडेंस मो प्लेजिया पंपलेमुस से उठा के किरा करम खातिर पंपलेमुस के कब्रिस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 2 PM रेलवे रोड गुडलैंड्स में 85 बरिस के 85 ओं के जनाब मुस्तफ़ा गुलब खान जेफी जाको वाश नाम से जस्टी जनरल जाथलन गुजर गल हवन जनाजा आज दिन के 11 बजे उनका घरे रेलवे रोड गुडलैंड से उठा के दफनाए खातिर बेलमो के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 11 AM जयपाल लेन प्लेंडी पापाई में 78 बरिस के सुसंजीवी टोंके श्री दनीलाल बोकुस जे जीवन नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी दिन के 2 बजे उनका बेटा बोकुस तश्विन कमल के घरे जयपाल लेन प्लेंडी पापाई से उठा के किराकरम खातिर थ्रियोले के शमशान भूमि ने जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 2 PM रू जुल मलाक थोंग पॉपोट वी में 57 बरिस के 57 ओं के श्रीजीत कुमार लक्ष्मी जे संजय नाम से जस्सी डानल जाथलन आरी

0: आगे पूर्व पुलिस सर्जेंट रहलन। वो गुजरकल हवन माती दिन के 2 बजे उनकर पत्नी मुकम दाना लक्ष्मी के घरे रुजुल मालाक थोंग बापोर लुई से उठा के केरा करम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टू डेट 2 PM रारो त्यारूज में 73 बरिस के 73 अंके श्री रामेश्वर गिरधारी जे रामेश बाजा नाम से जस्सी जानल जाथरन गुजरकल हवन माती फजर के 9 बज के आधा बरे उनकर पत्नी माला देवी गिरधारी के घरे रारो त्यारूज से उठा के केरा करम खातिर बुआ मौसों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे एट 9:30 AM एवेन्यू पांचू स्टैनली रोजिल्मी 57 बरिस के 67 अंके श्री धर्मजय भवानी दिन श्री धर्मजय भवानी जिन जे किशन नाम से जसी जानल जाथलन गुजरकल हवन माती दिन के 1 बजे उनकर घरे एवेन्यू पांचू स्टैनली रोजिल से उठा के किरा करम खातिर कोडे गॉड के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुडे एट 1 PM कोपैल इंतियाहूज में 66 बरिस के 67 अंके श्री राजमाता गुजरगल हवन माती काल फजर के 9 बजे उनकर पत्नी सीता पूर्णिमा माता के घरे कोपैल इंतियाहूज से उठा के केरा करम खातिर बुआ मौसों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टुमोरो एट 9 AM नंबर 9 रू डू लाक रिकोनिसंस फ्रांस में 72 बरिस के 72 अंके श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जे अनीता नाम से जस्ती जानल जाथरन नारी आगे ली बेत वाकवा रहथरलन उनकर वो गुजर कल हवन उनकर माठी काल लैंडी के दिन के 1:45 परे उनकर घरे नंबर 9 हुई डुलाहो को निसांस फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर हौजे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:45 PM 62 बरिस के 62 अंके श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जे पिपित नाम से जस्सी जानल जाथरन गुजरगल हवन माटी मंगल के फजर के 10 बजे मोहा पिछित क्रिया से उठा के केरा करम खातिर त्यामी उसकी ओले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन ऑन ट्यूसडे एट 10 AM शोक में डुबली सब परिवार संगे हमने की सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marches.
1: रेडियो मर्शस पर संडे की सुबह 8:17 और हमारी आपकी मुलाकात पैगाम आपके नाम शो में। आप लोगों का साथ मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुबह से हमें बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही दुआओं भरे मैसेजेस भेजे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माला सुमारू जी दे रही हैं, क्रियोले के सूरज शर्मा सजादा जी दे रहे हैं, वाकवा की विश्वानी दुमन जी और साथ में देवी जी भी दे रही हैं हमारा साथ, सुनीता जी बिहारी परिवार के साथ साथ था कुछ ऐसे हमारा साथ दे रही हैं। आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह की बेला है, हम लेकर आए हैं अभी से 9 बजे तक आप लोगों के लिए पैगाम आपके नाम। आप अपने अपनों के नाम ज़रूर अपने मैसेजेस भेजिएगा। अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो 5251-7005 पर भेजिएगा, और जो आप फ़ोन करना चाहते हैं तो 4028085 पर फ़ोन कीजिएगा। चलिए ज़रा हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं भाभी चंदा जी को। भाभी चंदा जी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। अनीता जी ने मौदाल बे से हमें मैसेज भेजा है भाभी चंदा जी को शुभकामनाएं देने के लिए। तो आपको सालगिरह मुबारक हो चंदा जी, आपको शुभकामनाएं इतु परिवार की तरफ से मिल रही हैं, आपके पति संजीव जी की तरफ से, बच्चों की तरफ से खुशी दिशा और दीपशिखा, केशवीर की तरफ से, लालजी परिवार, गोगा परिवार, नागेश्वर परिवार की तरफ से और हॉस्पिटल के आपकी सभी सखियों की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

सो हमारा साथ दे रही हैं आशा जानू जी, सभी हमारे श्रोताओं को उन्होंने हैप्पी संडे कहा है, वंडरफुल टाइम बिताई अपनी फैमिली के साथ, ऐसा कहा है, ऐसी दुआ, ऐसा विश किया है आशा जी ने। कोटेज से अपनी मामा कुमारी नेफ्यूज शुभम ऋषभ के साथ मिलकर, दीदी आरती, जीजू राज और पूरे जानू परिवार के साथ मिलकर। चलिए ज़रा हम सुदेवी जी का मैसेज पढ़ते हैं। वाकवा से सुदेवी जी ने बताया हमको कि 8 मई को ऑस्ट्रेलिया की उनकी बहू वर्षा ने अपना जन्मदिन मनाया और उन्हें विश कर रहे हैं बड़े प्यार से, बहुत ही एहसास के साथ, उनके पति विमल, बेटी निया, बेटा वीर, ताया की मामा हेमावती, भैया आश्विन, भाभी देवीना, बेटे लेशनव रक्षित और मानेगा की दीदी अनुषा, किरण, केशनी, कृषय, प्रणीता और पूरा राम रतन, राम गुलाम कुवाहू और गुरन सिंह परिवार आपको मंगल कामनाएं दे रहा है वर्षा जी, और हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी वंडरफुल बर्थडे टू यू।

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम केविन बुदना जी को देते हैं, जो मोताबा के रहने वाले हैं। मोताबा के केविन बुदना जी को मम्मा, उनकी मम्मा की तरफ से जन्मदिन की मंगल कामनाएं, बेटी कृष्टि, शिखा की तरफ से, शिल्पा की तरफ से, कवि, निखिल, सब मिलकर आपको जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। केविन बुदना जी, दीदी सबीना, आरती जी भी है साथ में, भाभी हेमा, भाभी रानी और प्यारे से लवली से आपके आपकी नातिन चेष्विका तुलसी मोदालबे से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कह रही है। वंडरफुल बर्थडे रहे आपका, ब्लास्ट हो आपके बर्थडे पर, आपको बहुत मंगल कामना।

हैं आप लोगों के विशेज, हम आप लोगों के अपनों तक पहुंचा रहे हैं और हमारा साथ दे रही हैं प्रेमिला सी गुलाम जी कौंदुमास से, और केवल अकेले अकेले नहीं तो ये लेकिन उनकी बहन अंसिया भी हमारा साथ दे रही हैं और उनके यहाँ गई हुई उनकी बहन रागिनी जी भी हमारा साथ दे रही हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बना पेची आपको और गरम गरम चाय बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम के साथ पीजिएगा ताकि आज का संडे आपके लिए बहुत मंगलमय रहे और चाय सरा हमारे दिन को अच्छा बना देता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना देता है। सो आप लोगों को ये संडे मंगलमय हो। आज बर्थडे मना रही हैं सांता अपाडू जी और उन्हें ढेर सारा प्यार उनके पूरे परिवार की तरफ से, ढेर सारी मंगल कामनाएं उनके पूरे परिवार की तरफ से, उनके बेटे केविन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन।

और आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं बितुल उमा जी। जी उनकी पत्नी प्रेमिला जी की तरफ से, भाई उमा जी जी की तरफ से, बेटे आश्ले, बहू श्वेता, पोते आयान की तरफ से, शायान की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से बितुल उमा जी जी को बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की मंगल कामनाएं। आकाश चेतन मनसुख जी की तरफ से, जो बॉम्बू के रहने वाले हैं, और पूरे मनसुख परिवार की तरफ से और उमा जी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की मंगल कामनाएं। आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारा प्यार लेकर आए।

0: तुम रहते हो।
1: आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इसे हम भी हौसला बढ़ रहा है आपसे आपसे बहुत प्यार से पेश आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप लोग हमारी तरफ से इतना प्यार बांट रहे हैं, भेज रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया। हमारा साथ लक्ष्मण सिकोबिन जी दे रहे हैं वाकुआ से, हमारा साथ दे रही हैं फातिमा जी नोबेल फ्रांस से, और हमारे साथ साथ है अनीता जी फ्लिकॉन्फ्लैक से। तो इन हमारे सभी श्रोताओं को हम बहुत प्यार से हैप्पी संडे विश करते हैं। चलिए ज़रा हम बर्थडेज़ की बात करें। तो बर्थडे है चाची सीता नमह जी का। यूनियन पार्क से विद्या जी ने हमें बताया है कि चाची जी को बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से, इंडर परिवार की तरफ से और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से, नमह परिवार की तरफ से। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू चाची सीता जी।

जन्मदिन की मंगल कामनाएं फ्लिकॉम्फ्ला की अनीता जी की तरफ से भी है, उनकी प्यारी सी पोती आदिया के लिए उनका फर्स्ट बर्थडे है। सो स्वीट, बहुत प्यारी सी गुड़िया, आपको बहुत बहुत मंगलमय हो, आपका पहला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और प्यारी सी गुड़िया आद्या को मंगल कामनाएं मिली है पापा अंकुश की तरफ से, मामा आशिमा की तरफ से, दादा राज, दादी अनीता, बड़े पापा आंतिश, बड़ी मामा मनीषा, कजिन हेमिशा और कजिन अंश की तरफ से, नानी इंद्रानी रामा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम की तरफ से वेली वेली वेली वेली हैप्पी बर्थडे टू यू गुलियाची प्यारी सी

और जन्मदिन की मंगल कामनाओं के साथ साथ हम बढ़ते हैं नुवेल फ्रांस की ओर चलते हैं और नुवेल फ्रांस की मीला साइदीन जी अपना जन्मदिन मना रही है, मीला जी अपना जन्मदिन मना रही है साइदीन रोड न्यू ग्रोव।

से उनको मंगल कामनाएं उनके पूरे परिवार की तरफ से, वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ न्यू ग्रोव की तरफ से, फातिमा जी, शकीला, मिमी आलोंदा, जाइना, नंदिनी, शौताल, पुष्पा, रोजलिन, मारियान और पूरी टीम उनको मंगल कामनाएं दे रही है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मीला जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं।

और अब हम बर्थडे विश करते हैं रेशमा जी को। रेशमा रामचरण जी अपना जन्मदिन मना रही हैं। उनकी माता जी श्यामा जी ने विल में से हमें फ़ोन किया और बताया कि उनको जन्मदिन की मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से मिली है और उनके पति अनिल की तरफ से, बेटे यश, बेटी अनुष्का की तरफ से, बहन श्वेता और बहन नीतू की तरफ से और भांजी वृष्णी निधि की तरफ से, परी की तरफ से यानीश, फिर जीजा जी मनोज की तरफ से, पूरे रामचरण परिवार की तरफ से और पूरे मिलाप परिवार की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पूरी

तो बस चलते चलते हम पेश करते हैं एक जन्म मम्मा वाला जन्मदिन गाना। वैसे हमने विश तो कर दिया है सांता पादू जी को, पर उनके बेटे केविन की ये मांग है कि सांता पादू जी को जन्मदिन विश करते करते ये गाना उनके नाम करें। हम साजन बिना सुहागन मूवी का सो चलिए इस गाने के साथ ही समाप्त हो जाता है हमारा आज का ये कार्यक्रम पैगाम आपके नाम। हैप्पी बर्थडे टू यू सांता पादू जी, आपको विश करते करते हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और 9 बजे आप सुन पाएंगे आज के संक्षिप्त समाचार। उसके बाद होगा आज का मंगलाचरण कार्यक्रम नीतूषा की प्रस्तुति में। हमारी आपकी मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। शुभ संडे, शुभ दिन, नमस्कार।

0: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप समाचार याचना से। याचना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता भाग ले रहे हैं। साथ में ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने के लिए वहां गए हुए हैं। इसमें मॉरिशस का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा। नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लेंगे। वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को हॉलीडे इन मॉरिशस मोंट्रेजोर में की गई। इसमें मॉरिशन नौजवान शामिल हो रहे हैं। इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। मंत्री ने अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों में अधिक निवेश पर भी बात की, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर आदि। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तनाव, परिवहन लागत और उर्वरक

0: सड़कों की बढ़ती कीमतों का भी उल्लेख किया और कहा कि मॉरिशस को अपनी खाद्य सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने की आवश्यकता है। आर्टिस्ट एक्सलेंस एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के 13 कलाकारों को सम्मानित किया गया। ये समारोह बुधवार 6 मई को लगा। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लेखक अमरनाथ हुसैनी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त कर वे सम्मानित और बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। वे अपनी 30वीं कृति प्रकाशित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी रचना लुक्लून है, जिसे अक्टूबर 2025 में प्री जॉन फ्रॉशेट से सम्मानित किया गया था। आर्टिस्ट एक्सेलेंस अवार्ड गायक एल पासी को भी प्रदान किया गया, जिनका वास्तविक नाम पास्कल लामॉक है। गीत मोपापा के गायक ने स्थानीय संगीत में अपने योगदान के लिए मिली इस पहचान पर खुशी जताई। उन्होंने अक्टूबर 2025 में आयोजित अफ्रो मादा म्यूजिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हिंद महासागर कलाकार का पुरस्कार भी जीता था। विदेश में ग्रीस में मछुआरों की एक रहस्यमय ड्रोन बोट मिला है, जिसमें विस्फोटक भरे हुए हैं। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। ये नौका यूक्रेन में बने एक मानव रहित सतही वाहन है, जो आयोनाइन डीप पर मिला है। अभी तक ये साफ नहीं कि ग्रीस की एयर गुफा में मिली ये नौका आखिर वहां पहुंची कब और कैसे। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रेजिडेंस मोंप्लेजिया पंपलेमसेज में 76 साल की 76 इयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी रशीदा कुदरत पैदाशी नाम कुदाबक्स और जो रशीदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा दोपहर 2 बजे उनके बेटे दुल कुदरत के मकान रेजिडेंस मोंप्लेजिया पंपलेमस से उठाकर दफनाने के लिए इलाके का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। जोली स्ट्रीट 4 सौ में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगत रॉय की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट का थोसर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रेया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: This is Radio Voices.
2: Assalamualaikum. Kim Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shodrandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.

मंगलाचरण समस्त श्रोताओं को नितुषा का करजोर प्रणाम। मंगलाचरण कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन है जो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रोताओं, वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास का विशेष संयोग बन रहा है जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जा रहा है। तो इसी संदर्भ में आज स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास जी। आचार्य जी, आपका अभिवादन है मंगलाचरण कार्यक्रम में। प्रणाम।

0: धन्यवाद, प्रणाम।
1: तो सबसे पहला प्रश्न यही है आचार्य जी कि हिंदू धर्म में अधिक मास क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण माना गया है?
0: सभी श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। तो नीतूषा जी, आपका जो बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अधिक मास जो है बड़ा ही महत्व रखता है। अधिक मास का नाम ही अधिक, अधिक मतलब अधिक मास में कुछ भी आप कार्य करो तो उसका फल अधिक ही मिलता है
1: जी।
0: शास्त्रों में, पद्म पुराण में लिखा है, एक वाक्य आता है कि अधिकस्य अधिकम फलम, मतलब अधिक मास में जो भी आप कुछ कार्य करेंगे
1: अधिक फल मिलता है।
0: तो उसका अधिक फल मिलता है। तो अधिक मास जो है उसको पुरुषोत्तम मास भी जाना जाता है और कई जगह पर हम इसको मल मास भी बोलते हैं और कई लोग इसको खर मास के नाम से भी जानते हैं। तो अधिक मास जो है उसके बारे में हम और आगे आपको जानकारी देंगे। तो अधिक मास जो है हमारे सनातन धर्म में 13वां महीना इसको कहते हैं, जिसमें 12 महीना तो हर साल में होता है लेकिन हर 3 साल में जो है एक महीना ज्यादा होता है।
1: अच्छा।
0: जिसको बोलते हैं अधिक मास। तो हमारे सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार उसकी गणना जो है थोड़ी अलग होती है। जैसे इंग्लिश महीने में, इंग्लिश वर्ष में, अंग्रेजी वर्ष में ऐसा कहा जाता है कि लीप ईयर आता है, उसी तरह हमारे सनातन धर्म में जो है एक अधिक मास आता है। तो लीप ईयर में जो है फेब्रुआरी महीने में कुछ दिन कम होते हैं लीप ईयर में। और हमारे सनातन धर्म में कुछ गणना होती है कि जैसे अधिक मास हो तो हर साल में एक साल होता है जिसको कहते हैं कि चंद्र वर्ष और एक होता है सूर्य वर्ष। तो चंद्र वर्ष जो है 354 दिन का होता है, 354 डेज का, और उसी तरह सौर वर्ष भी होता है। तो आप देखेंगे कभी कभी, आपने सुना होगा कि इस नवरात्रि में 9 दिन की नवरात्रि नहीं, कभी 8 दिन की होती है। अभी पिछले साल गई थी, 8 दिन की नवरात्रि थी। कुछ नवरात्रि में जो है 10 दिन की नवरात्रि होती है, एक दिन ज़्यादा होता है। तो हमारे हिंदू धर्म के जो महीने हैं जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष और महा और फाल्गुन, तो उस तरह जो पूरे 12 महीने होते हैं उसमें कुछ तिथियां ज्यादा होती है लेकिन कुछ कुछ तिथियां कम भी होती है
1: जी।
0: तो उस कम तिथियों को मिला करके 3 साल में एक महीना बनता है, उसको बोलते हैं अधिक मास।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए हम इसको अधिक मास कहते हैं।
1: तो आचार्य जी, आप हमें बताएं कि क्या अधिक मास का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है? अगर हाँ तो किस रूप में?
0: बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। अधिक मास के बारे में ज्यादातर मॉरिशस में जो है लोग बहुत कम जानते हैं
1: जी।
0: तो अधिक मास का इतना सारा महत्व है जितना दूसरे महीनों का भी नहीं है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो पद्म पुराण की जो है उसके अंदर में, पद्म पुराण के जितने भी चैप्टर है उसको खंड कहा जाता है। उसमें एक खंड है, उसका नाम है उत्तरखंड। उत्तरखंड के अंदर में सभी महीनों की महिमा बताई है, उसमें अधिक मास की महिमा है। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंदर में अधिक मास के बारे में जो है कहा गया है कि अधिक मास क्या है और अधिक मास को करने से क्या होता है
1: जी।
0: और एक सामान्य ऐसी कथा आपने सबने सुनी होगी कि हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार धारण करके आए थे और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो हिरण्यकशिपु जो है इतना महान प्रतापी राक्षस था कि उसने जो है भगवान का तप करके ऐसा वरदान मांगा कि ना मैं पुरुष से मरूं, ना कोई जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। तो उसने ये भी मांगा कि 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूं। तो इसीलिए जो है भगवान ने एक महीना अधिक बना दिया, ज़्यादा, क्योंकि 12 महीने में तो उसने वरदान मांग लिया था। तो 12 महीने के अंदर में उसने बोला था कि 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूं, तो भगवान ने उसके लिए एक महीना अधिक बना दिया। तो ये पुरुषोत्तम मास का जो है पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है और पद्म पुराण में ये अधिक मास की जो है महिमा बताई है कि खास करके भगवान ने ये महीना जो है उत्पन्न किया था हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, ऐसा पद्म पुराण में बताया है। और पद्म पुराण में और भी जो है इसमें आती है कई सारी कथाएं है, अधिक मास के बारे में उल्लेख आता है और अधिक मास के बारे में जो है बताया गया है कि अधिक मास जो है ये ऐसा कथा आता है कि सभी महीनों को भगवान ने अलग अलग अलग देवताओं को बांट दिया था
1: जी।
0: जैसे आप देखेंगे श्रावण मास में हम शिव जी की पूजा करते हैं, आश्विन मास में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, कार्तिक मास में हम भगवान नारायण को दीप दान करते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन वैष्णव मंदिरों में या तो इस्कॉन मंदिरों में आप जाएंगे तो सभी वैष्णव जो है कार्तिक मास का बड़ा महत्व रखते हैं। तो कार्तिक मास को वैसे भी सनातन धर्मी जो है सभी को कार्तिक मास के बारे में जो है दीप दान ये सब पूजा सब करनी चाहिए। और गीता जी में तो यहाँ तक लिखा है कि मासानाम मार्ग शीर्षोहम, भगवान नारायण कृष्ण भगवान खुद अर्जुन को कहते कि अर्जुन सभी महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना जो है वो मेरा रूप है। अच्छा। तो भगवान ने अलग अलग महीनों को जो है अलग अलग देवताओं को बांट दिया। जैसे आप देखेंगे मकर संक्रांति वो सूर्य का महीना है, तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग महीना बांट दिया। जब भगवान ने अधिक मास उत्पन्न किया तो अधिक मास के कार्य में जो है हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो अधिक मास फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा क्योंकि उसका नाम पड़ा था मल मास
1: जी।
0: मल मास यानी अशुद्ध मास। तो जो भी महीने के पास वो बैठते थे क्योंकि 12 महीने जो है पुरुष का रूप लेकर के बैठे थे, वहाँ पर उसकी लाइन में जब वो जा करके बैठते थे तो सब उसको दूर भगा देते। मल मतलब अशुद्ध महीना
1: जी।
0: तो उसको दूर भगा देते थे। तो मल मास जो है बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर के सबसे पहले पद्म पुराण में ये कथा आती है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए
1: जी।
0: ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे वो मल मास, कहने लगे कि मुझे कोई पास में नहीं बैठने देता, सब लोग मुझको अशुद्ध समझते हैं, तो मुझे कुछ वरदान दीजिए, मेरे ऊपर कुछ कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो जो है खुद विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ कमल में
1: जी।
0: तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूँ, मुझे तो भगवान जो आज्ञा करते वही मैं करता हूँ। भगवान ने मुझे आज्ञा की थी पृथ्वी को उत्पन्न करने की, तो मैंने पृथ्वी बनाई, मनुष्य पेड़ पौधे सब कुछ बनाया, लेकिन मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो मल मास वहाँ से भी निराश हो गया, फिर गया शिव जी के पास। जब शिव जी के पास गया तो शिव जी से प्रार्थना करने लगे, तो शिव जी तो प्रलय के देवता है
1: जी।
0: जिसको बोलते विनाश के देवता, जब सब पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो शिव जी सब लय कर देते उसको। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा तो मैं तो सब मिटाने वाला हूँ, मैं बना नहीं सकता हूँ। तो वहां से भी वो निराश हो गया महीना। फिर वहां से वो जो है वो महीना गया भगवान नारायण के पास, क्योंकि तीन देवता बड़े ब्रह्मा शिव और विष्णु। तो विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से खूब विनंती करने लगे ये मल मास, और कहने लगे कि प्रभु आप कुछ कृपा कीजिए और मुझे आप जो है सभी महीनों को आपने कोई ना कोई देवताओं को बांट दिया है, तो मेरा कहाँ पर स्थान होगा, आप मेरा स्थान बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ, तुमको कोई देवता नहीं, मैं अपना नाम तुमको खुद देता हूँ। इसलिए मल मास को तब से जो है पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। तो ये मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान नारायण का ही एक नाम है, इसलिए जो है मल मास को ये कहते हैं। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है ये कथा। तो ये कथा के अंदर में मल मास के बारे में, उसकी उत्पत्ति और उसके नाम के बारे में बताया गया।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और मंगलाचरण कार्यक्रम के दौरान हम आज अधिक मास पर चर्चा कर रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे कि अभी आपने कहा पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो हम मनुष्य जो होते हैं इस मास के बारे में शायद मॉरिशस में उतना पता नहीं है, अब धीरे धीरे इसके बारे में जान रहे हैं। तो अधिक मास जो है इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि हम कहते हैं जप तप ध्यान दान, इस सब का फल अन्य मासों से अधिक क्यों माना जाता है?
1: देखिए, यहाँ पर मॉरिशस में ऐसा होता है कि ज़्यादातर मॉरिशस में आपके बुजुर्ग जब यहाँ पर आए थे भारत से, तो साथ में रामायण लेकर आए थे
0: जी।
1: तो उस रामायण में एक चौपाई आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस चौपाई को लिखा है कि बड़े भाग मानस तनु पावा, मतलब कि बड़े भाग्य से हमको सबका सब

0: सबको जो है मनुष्य का शरीर मिला
1: जी।
0: और मनुष्य का शरीर भी किसी किस लिए मिला कि पद्म पुराण और जो है भविष्योत्तर पुराण में और स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है और भागवत पुराण में भी लिखा है कि मनुष्य को जो है जन्म मिलने के बाद उसको तीन वस्तुएं बहुत दुर्लभ होती है। तीन वस्तु में क्या है कि पहला तो जो है सत्संग मिलना
1: जी,
0: पहले तो शरीर मिलना मनुष्य का, भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया है, उस मनुष्य के शरीर को मिलने के बाद भी अच्छे कार्यों को करना, ये मनुष्य को जो है बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर तो मिल गया लेकिन आदमी जो है बुरे कामों में लिप्त रहता है। तो मनुष्य का शरीर भगवान ने हमको दिया, इसमें सुनने की, समझने की, देखने की सब प्रकार की शक्ति हमको भगवान ने दी है। फिर मनुष्य शरीर तो अब दिया, तो मनुष्य शरीर को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को शरीर को सुधारने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए थे पुराणों में ऐसा लिखा है
1: जी।
0: तो इसलिए हम लोग को भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया और मनुष्य जन्म देकर के हमको पृथ्वी पर भेजा। और एक पुस्तक है उसका नाम है विवेक चूडामणि, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है
1: जी।
0: उसमें उस श्लोक में, पहले श्लोक में लिखा है विवेक चूडामणि के, कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय, ये तीन वस्तु जो है मनुष्य को मिलना बहुत मुश्किल है
1: जी।
0: तो मनुष्यत्वम, मनुष्य यानी मानवता, मुमुक्षुत्वम फिर मानव आदमी बन जाए, मनुष्य में से वो आदमी बन जाए। देखिए आदमी को बोलना पड़ता है तू आदमी बन
1: जी,
0: जानवरों को नहीं बोलता बोलना पड़ता कि तुम जानवर बन जाओ। तो आदमी वो मनुष्य में से मानव बन जाए, मानव मतलब कि अच्छा मनुष्य बन जाए
1: जी।
0: फिर मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी भगवान की आराधना करने वाला, क्योंकि हमको यहाँ पर पहले भगवान ने भेजा, उससे पहले तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बना दिया
1: जी।
0: तो उसको बोलते हैं मुमुक्षुता, जो आदमी भक्त बन जाए, भगवान का नाम ले, क्योंकि भगवान की कृपा से हमको मिला है। आज हम जहाँ पर बैठे, जिस जगह पर बैठे, जैसा परिवार मिला है, जैसा घर मिला है, और पत्नी पति या बच्चे या जो भी कुछ हमको मिला सब भगवान की कृपा से मिला। तो मुमुक्षु बन जाना, मुमुक्षु यानी कुछ पाने की इच्छा रखना भगवान के प्रति। तो और महापुरुष संश्रय, उसमें भी महापुरुषों को मिलना या कोई कथा का श्रवण करना, कोई पुराण का, सदग्रंथ का आश्रय लेना,
1: माने कि हमारे इस मनुष्य शरीर में आना एक उद्देश्य है।
0: हाँ उद्देश्य है, क्योंकि हमको भगवान ने उद्देश्य लेकर ही भेजा है, भगवान ने हमको भेजा था इसलिए अच्छे काम करने के लिए। तो ये अधिक महीना जो है उस अच्छे कामों को करने के लिए और हमारे शरीर को सुधारने के लिए ये महीना भगवान ने हमारे लिए एक अलग सा बनाया है अधिक मास। तो अधिक मास के बारे में जो है पद्म पुराण में और भी लिखा गया है कि इसमें भगवान अधिक मास के अंदर में भगवान नारायण की या तो नारायण के किसी भी अवतारों की जो है इसमें उपासना की जाती
1: तो
0: है।
1: तो जैसे कि अभी आपने कहा कि जो अधिक मास है भगवान नारायण श्री विष्णु जी
0: हाँ,
1: की पूजा करते हैं
0: हाँ,
1: तो और किसी और देवता की भी उपासना होती है
0: इसमें? मुख्य जो है विष्णु भगवान की ही उपासना की जाती है, या तो उनके कोई भी अवतार जैसे कृष्ण है, राम है, या तो भगवान के 10 अवतार है। वैसे तो भगवान के 24 अवतार है, उस 24 अवतारों में से किसी भी, लेकिन उसमें से 10 अवतार जिसमें मत्स्य नारायण है, कूर्म भगवान है, वामन भगवान है, नृसिंह भगवान है, उसे 10 अवतार में से कोई भी अवतारों की आप पूजा कर सकते हैं। फिर जो है तिथि के अनुसार अलग अलग व्रत होता है, वो अलग अलग व्रत में अलग अलग देवताओं की भी आप पूजा कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: भगवान पुरुषोत्तम की यानी भगवान नारायण की अकेले की भी आप पूजा कर सकते हैं और लक्ष्मी और नारायण दोनों की साथ में भी पूजा कर सकते हैं। ये इस महीने के अंदर में बताया है और इसके बारे में और भी व्रत के बारे में भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो है हम इस मल मास में जो है खास करके अधिक मास में भगवान की उपासना जो है करनी हो तो भगवान नारायण की पूजा
1: जी।
0: इसमें जो है पूजा, व्रत, कथा, कीर्तन, दान का बड़ा महत्व है।
1: अच्छा।
0: ये सभी चीज़ों का उसमें सबसे पहले आती है भगवान की उपासना। उपासना यानी आप अधिक मास में ऐसा नियम बना लो, जो पहले तो आपको बता दो अधिक मास जो है 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक जाएगा और 16 मई को जो है शनि जयंती है, उसके दूसरे दिन जो है अधिक मास शुरू हो जाएगा
1: जी।
0: तो शनि जयंती के बाद जो है अधिक मास शुरू होगा और 15 जून तक जाएगा और बीच में जो है इसमें एक और भी महत्व है कि इसमें गंगा दशहरा आता है बीच में, जिसको यहाँ पर गंगा स्नान कहते हैं, तो ये भी है। और इस महीने में जो है 2 एकादशी आती है।
1: अच्छा।
0: वो सिर्फ 3 साल में ही एक बार आती है ये एकादशी, बाकी महीनों में तो जो है एकादशी हर साल आती है, लेकिन अधिक मास की 2 एकादशी है, उसमें शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया की जो एकादशी है उसको बोलते हैं पद्मिनी एकादशी, और कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको बोलते हैं परमा एकादशी। ये 3 साल में एक ही बार आते हैं।
1: अच्छा।
0: यानी दूसरी एकादशी

0: से ये दो एकादशी का
1: बात
0: जो
1: बढ़िया
0: महत्व
1: है
0: बहुत
1: जी।
0: ज्यादा है, और इसमें कथा भी है, कथा भी आपको बताएंगे बाद में। तो ये दो एकादशी खास है, इसकी करनी चाहिए। तो ऐसा अधिक मास में नियम बनाइए कि अधिक मास में जो है हर रोज भगवान नारायण के, आपके घर में जो भी भगवान नारायण का स्वरूप हो, जैसे कोई मूर्ति हो
1: जी
0: या भगवान का शालिग्राम स्वरूप जिसको कहते हैं, शालिग्राम में भी भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। आपके घर में कोई भगवान का फोटो हो तो उसमें पूजा करें, अगर वहाँ नहीं करें तो कम से कम आसपास में कोई शिवालय हो, कोई मंदिर हो, तो वहाँ पर भी जा करके आप इसकी पूजा भगवान की कर सकते हैं। और ख़ास करके ये महीने में जो है एक मंत्र भगवान का महामंत्र कहा जाता है, भगवान का गायत्री मंत्र।
1: अच्छा
0: भागवत महापुराण के अंदर में ये मंत्र लिखा गया है, भगवान नारायण का गायत्री मंत्र, जिसको बोलते हैं ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये भगवान का गायत्री मंत्र है,
1: अच्छा
0: लेकिन उसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं ओम नमो
1: भगवते
0: भगवते
1: वासुदेवाय
0: वासुदेवाय।
1: नमः।
0: तो ये मंत्र का हर रोज कम से कम जो है 108 मंत्र जो है एक माला का जप करें, और उसके बाद भगवान के कोई भी अवतार के ऊपर आपकी श्रद्धा है तो उनका भी आप जप कर सकते हैं। और भगवान के 1000 नाम है जिसको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं,
1: जी
0: तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप हर रोज पाठ कर सकते हैं। तो पद्म पुराण में लिखा है कि नारायणम नमस्कृत्यम सर्वकर्माणि कारयेत। तो इस प्रकार भगवान नारायण के लिए जो भी आप पूजा करेंगे, कार्य करेंगे, वो भगवान को पहुँचता है।
1: जी
0: और दूसरा जो है इसमें महीने में जो है कथा और श्रवण का बड़ा महत्व है, तो इस महीने में हो सके तो आपके घर में भागवत हो तो भागवत का पठन कीजिए, उनको पढ़िए। भगवत गीता हो, श्रीमद् भगवत गीता, उसका भी बड़ा महत्व है, तो श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ करें। हर रोज़ पूरी गीता नहीं कर सकते तो कम से कम जो है हर रोज़ 5 श्लोक लीजिए, 10 श्लोक लीजिए, कम से कम एक अध्याय
1: जी
0: तो ऐसे गीता का पठन कीजिए। तो विष्णु पुराण कहीं पे कथा चल रही हो, कोई पंडित जी, कोई जो है आचार्य जी आपको कथा करे, तो वहाँ जा करके कथा को सुनिए।
1: जी
0: कथा श्रवण का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि नाम ही इसका अधिक है। अन्य महीनों में आप जो भी करते हैं उससे करोड़ों गुना फल इस
1: फल
0: महीने में मिलता
1: जी
0: है। आप मान लीजिए नॉर्मल दिनों में आप एक माला करते हैं और अधिक मास में एक माला करते हैं, तो वो एक पिछले महीनों में जो एक माला एक ही माला कहलाती है, लेकिन
1: जी
0: अधिक महीने में जो एक माला करेंगे तो उसका एक माला का फल जो है 1000 माला के बराबर हो
1: अच्छा
0: जाएगा।
1: जी
0: तो इसलिए इनका महत्व है। और शास्त्र श्रवण के बारे में पद्म पुराण में श्लोक आता है, शृण्वत सर्वम कृतम पुण्यम पठतश्च समाहिता। ऐसा लिखा है कि जितना आप करेंगे वो भगवान नारायण को पहुंचता है, और नारायण उनको करोड़ों गुना फल उसका बढ़ा देते हैं।
1: जी
0: फिर तीसरा आता है दान। दान में सबसे महत्व दान है इसमें दीप दान। आपके घर में भगवान का मंदिर हो तो भगवान के लिए हर रोज सुबह और शाम दिया का दान करें, दीप
1: जी
0: दान, एक घी का दिया जला करके भगवान के आगे उसका दान करें,
1: जी
0: दीप दान। अगर सुबह शाम नहीं कर सकते तो कम से कम शाम में संध्या के
1: संध्या
0: समय
1: जी
0: दीप का दीप दान करना चाहिए। उसके बारे में भी जो है पद्म पुराण में लिखा है कि दीप दानम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। दीप दान से जितने भी आपने पाप किए हैं वो पाप कर्मों को वो नाश
1: धुल
0: करता
1: जाता है
0: है,
1: जी
0: तो ये दीप दान की वजह से सभी पापों में से हम मुक्त होते हैं। उसके बाद दान के बाद आता है व्रत और उपवास। अब लोग जो है व्रत के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं,
1: जी
0: इसमें कई प्रकार के व्रत आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपका शरीर सामर्थ्य हो, शरीर में अगर शक्ति हो, तो व्रत के अंदर में जो है बिना आहार के, यानी
1: बिना
0: जैसे हम
1: खाए पिए
0: निर्जला
1: जी
0: एकादशी हम करते हैं, उसी
1: जी
0: तरह दिन दिन भर में आप जल पी सकते हैं लेकिन कोई भी भोजन नहीं करना है,
1: जी
0: ऐसे आप व्रत कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो कम से कम फलाहार करके, फल खा करके,
1: जी
0: फल की जगह पर आप सिर्फ दूध पी करके भी व्रत कर सकते हैं। अगर दूध नहीं, फल नहीं, नहीं उससे भी शरीर अगर काम नहीं करता है, तो एक भुक्त यानी एक बार भोजन करके
1: जी जी
0: पूरे दिन भर व्रत रखिए, और शाम के समय संध्या में भगवान की पूजा करके शाम के समय फिर एक बार भोजन कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन भोजन में प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना है, और जैसे हम लोग समंदर का सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं
1: जी
0: तो सफ़ेद नमक नहीं लेना, उसकी जगह पर सेंधा नमक यूज़ करना है।
1: जी
0: तो ये जो है व्रत करना है, और उसमें भी दो एकादशी मैंने जैसे बोला कि पद्मिनी और परमा एकादशी, उसका बड़ा महत्व है। अगर महीने में, पूरे महीने में आप व्रत नहीं कर सकते तो दो एकादशी का व्रत जरूर कीजिए।
1: जी
0: अगर दो एकादशी भी नहीं करते हैं तो अंतिम 5 दिन का व्रत जो बोलते हैं महीने के अंत में,
1: जी
0: अंतिम 5 दिन का जो व्रत है उसको करना चाहिए, लेकिन नियम से करना चाहिए। जब व्रत करे तो उस व्रत के अंदर में असत्य नहीं भाषण करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शरीर को थोड़ा मन को शांत रखना चाहिए, दिन भर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। आप कुछ भी काम करो लेकिन मन में बार बार भगवान का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो ओम नमो नारायणाय।

0: या तो ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ये सभी मंत्र है भगवान के, उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और कहते हैं पद्म पुराण के एक श्लोक लिखा है कि उपवासेन देवेशः प्रियते पुरुषोत्तमः, उपवास से ही भगवान जो है पुरुषोत्तम जो है प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के लिए उपवास का भी बड़ा महत्व है। उसके बाद आता है दान, दीपदान तो हमने बोल दिया, लेकिन और भी कई सारे दान हैं। जैसे आप कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके पास अन्न नहीं है तो आप अन्न का दान करें, उसका भी जो है करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। कहीं पे भी आप कोई व्यक्ति जो है प्यासा है तो उसको जल का दान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को नहीं तो कम से कम पशु और पंछियों के लिए एक बर्तन में जल भर करके आप घर के बाहर रख सकते हैं, जिससे पंछी आकर पियेंगे, तो उसका भी दान का महत्व है। फिर गौदान, गौदान में तो गाय का दान तो यहाँ पर मॉरिशस में मुश्किल है, भारत में तो लोग करते हैं गाय का दान, तो गौदान करना चाहिए। अगर आप गौदान नहीं कर सकते तो यहाँ पर मॉरिशस में कई जगह पर गाय है, वहाँ गौशाला में जाकर आपके गाय के निमित्त कुछ भी आप दान कर सकते हैं। और सामर्थ्य अनुसार जो भी आप कर सकते हो, कोई गरीब व्यक्ति हो तो उसको कपड़े का दान कर सकते हैं, पंडित जी को भी आप मंदिर में, पुजारी जी को आप, जो आचार्य जी को आप कपड़े का दान कर सकते हैं। क्योंकि पद्म पुराण में ये भी श्लोक लिखा है कि अधिक मास में दानम तपश्च यज्ञश्च अधिके मासी यत्कृतम कोटि गुणितम भवेत पुण्यम नात्र कार्य विचारणा, ऐसा श्लोक में लिखा है कि दान करने से, तप करने से, यज्ञ करने से अधिक मास में उसका कोटि गुना यानी करोड़ों गुना फल मिलता है। तो बिना विचार किए, नात्र कार्य विचारणा, बिना विचार किए उसको कर देना चाहिए। दान भी ऐसा करें कि दान करने के बाद अगर आप सीधे हाथ से दान करते हो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब कि निस्वार्थ भाव से ये दान करना चाहिए। उसके बाद जप, मैंने जैसे बोला कि दिन भर जो है जप करते रहना चाहिए, प्रतिदिन भगवान के गायत्री का ओम नमो नारायण, या तो ओम श्री कृष्ण शरणम मम, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जो है जप करना चाहिए। उसके बाद आता है तीर्थ स्नान। वैसे तो भारत में ऐसी प्रथा होती है कि अधिक मास के अंदर में लोग जो है एक महीने तक तीर्थ में जाकर रहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तीर्थ का बड़ा महत्व है, इसमें हर रोज तीर्थ स्नान करना चाहिए। तो यहाँ मॉरिशस में तो तीर्थ स्नान करने के लिए आपको भारत जाना पड़ेगा, यहाँ पर तीर्थ है गंगा तालाब तीर्थ है, तो आप वहाँ हर रोज नहीं जा सकते, तो कम से कम जब आप स्नान करने के लिए बैठो तो जल के अंदर में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जल से प्रार्थना करनी कि गंगा मैया आप हमारे जल में पधारिए, और वही जल से जब आप स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ स्नान का फल मिलता है। तो गंगा या पवित्र तीर्थों में जाकर के स्नान करना चाहिए, संभव हो तो वहाँ पर एक महीना रुकना चाहिए अधिक मास में। तो ये तो काम की वजह से या किसी वजह से ये संभव नहीं हो तो आप घर में भी आप स्नान कर सकते हैं। तो गंगा जी का स्मरण करने, स्नान के समय स्मरण करने से भी आप तीर्थ स्नान का फल मिलता है। उसके बाद आता है सेवा और सत्संग। अधिक मास में जो आप ये सब तो करें, लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम जो है किसी ना किसी व्यक्ति की आप सेवा करें,
1: मानव सेवा।
0: हाँ, प्रभु सेवा है, तो मानवों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, कोई भी जीव की, छोटे से छोटा जीव हो तो उसकी सेवा करना,
1: निस्वार्थ भाव से, जो निस्वार्थ भाव से,
0: हाँ। तो ये जो है सेवा करने का बड़ा महत्व है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य और संयम
1: जी।
0: इस मास में अगर आपने कोई व्रत उठाया है, नियम लिया है अधिक मास के निमित्त, और देखिए इसमें कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अधिक मास में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यहाँ तो मैंने ऐसा सुना भी है कि कई लोग अधिक मास में घर में दिया भी नहीं जलाते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, अगरबत्ती भगवान बोला खर मास से कुछ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, अधिक मास में आप करो। अगर आप कोई ग्रहों के लिए व्रत कर रहे हैं, ग्रहों की कोई पंडित जी ने आपको बोला है कि आपकी कुंडली के अनुसार कोई ग्रह ठीक नहीं है, अगर आप वो ग्रह का व्रत पहले से ही कर रहे हैं तो आपको उसको जारी रखना चाहिए, लेकिन नया व्रत उठाना नहीं चाहिए
1: जी।
0: या तो ऐसा लिखा है पुराणों में कि कोई कामना के लिए आप किसी वस्तु को आप कर रहे हैं, कामना के लिए मतलब आपको कुछ पाना है
1: जी।
0: किसी वस्तु को पाने के लिए आप कोई भगवान की उपासना कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए।
1: तो आचार्य जी, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं जप, जाप, दान करना, ये सब पवित्रता शुद्धता से कोई भी कार्य करते हैं, तो इस मास में विवाह या कोई नए मांगलिक कार्य होते हैं?
0: हाँ, तो इसके बारे में जो आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो नहीं किए जाते हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिसको करने से कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है।
1: इसके पीछे कोई धार्मिक या वैज्ञानिक का कारण हो सकता
0: है? हाँ, मैं बताता हूँ, इसमें पुराणों का प्रमाण भी आपको देता हूँ। देवी भागवत में ऐसा लिखा है कि ये मास अतिरिक्त, मतलब एक ज्यादा महीना होने से इसको अधिक मास कहा जाता है। अब इसमें निषेध यानी क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो है नामकरण संस्कार नहीं होता है
1: जी।
0: कोई बच्चे का जन्म हो तो उसका नामकरण नहीं होता है,
1: तो वो एक मास
0: छोड़ करके फिर नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद चूड़ाकरण यानी हमारे 16 संस्कारों में जो है मुंडन का संस्कार आता है, जो बाल उतारते हैं। तो ये इस महीने में जो कोई बच्चे का अगर बाल उतारने का विधि हो, मुंडन संस्कार जिसको, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार, जनेऊ धारण करवाते हैं बच्चे को, तो वो जनेऊ संस्कार नहीं होता है। और विवाह यानी शादी, तो विवाह संस्कार भी इसमें नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये सब कार्य जो है हम अपनी कामना के लिए करते हैं, जने वो अपने लिए लेते हैं, विवाह खुद अपने के लिए, मतलब के अपने स्वार्थ के लिए हम ये सब, जो खुद के स्वार्थ के लिए हो वो कोई भी काम किया नहीं जाता है। भगवान के प्रति जो कार्य है वो सब किया जा सकता है। अब अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें दो पुस्तक है, उसका नाम है, एक का नाम है हेमाद्री और दूसरा पुस्तक है भविष्योत्तर पुराण। तो उसमें ऐसा लिखा है कि इस मास में, अधिक मास में जो है, प्रथम आता है शुक्ल पक्ष और दूसरा आता है कृष्ण पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया का 15 दिन और फिर कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया का 15 दिन, जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इसमें नित्य और नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म मतलब आप जो हर रोज घर में पूजा करते हैं, नित्य पूजा वो आप कीजिए, आप हाँ जो भी आप पूरे साल भर करते हैं वो आप जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई नए जो है व्रत को या नई पूजा को उसको नहीं उठा सकते हैं, नहीं शुरू कर सकते हैं। और जो पूजा, जो कामना अपनी खुद की कामना के लिए है, मतलब कोई लक्ष्मी पाने के लिए है, कोई वस्तु पाने के लिए है, वो कामना के अनुसार जो आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो इसमें नहीं करना चाहिए। जैसे हर रोज आप जो कार्य करते हैं वो आप जारी रखिए। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अधिक मास में शिव जी का जो सोमवार को अभिषेक होता है वो भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो तो आप हर साल, पूरे साल भर करते हैं तो वो करते रहना चाहिए। और नित्य इसमें जो है दान करते रहना चाहिए, हर रोज का दान इसमें अलग अलग है वो भी आप करना चाहिए। उपवास करना चाहिए, उपवास व्रत जो मैंने आपको जैसे बताया वो भी आप कर सकते हैं, और निर्जल उपवास भी कर सकते हैं, दूध से एक बार भोजन करके ये सब। और दूसरा जो है नियम में हर रोज जो है रहना चाहिए, पूजा मंत्र जाप हवन और विष्णु याग, क्योंकि भगवान नारायण जो है ना, उसको जैसे शिव जी को जलधारा प्रिय है, भगवान शिव जी को ऊपर हम जल की धारा करते हैं, तो जल की धारा भगवान शिव जी को प्रिय है, उसी तरह भगवान नारायण को जो है यज्ञ हवन प्रिय है
1: जी।
0: तो विष्णु याग या तो विष्णु भगवान के लिए हवन करना चाहिए। फिर अब इसके ऊपर में जो है उपरांत बोलते हैं पितृ कार्य, पितरों के लिए। तो पितरों के लिए जो वार्षिक श्राद्ध हो, वार्षिक श्राद्ध यानी एक बरस का जो श्राद्ध किया जाए उसको वार्षिक श्राद्ध कहते हैं, यहाँ पर की भाषा में जिसको बोलते बरखी। अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु पिछले अधिक मास में हुई है तो उसकी तिथि तो इस अधिक मास में आएगी, क्योंकि हर साल नहीं आएगी, अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, तो उसकी वार्षिक पूजा जिसको बरखी बोलते हैं वो कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, और श्राद्ध में जो है दर्स श्राद्ध जो है पितरों की तृप्ति के लिए, या तो निस्वार्थ भाव से आप पितरों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो इसके लिए महीना बहुत बेस्ट है। और उसके बाद बीमारी के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए जैसे महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान है, रुद्र जप का अनुष्ठान है, और ऐसे कोई अनुष्ठान है कि जिससे किसी को भला हो, ऐसे आप कार्य कर सकते हैं। और संस्कार में भी आता है कि जैसे गर्भाधान संस्कार, जैसे गोद भराई बोलते हैं सीधी भाषा में, तो गर्भाधान संस्कार इस महीने में कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे शास्त्रों में जो संस्कार के नियम लिखे हैं कि 5वें महीने में या तो 7वें महीने में, वो अनिवार्य है, वो जरूरी है, वो करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण समन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये सब करना चाहिए। और ये शास्त्र ये भी कहता है, भविष्योत्तर पुराण में एक श्लोक आता है उसमें लिखा है, ये एतस्मिन महामूढ़ा जपदानादिवर्जिता जायन्ते दुर्भगा दृष्टा पर भाग्योपजीविना। भविष्योत्तर पुराण में ऐसा लिखा है कि इतना जो मैंने जो आपको बताया वो उसमें से आदमी को ये सब करना चाहिए
1: जी।
0: अगर वो नहीं करता है तो सबसे बड़ा महामूर्ख है, ऐसा इस श्लोक में लिखा है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जायन्ते दुर्भगा दुष्टा पर भाग्योपजीविना, और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, न करने वाले व्यक्ति जो है विष्णु लोक में नहीं जाते हैं मृत्यु के बाद, और वो जो है दूसरे पर हमेशा जीवित रहते हैं, मतलब कि कोई उसको दे तो उसका जीवन चलेगा उस पर, ऐसे मतलब कि उसका ऐसा फल उनको मिलता है। तो ये सब पुस्तकों में बताया गया है।

0: तो हम भी आशा करते हैं श्रोताओं की जितनी भी अभी बातें आचार्य जी कह रहे हैं, अधिक मास जो पुण्य मास है इसके बारे में और भी जानकारियां हमको प्राप्त हो रही है। आचार्य जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि इस मास में जैसे बहुत सारे कार्य अनिवार्य है, बहुत सारे कार्यों को करना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जब पूजा की बात कर रहे हैं, यज्ञ की बात करें, तो कौन कौन सी पूजा यज्ञ हमको करनी चाहिए?
1: जी, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है आपका। तो भगवान नारायण जो है यज्ञ से प्रसन्न होते हैं
0: जी,
1: जैसे शिव जी अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे शिव जी के ऊपर गगरा होता है, उसमें से हमेशा जल नित्य गिरता रहता है। तो शास्त्रों में एक श्लोक है पुराणों में कि जलधारा प्रिय शिव, मतलब जलधारा से भगवान शिव जी प्रिय हैं। तो उसी तरह भगवान विष्णु के लिए विष्णु पुराण में लिखा है यज्ञो वे विष्णु, मतलब कि भगवान नारायण जो है वही यज्ञ का रूप है
0: जी।
1: आप देखेंगे किसी भी आप कथाओं को लेंगे तो उसमें
0: यज्ञ की वो तो संपन्न
1: नहीं होता है। आपने भगवान राम जी की कथा भी सुनी होगी, दशरथ राजा ने यज्ञ किया तो उसमें से भगवान प्रकट हुए हाथ में चरु का पात्र लेकर के। तो भगवान नारायण जो है वो आहुति से प्रसन्न होते हैं, अच्छा। यज्ञ से। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, समझते हैं और ऐसा कहते हैं जो नहीं जानते हैं कि इस महीने में कोई भी प्रकार का हवन पूजन ये सब नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। भगवान नारायण की कई प्रकार से इस महीने में पूजा कर सकते हैं। पहली पूजा आता है एकोपचार,
0: मतलब
1: पूजा का प्रकार है एकोपचार। एकोपचार मतलब भगवान को आप कुछ नहीं कर सको तो प्रणाम कर लो
0: जी,
1: ये एक उपचार हुआ
0: जी।
1: फिर उससे आगे आता है पंचोपचार पूजा, अगर आप में सामर्थ्य है तो पांच उपचार पूजा करनी चाहिए। उसमें भगवान को भोग लगाया, भगवान को फूल चढ़ाया, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाया, भगवान की आरती की और भगवान को प्रणाम किया, ये पांच चीज़ें हुई तो उसको बोलते हैं पंचोपचार पूजा। अगर उससे भी आगे आप कर सकते हैं तो भगवान को दस उपचार से पूजा करनी चाहिए। दस उपचार से यानी भगवान को स्नान, पंचामृत से स्नान कराया, भगवान का अभिषेक किया, वस्त्र चढ़ाया, भोग लगाया, आरती किया, धूप किया और प्रणाम किया, ये दस अलग अलग उपचार है, इसको बोलते हैं दसोपचार। फिर उससे अगर सामर्थ्यवान आप है तो 16 उपचार से पंडित जी को बुला करके, जैसे हम लोग मंदिर में विधि विधान से हम पूजा करते हैं, उसमें 16 उपचार होते हैं, 16, तो 16 उपचार अगर हो सके तो 3 दिन का 5 दिन का महायज्ञ करके उसमें भगवान की पूजा होती है। 300 उपचार, 30 उपचारों से महापूजा जिसको बोलते हैं, 30 उपचार से उसमें कोई पढ़े लिखे पंडित जी ब्राह्मण से बुला करके 3 दिन का 5 दिन का विष्णु याग कहते हैं उसको, वो करेंगे तो उसमें 300 उपचार पूजा आती है। और उसमें भी यही यागों के अंदर में एक महापूजा आती है, उसको बोलते हैं राजोपचार, तो राजोपचार पूजा भी इसमें कर सकते हैं। फिर जो है यज्ञ, तो यज्ञ में भगवान नारायण ही यज्ञ का रूप है। मैंने जैसे बताया कि यज्ञो वे विष्णु, विष्णु पुराण के 3rd khand ke 8th adhyay ke 9th shlok में ये वाक्य आता है। तो यज्ञो वे विष्णु, भगवान स्वयं विष्णु भगवान जो है यज्ञ का रूप है, इसलिए यज्ञ तो जरूर करना ही चाहिए। फिर हमारे शास्त्रों में बोलते हैं ना शास्त्र, तो शास्त्र 6 शास्त्र है, उसमें एक शास्त्र का नाम है मीमांसा। मीमांसा के अंदर में लिखा है यज्ञ कर्तव्य कर्म रूप विधि निर्दिष्ट कर्म चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये पूर्व मीमांसा का एक सूत्र है। उसमें लिखा है कि शास्त्रों में बताए गए यज्ञों को कर्तव्य कर्म समझ करके आपको करना चाहिए, अपना खुद का कर्तव्य समझ करके यज्ञ को करना चाहिए। फिर भगवद गीता में भी 3rd adhyay ke 9th shlok में लिखा है यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधन, यानी यज्ञ करने से आपके जितने भी बंधन है वो छूट जाते हैं। यज्ञ से ही आपके जो कर्म, जो पिछले कर्म आपने कर चुके हैं, जो पाप कर्म हो चुके हैं, उससे यज्ञ करने से उसकी मुक्ति होती है, इसलिए यज्ञ इस महीने में जरूर करने चाहिए। और गीता जी में एक श्लोक आता है 3rd adhyay ke 14th shlok में लिखा है, 14th shlok में कि अन्नाद भवति भूतानि परजन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, अगर यज्ञ करेंगे तो यज्ञ करने से उसका धुआं आकाश की तरफ जाएगा, उससे बादल बनेगा और बादल में से पानी बरसेगा और पानी जब

0: पृथ्वी पर बरसेगा तो उसी में से अन्न बनेगा
1: जी।
0: और वही अन्नों को हम खा करके मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए यज्ञ तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही दुआ जो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है और उसी से पानी बरसता है, ये गीता जी कहती है।

0: यज्ञ करना सिर्फ ऐसा नहीं, आहुति देना ही यज्ञ है
1: जी।
0: आप किसी को भोजन कराया तो वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि अच्छा। उसके पेट में भी जठराग्नि है
1: जी।
0: तो उस जठराग्नि को आप भोजन कराएंगे तो वो शांत होगा, तो वो भी एक आपने आहुति दे दी एक प्रकार की, वो यज्ञ हो गया। किसी जीव की सेवा करेंगे तो वो सेवा यज्ञ है
1: जी।
0: आप जप करने बैठे हैं माला लेकर के तो वो जप यज्ञ हो गया। कहीं पे कथा चल रही है कथा को सुनेंगे तो वो ज्ञान यज्ञ हो गया। तो यज्ञ किसी भी प्रकार से कर सकते हैं आप, तो ये करना चाहिए। और भागवत पुराण के अंदर में एक श्लोक आता है, भागवत पुराण के 12वें स्कंद में मतलब 12 चैप्टर के अंदर में तीसरे अध्याय के 52वां श्लोक है
1: जी।
0: कृते यद् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद् हरि कीर्तनात्। मतलब कि पहले सतयुग जब था तो सतयुग में लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, ध्यायतो विष्णु मतलब भगवान नारायण का ध्यान करते थे। आप देखेंगे, आप किसी कथा को सुनेंगे कि ऋषि मुनि हजारों साल तक तप करते थे, उसके ऊपर मिट्टी जम जाती थी, बाल बढ़ जाते थे, तब तक तप करते तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते थे
1: जी।
0: तो सतयुग में ये सब करना पड़ता था, फिर भगवान ने हमारे लिए थोड़ा और आसान कर दिया। त्रेतायाम यजतो मुखे, त्रेतायुग में हमारे लिए आसान कर दिया कि जाओ अब हजारों साल तक तप नहीं करना, बड़े बड़े महायज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं आप वो करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो भगवान यज्ञ में से प्रसन्न होने लगे। फिर त्रेतायुग भी जाने लगा तो भगवान ने हमारे लिए और आसान कर दिया, क्या, द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में क्या करो, सिर्फ मेरी पूजा करो, यज्ञ नहीं करना, आहुति भी नहीं देना, ना हजारों साल तक कठिन मेहनत करनी है। हमारे लिए जो है भगवान ने कहा कि द्वापर युग में आप सिर्फ पूजा करो, तो पूजा से भगवान प्रसन्न होने लगे। आप देखेंगे रावण ने 10 बार सर उतार करके शिव जी पर पूजा करके अर्पण कर दिया, भगवान प्रसन्न हो जाते थे, फिर सर लगा देते थे, ऐसी तो कई सारी कथाएं हैं। तो पूजा से भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन कलयुग में हमारे लिए तो भगवान ने सबसे आसान कर दिया, कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान नारायण जो है कीर्तन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप कीर्तन आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में, वैष्णव मंदिरों में आप जाएंगे तो हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा बोलते, भगवान का जाप ही करते रहते वो, तो भगवान का कीर्तन करते हैं। तो कलयुग में जो है कीर्तन यज्ञ यानी यज्ञ वो सबसे उत्तम कहा गया है। तो ऐसे यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, और कलयुग में हमारे लिए भगवान ने सबसे आसान कर दिया, क्योंकि हम भगवान जानते थे कि कलयुग में मनुष्य जो है पाप कर्म करेगा, धीरे धीरे सब धार्मिक कार्यों को भूल जाएगा, इसलिए भगवान ने हमारे लिए सबसे आसान, ना जप करना है, ना हवन करना है, ना पूजा करनी है, ना हजारों साल तक आदमी 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाता है, तो हजारों साल तक तो कहाँ बैठ पाएगा, इसलिए जो है बोल दिया कि मेरा कीर्तन करने से सब कुछ मिल जाएगा।
1: तो आचार्य जी, अभी यह कार्यक्रम जो है मंगलाचरण अपनी समाप्ति की ओर बढ़ते चली जा रहे हैं, जाते जाते आपसे हम यही पूछेंगे कि अधिक मास हम मनुष्यों को समय, धर्म और जीवन के संतुलन के बारे में क्या सिखाता है और आपका संदेश क्या है?
0: अच्छा, पहले तो हम सुनेंगे समय के बारे में, आपने जो प्रश्न किया समय, धर्म और जीवन के संतुलन के बारे में, तो समय यानी ये 30 दिन का आपको भगवान ने, ऐसा मान लीजिए भगवान ने हमको एक वैलिडिटी दिया है, समय दिया है, एक हमारे लिए
1: भौतिकता से हम लोग दूर हो सकते हैं,
0: दूर हो सकते हैं, तो ये 30 दिन जो है एक ऐसा मान लीजिए कि आपके अपने जीवन के लिए आप जो है भगवान के लिए आप ये समय को व्यतीत करें
1: जी।
0: तो समय ये व्यर्थ जाने न दे, क्योंकि ये समय फिर जो है आएगा नहीं आएगा आपके जीवन में, क्योंकि किसी ना हमारी मृत्यु किसी ना किसी दिन होने वाली, हमको नहीं पता है
1: कि तो अनिवार्य है
0: भविष्य में क्या होगा हमारे साथ। तो समझ लीजिए यही 30 दिन आपके आखिरी समय के 30 दिन है, इसमें जितना भी करेंगे आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, तो समय ये है। उसके बाद आता है धर्म
1: जी।
0: तो धर्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान की पूजा करनी, धर्म मतलब होता है कि दूसरे पर दया रखना, प्रामाणिकता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं ओनेस्ट
1: जी,
0: मतलब किसी के प्रति प्रामाणिक रहना, ईमानदार रहना। तो इस समय में जो है आप ईमानदारी से रहिए, सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी के ऊपर दया कीजिए, किसी अहिंसा का व्रत धारण करें, अहिंसा मतलब किसी के ऊपर कोई भी दुराचार न करें,
1: आचरण को सुधार
0: आचरण को सुधारिए। हाँ, तो समय, दूसरा आता है धर्म, धर्म आपको मैंने बताया, और जो है जीवन के बारे में
1: जी।
0: तो जीवन जो है कैसे हमारा जीवन उन्नत हो, कैसे हमारा जीवन सार्थक हो, और हमारे जीवन तो हम सार्थक बनाएंगे लेकिन साथ में हम कितने लोगों का जीवन सार्थक बना सकते हैं, ये जीवन में जो है याद रखना चाहिए। तो समय, जीवन और धर्म, ये तीनों का जो है मैंने आपको बताया। सभी श्रोताओं से हम आग्रह करते हैं कि ये बातों को सुन करके अपने जीवन में उतारे, और अब इस बातों को जीवन में याद रखें, और अधिक मास के अंदर में भगवान नारायण का या तो भगवान नारायण के किसी भी अवतारों की पूजा करके अपना जीवन सार्थक बनाए, और इस पवित्र महीने

0: का पवित्र अधिक मास का जो है जीवन में उपयोग करें। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम समाप्त हो चला। बहुत बहुत धन्यवाद मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, विशेषकर आपको आचार्य नरेंद्र कुमार व्यास जी, और आभार व्यक्त करेंगे आपको भी कुमार रामा। तो नीतुषा की ओर से आप सबको प्रणाम, शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन कर 11 और परसों 12 मई को लगने जा रहा है। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लेंगे। बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण करने के बाद आर्याना वर्मा ने आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति हाल में हुई, लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहले से तैयार हैं और उन्हें अपने परिवार तथा मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्गों के लोगों को परेशानी होती है और वे प्रभावित हो रहे हैं। कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इस को ध्यान में रखकर मॉरिशन मरीजों के की सर्जरी के लिए सरकार की पहल पर भारत से दो रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं। विदेश की खबरों में मायामी में एक नौका में हुए धमाके में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं, इनमें एक बच्चा भी शामिल है। ये धमाका एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हुआ और ये सभी लोग एक लेजर क्राफ्ट में

0: में सवार थे, जब अचानक ये धमाका हुआ और आग का एक गोला उसमें से उठा। अमरीकी अधिकारी इस धमाके के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी 11 घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: News. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

सामईन कराम, आज इंशाअल्लाह ज़वजल हज से मुतालिका बातें तो ज़रूर होगी, मगर साथ ही साथ हसब रिवायत आप अपनी फरमाइशें, अपनी दुआएं, अपने पैगामात हमें इस नंबर पर ज़रूर भेजिए, 5251705251705, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए इस मजलिस का बाकायदा आगाज रब्बुल जलाल के मुकद्दस कलाम से करते हैं। बागौर वदब समात फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र किया जाए कम है कि उसने मॉरिशस के सैकड़ों खुशनसीब मुसलमानों को अपने मुकद्दस घर की हाज़िरी का शर्फ अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 600 हुज्जाज कराम सरजमीन हरम की जानिब रवाना हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल आज अगले काफिले में मॉरिशस से अनकरीब 135 हुज्जाज कराम हज का फरीज़ा अदा करने के लिए जाएंगे। उनकी परवाज़, उनकी फ़्लाइट शाम के 5 बजे हैं। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज कराम के सफ़र को आसान फरमाए, उनकी हर दुआ और इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उन्हें आफियत के साथ अपने घरों में लौटाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

लब्बैक की सदा में दिल भी पिघल गए, लब्बैक की सदा में दिल भी पिघल गए, काबे के साए तले ख्वाब मुकम्मल हो गए। सामईन कराम, आइए चंद पैगामात की ओर बढ़ते हैं। पहला पैगाम कौमाली और बंधु फैमिली की तरफ से है। बंधु और कौमाली फैमिली की तरफ से उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जो इमसाल हज के लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ बंधु और कौमाली फैमिलीज़ में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अगला पैगाम हमें कौजाब से मौसूल हुआ है। मोहतरमा नसरीन हमें लिखती हैं कि उनके मामू असलम, उनके मुमानी रसूल भी जो शुमैगनी के रहने वाले हैं, वो इमसाल हज के लिए जा रहे हैं। पियाबुकस दुमन कौमाली सुबानी फैमिलीज़ की तरफ से नेक ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ए परवरदिगार आलम उनके कदमों को अपने घरों की तरफ बुलाना भी तेरा करम है और कबूल करना भी, बस कबूलियत कामिला अता फरमा। काबा अकदस के साए में मांगी गई हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, आप भी अपने पैगामात अपनी दुआएं हमें इस नंबर पर ज़रूर भेजिए, 5251700552517005।

सामईन कराम, हाजी घर से निकलता है तो उसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुना मिटा दिया जाता है। मैदान अरफात में उसके सारे गुना माफ़ कर दिए जाते हैं। हाजी जब बैतुल्ला का आखिरी तवाफ करता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। और सामईन, हाजी अपने घर वालों में से चार लोगों की शफात करेगा। सामईन, अगला कलाम हम जो चलाने जा रहे हैं वो ख़ास सदाली वाकवा से जनाब चिबाई मुस्लिम के लिए हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सामईन कराम, फिल वक्त आप निसार अख्तर के साथ उर्दू प्रोग्राम बज़्म अकीदत समात फरमा रहे हैं। हम एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आइए एक ऐलान समात फरमाइए। दावत इस्लामी की जानिब से तमाम इस्लामी बहनों के लिए दुआए सेहत के लिए खुसूसी इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। ये इज्तिमा सुबह के 10 बजे इन मकामात पर मुनाकिद होंगे। बुध 13 मई को जामा मस्जिद होल गुडलैंड में, काथबोन मदरसा में, कोचे मिलिते मदरसा में, सैंपिय मदरसा में, नोवेल दे कुवैत मदरसा में और कौद्यमास्क पावे मदरसा में। जुमेरात 14 मई को सुबह के 10 बजे बोबुआ मदरसा में और त्रियोले मदरसा में। सनीचर 16 मई को सुबह के 10 बजे मोसलमो पाई मदरसा में और कौशाप्लो मदरसा में। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत हैं। सामईन, वाकई खुशबख्त हैं वो लोग, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें हज की सादत का मुजदा मिल चुका है। वो हज की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हाज़िरी मदीना की सादत अता फरमाए। आमीन।

मोहतरम सामईन, मदीने मुनव्वरा वो मुबारक शहर है जहां दिल की मुरादें पूरी होती हैं। वाकई मदीने का बुलावा मिल जाना ही इस बात की अलामत है कि बंदे की किस्मत खुल गई। अब मुरादें पूरी होने की, मुश्किलात टलने की और परेशानियां दूर होने का वक्त आ गया है। कोई भी दुश्वारी आ जाए, बस या रसूलल्ला पुकारने की देर है। सामईन, अगले कलाम की फरमाइश की है पोविदाओं से मोहतरमा शमीमा और उनके शौहर अली वाजिद अली ने। तो आइए ये अगला कलाम इन दोनों के नाम।

मोहतरम सामईन, हाजी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का इरादा करता है तो उसके दिल में अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का चराग रोशन होता है और उसका सीना इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना हो जाता है। हज महज इबादत नहीं बल्कि बंदगी का अमली मुजाहिरा है। ये वो सफ़र हैं जिसकी तैयारी में दिल को साफ करना, ज़बान को नरम करना और नीयत को खालिस करना होता है। हुज्जाज कराम की नीयतों को अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए, आमीन। सामईन, अगला कलाम मोहतरमा शिरीन के लिए ख़ास, जो मोताए ओगी की रहने वाली हैं। उन्होंने इस खूबसूरत कलाम की फरमाइश की है।

जो नहीं गए वो तरसते हैं, जो नहीं गए वो तरसते हैं, जो वापस आ गए वो तरपते हैं। सामईन कराम, ज़िक्र मदीना आशिकान रसूल के लिए 22 तस्कीने दिलो जाहें। मदीने तैबा ऐसा बाबरकत व अज़मत वाला मुकद्दस मकाम है कि जो वहाँ जाता है उसका वापस आने को जी नहीं चाहता। सामईन, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि दुनिया में जितनी भी ज़बानों में जिस कदर कसीदे मदीना मुनव्वरा की जुदाई और उसके दीदार की तमन्ना में लिखे गए और पढ़े गए, वो दुनिया के किसी भी शहर या सरजमीन के लिए नहीं लिखे गए, और इंशाअल्लाह ज़वजल ता क़यामत पढ़े और लिखे जाएंगे।

ना दौलत ना शोहरत, बस एक नज़र चाहिए। ना दौलत ना शोहरत, बस एक नज़र हो जाए। काबे के दर पर कबूल सफ़र हो जाए। सामईन कराम, इसी शेर के साथ हमारा आज का बज़्म अकीदत प्रोग्राम अख्तताम पज़ीर होता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आपके पैगामात की खुशबू और फरमाइशों की मिठास ने इस महफिल को और भी दिलनशीं बना दिया है। आपकी जानिब से आने वाला हर पैगाम, हर दुआ हमारे लिए बेहद कीमती हैं। इनके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। जो हुज्जाज कराम आज शाम हज के लिए जा रहे हैं या जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके हज को कबूल फरमाए, उनकी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। सामईन, अब आपका मेज़बान निसार अख्तर आपसे इजाज़त लेता है। दिल नादां को ये जुदाई गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। पर वादा रहा कि अगले हफ्ते फिर यह सिलसिला कायम होगा और हम आपसे दोबारा हम कलाम होंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह निगहबान।

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस वाले पड़े सरिया के काले 11 மணி ஆகிறது।

0: Number four.
1: ஆல்பம் நோவால வரும் அடுத்து வரும் பாடல்.

0: Number two.
1: Bird the Bear Biker.

0: आप।
1: हमारा प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, प्रिय संगीत के सुनने वालों, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का सप्रेम नमन स्वीकार हो। शाम के 4:06 हो रही है और अभी से लेकर 5 बजे तक लाए है प्रोग्राम हम और आप। आज का हमारा विषय ये है कि क्यों हमारे बच्चे घर में हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। हिंदी भाषा तो दुनिया भर की भाषा है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत भाषा है। मीडिया में इसका इस्तेमाल होता है, रेडियो टीवी की दुनिया में, अखबार की दुनिया में भी, और स्कूल में पढ़ाई जाती है ये भाषा। प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक और तेसरी लेवल तक हिंदी की पढ़ाई होती है। BA, MA, यहाँ तक कि PhD हिंदी की पढ़ाई होती है। फिर क्यों हमारे बच्चे घर पे हिंदी नहीं बोलना चाहते? क्या हिंदी बोलने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं? क्या उन्हें हिंदी में बात करने में शर्म आती है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं 4028085 पर। आप हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, कि आखिर ये भाषा क्यों बोली नहीं जाती। और याद है दोस्तों, भाषा तब तक जीवित रहती है जब तक हम उस भाषा को बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में, और उसका बोलते तो है, ओरल जो है लैंग्वेज, साथ में रिटन भी होना चाहिए, यानी कि वो भाषा जिसे बोला जाए और जिसे लिखा जाए, तब वो भाषा जीवित रहती है। तो क्यों ऐसा है कि हमारे देश में मैंने देखा है बहुत से बच्चे केवल कक्षा में शायद जब गुरुजी या बहन जी पढ़ा रहे हैं तब उस समय बच्चे फॉलो करते हैं, पर उसके बाद एक भी शब्द हिंदी में नहीं बोलते हैं। या कभी मैंने बच्चे को नहीं, मैंने नहीं देखा, कोई बच्चा कहीं शादी में जाता है तो कहता है प्रणाम चाचा जी। ये प्रणाम शब्द मैंने भी देखा कि बच्चे इस्तेमाल करते नहीं हैं। अब पता नहीं दोष किसका है, क्या माँ बाप बच्चों को नहीं सिखाते या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसी पर हम जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम में। सो बेशक आप फ़ोन कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया, और एक कॉल है, लेते उस कॉल को। हेलो हेलो
2: हेलो प्रताप,
1: हेलो जी, आप कौन?
2: आफेज भाई।
1: आफेज जी बताइए कि क्यों बच्चे हिंदी नहीं बोलना चाहते?
2: नहीं हम बोला था, हमने छोटा से बतेले है सर लौंगा, अब अभी के लेखा नहीं बतियाला।
1: क्यों क्यों ऐसा है?
2: कहानी की मामा लोग तो बतलेले बा, आप हिंदी के लेखा हमारे को चीज ऑफ हो प्रताप छोटा ये ऑंगले बतियाला हमने को फॉर्मूला।
1: नहीं हम अभी हिंदी कर रहे हैं, हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं, डरते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। सो ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। आप अंग्रेजी की भाषा के, हमने कहा कि हिंदी भाषा क्यों लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो हम रोज़ टीवी पर हिंदी फिल्में देखते हैं, रेडियो पढ़ते हो, हिंदी कार्यक्रम चलते हैं, हिंदुस्तानी प्रोग्राम, फिर क्यों केवल बच्चे नहीं, हमने बड़ों को भी देखे कभी हिचकिचाते हैं इस भाषा को बोलने के लिए। पर अगर भारत के लोग मॉरिशस में आए, वो कहीं सफ़र करें, तो वो लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम क्यों शर्माते हैं? क्या कारण है कि हम इस भाषा को बोलते नहीं हैं? क्या हमको शर्म आती है? शर्माना नहीं चाहिए, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है। इसी पर आप अपने विचार दे सकते हैं। अभी के लिए हो जाए एक प्यारा सा गीत, इस गीत के बाद इस बातचीत को हम जारी रखेंगे।

0: और अभी एक श्रोता है लाइन पे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो जी।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्कार, आपका स्वागत है। बताइए कि क्यों, क्या कारण हो सकते हैं कि आजकल बच्चे और बड़े लोग हिंदी घर पर नहीं बोलते हैं, क्यों?
1: क्योंकि बड़े लोग तो नहीं बोलते, इसलिए बच्चे नहीं सीखते।
0: क्यों, वो शर्माते हैं इस भाषा को बोलने के लिए, क्या कारण हो सकता है?
1: पता, शर्माने तो होता है बड़े आदमी लोग,
0: हाँ।
1: इसलिए
0: आपने कभी बच्चों को घर पर हिंदी बोलते हुए देखा है कहीं पर?
1: मैं हिंदी बोलती हूँ घर पर।
0: नहीं, अगर आप किसी शादी में जाते हैं या बच्चे वहाँ घूम रहे हैं मोबाइल लेकर, तो क्या हिंदी में बात करते हैं? नहीं, बच्चे लोग हिंदी में बात,
1: बच्चे लोग नहीं
0: पर समझते हैं,
1: मैं बोलती नहीं है।
0: तो क्या करना चाहिए ताकि बच्चे लोग इस भाषा को बोले, क्या करना चाहिए?
1: माँ बाप को सिखाना चाहिए।
0: हाँ,
1: माँ बाप को सिखाना चाहिए।
0: हाँ,
1: दादा दादी नाना नानी ये सब
0: सिखाना चाहिए, तो
1: ना बच्चे सीखेंगे।
0: हाँ, वरना नहीं बोलेंगे।
1: नहीं बोलेंगे। बड़ा भी बतलावे के चाहे।
0: हाँ, तब लड़का लोग सीखी।
1: हाँ,
0: तो लड़का लोग तो खाली धमार करे, कहाँ सीखे था।
1: पोता में तो खाली धमार।
0: तो लड़का लोग के चेहरा छोटा से सिखाएगी।
1: हाँ,
0: अब बड़ा होगा जीता होगा तो अब बोलब हिंदी में बार आओ आ आ ई करे, तो लड़का कहा आ आ ई ऊ करी।
1: नहीं हो।
0: छोटा से लड़का के बच्चे बच्चे लड़का सीखी आगे के लड़का लोग बैठ कर जाता हिंदी सब। हाँ, सीखता। अभी के लड़का लोग कहाँ उतना नहीं जाला।
1: हमने के माँ बाप सब हिंदी बोलते रहन सब घर में, हम ही सीख ले सब।
0: अभी ले हिंदी भोजपुरी। हाँ, भाषा के जब जीवित रखब सब, चाहे भाषा के बतिया के तब वो भाषा जीवित, तब भाषा मर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
1: थैंक यू।
0: ओके जी, ये थी रुक्मिनी जी। और एक दोस्त लाइन पे। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते सिंह जी।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
2: मैं हूँ विष्णुदेव।
0: हाँ विष्णुदेव, बोलिए, क्यों आजकल लोग इस भाषा को शर्माते हैं बोलने के लिए, घर पर भी बच्चे इस भाषा को बोलते नहीं है, क्या?
2: लोग चाहते हैं घर पर हिंदी बोले हैं, जैसे फिल्मों में बोलते हैं।
0: हाँ, जैसे फिल्मों में।
2: इसमें कसूर है माता पिता भाई बहनों की, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को हिंदी क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है।
0: हाँ,
2: वकील बनाना है, इंजीनियर बनाना, तो हिंदी पढ़कर क्या मिलेगा? ये माता पिता का कसूर है। यदि माता पिता बच्चों को लेकर छोटे ही से जाकर स्कूल में छोड़ेंगे, बैठका में छोड़ेंगे, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो माता ही पिता के कसूर है ना। मैं लगभग 60 वर्ष

0: सौ से 100-100 से हिंदी पढ़ाता हूँ।
1: आप पढ़ाते
0: 200-300 बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन आज लगभग लगभग 5 क्रिश्चियन के बच्चे आकर हिंदी पढ़ रहे हैं। क्रिश्चियन जर्नलिस्ट के बच्चे,
1: मैंने चाइनीज के बच्चों को भी हिंदी मैंने देखा है। मेरे गांव में एक चाइनीज की लड़की मॉरिशस में नंबर 1 आई थी सीपी के एग्जाम में हिंदी में।
0: कोटेव में वो काम कर रही थी एमबीसी में।
1: हाँ
0: चाइनीज।
1: हाँ
0: तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चे का कसूर है इसमें। अब मैं क्या कहूँ भाई जी, बहुत कहना है।
1: हाँ पर अगर बचपन से इस भाषा को बच्चों को सिखाया जाए,
0: भगवान राम, भगवान कृष्ण, दयानंद तो हिंदी नहीं पढ़े थे, लेकिन अपना नाम अमर कर दिया हिंदी से। मैंने जाकर शिवालय में कहा, एक मंदिर में, कि देखो पंडित जी, बच्चों को बोलना पढ़ने को हिंदी। बोला कह रहे पढ़ लेंगे तो मैं क्या करूंगा। जब सभी लोग पढ़ने लगे रामायण, गीता, वेद, पुराण, तो मैं क्या करूं, मेरा तो काम है ये पूजा पाठ।
1: हाँ।
0: तो नहीं बोलेंगे, बोलते हैं
1: है।
0: कल अभी परसों मैंने एक है टीचर को कहा बराबर, अभी बच्चे बराबर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। यदि हिंदी के जो अध्यापक है, अध्यापिका, यदि वो जोर डालेंगे उन बच्चों को तो आना पड़ेगा।
1: हाँ
0: क्यों नहीं आएंगे।
1: और हिंदी तो प्यार की भाषा है, कितनी सुंदर भाषा है, इतनी प्यारी प्यारी कविताएं सब हैं इसमें।
0: मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ अंग्रेजी, फ्रेंच, पोंका तक।
1: हाँ
0: लेकिन मैं आर्य सभा का सदस्य बना हिंदी से,
1: ये तो बहुत अच्छी
0: मैं
1: बात।
0: पंडित
1: है।
0: बना।
1: हाँ।
0: मैं घर घर रामायण यज पूजा पाठ।
1: और भाई जी आप कितने साल से हिंदी बोलते हैं, अभी कितने सालों के जब से आप हिंदी बोलते हैं?
0: बोलते हैं
1: कितने साल
0: से? बचपन से भाई,
1: बचपन से, जब से माता पिता लोग रहा, दादा दादी सब कोई संग भाषा बती रहा। आज
0: हिंदी बोलते थे, पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे एक समय में, तो हम घर पर हिंदी ही बोलते हैं।
1: हाँ
0: हिंदी या भोजपुरी बोलते हैं।
1: अगर बस में जाते हैं कहीं पर तो हिंदी ही बोलते हैं।
0: हाँ भाई मैं डरता नहीं हूँ हिंदी बोलने को, न शर्म आता हूँ। क्यों सर?
1: हाँ ये तो हमारे
0: बीगो का जाकर बीगो में ऑफिस में देखता हूँ, शायद हिंदू होगा ये, तो उसे मैं हिंदी में बोलता हूँ,
1: हिंदी में बात करते हैं,
0: हिंदी में बोलता हूँ। भाई जी नमस्ते,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। हाँ हिंदी भाषा जो है खूबसूरत भाषा है, बहुत सारे देशों में बोली जाती है। मुझे याद है एमबीसी में मैंने एक व्यक्ति से भेंट की थी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया था, वो एक अंग्रेजी व्यक्ति था, इंग्लिश मैन, और उसने पीएचडी किया था हिंदी में। और वाओ, अगर एक व्यक्ति अंग्रेज होकर हिंदी इतनी अच्छी तरह से बोल सकता है, लिख सकता है, उसने पीएचडी किए हैं, फिर हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, है कि नहीं। और हिंदी जो है कल्चर की भाषा है, संस्कृति, धर्म संस्कृति की भाषा है, हमारी धरोहर है हिंदी भाषा। भाषा को बोलनी चाहिए, तब ना ये भाषा जाकर आगे खूबसूरती से इसका आदर प्रचार प्रसार होगा। और अगर हम नहीं बोलेंगे हिंदी में, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे। और लगता है और एक कॉल है। हेलो
2: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते जी, आपका नाम?
2: माधुरी हूँ।
1: हाँ माधुरी, कहाँ से?
2: मैं बैग से।
1: हाँ बोले तो कहे, आजकल लड़का लोग हिंदी नहीं बोलेगा।
2: हाँ भाई प्रताप से बच्चा था। रेखा रेडियो
1: लाइव। हाँ लाइव है, बोला।
2: अच्छा नमस्ते भाई जी।
1: नमस्ते जी।
2: हाँ देखा जन भाषा बोला था वजह हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, तो हमने ओके बहुत दूर बिग दिले हिस्सा
1: के बिगलग भाई भाषा, हम तो नहीं बिगले, हम तो अभी भी बचाई ला, हम तो
2: बड़ा आदमी
1: लोग।
2: जस्ती दूसर भाषा से भी कर ली,
1: बड़ा आदमी की बात बोलता है माता जी, हम तो बड़ा आदमी तो सब कोई जाता दुनिया से।
2: हाँ
1: जब बड़ा आदमी
2: चाहेला हमने के अपन लड़का के घर में चाहेला हमने के भोजपुरी और हिंदी बतिया की, तब हमने के भाषा जीवित रही।
1: एगो लड़का के बोल बा रामायण पढ़े के कोई के मरनी होल बा, तब तो रामायण खो के बड़ी मोपा कोने उतरा फॉर्म बोल दी।
2: हाँ बोल दिया तो के तोर के बाबा जी
1: बोल हाँ हाँ सच्चे की सच्चे बोले
2: तो तोर हमनी है सा जब हमनी अपन लड़का के नहीं सिखाईला था हिंदी बतियाए के या भोजपुरी बतियाए के या कोई के नमस्ते करे के या समाज में ले जा के कुछ सिखावे के तो हमनी बस हमनी के लड़का पढ़ता हमनी के लड़का है करता हमने एगो बहाना ढूंढीला
1: एक बहाना बन जाता है
2: एगो बहाना बन जाला नहीं हमने अपन लड़का के हमने अन्य कोम देखेला उठे मटर मॉर्निंग मौजू बसो करेलन जा हमने उठे मटर अपन लड़का के कब नमस्ते बोल रहे था
1: हम कहूं नहीं कहें लड़का लोग के प्रणाम हम दिशा लगे को लड़का के बोल रहे सैन चाचा सा जरी प्रणाम तो लड़का मन मुता करता
2: हाँ तो नहीं जाने
1: तो नहीं जाता प्रणाम कौन सी बोल चला
2: ये बात है इमे तोर हमनी के लड़का नहीं बा हमनी के लड़का कितना साल के हवन जा जाने ल मधु के कैसे हम सिखैले रहली ना
1: हां हम जानत
2: है काम कर लग तू तो जानत होइ बा हां तो के नहीं सिखैती छोटा से हमर बेटा समाज जाला समाज में ठड़ा के जब शब्द बतियाला सेजा जब शब्द बतियाला तो सब कोई कर मुता केला काहे खातिर आज हम सिखैले हैं हमार बेटी लोग बड़ा बड़ा दर्जे में बैठ के चल गल कोई बाह भी बाकी वो लोग भोजपुरी हिंदी सब जाता से बतिया लन जा
1: हिंदी हमारी मान है हिंदी हमारी शान है गौरव है हिंदी भाषा बोलो
2: हम एक झाना से गई बोली तो लोग खाली किरुअली बतिया ले सब बोले हाँ खाली मगाजे में किरुअली बतिया ला सा अपन घर में उर्दू बतिया ला सा देखला ना
1: हाँ हर धर्म संस्कृति की अपनी भाषा
2: ते बोले एक सौंप दे
1: एक उदाहरण है कि हम बोल सकते हैं शर्माना नहीं चाहिए
2: हाँ सर हमने के भाषा के सा एक बार हम केरपीप गई ली हमने तो छोटा से भोजपुरी बतिया ला जा हिंदी पढ़ी ला सा हिंदी बतिया ला सा जब जब केरपीप गई ली हमारे माँ कहते माँ हमके हाली दे तो चौवा गई गरम बाटे हाली दे अब लगलन जे हमरा बुफोने करे बोले यो गिचाली कुछ कहली कुछ भगे हमके चा दे आ हा हा हा सब हंसे लगलन जा काहे वो लोग सभ्यता के बा अपन केरपीप में रहे लन जा अपन अपन भाषा भुला गल हवन जा
1: हमके जर हमके गासिन हमके जर तो ई हमके पर दादा लोग यही तले क्या भाषा संस्कृति
2: हाँ।
1: अभी भाषा के नहीं बचे आपसे तो लड़का लोग के कैसे बताओ आपसे की भाषा के महत्व कौन सी है माता जी बहुत बहुत धन्यवाद तोहर विचार खाते बहुत धन्यवाद तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों आजकल धीरे धीरे लोग कम इस भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं पहले के ज़माने में हम सभी लोग बैठ कर जाया करते थे हिंदी स्कूल जाते थे हिंदी पढ़ते थे लिखते थे हिंदी में कविताएं नाटक ये सब आजकल नाटक ये सब भी कम हो गया है सो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इन सब में भागने ताकि हम हिंदी भाषा को आगे बढ़ा सके अभी के लिए सुनते एक प्यारा सा गीत फिल्म सैलाब से लग गया इसी के बाद हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्यों आजकल हिंदी भाषा घर में लोग कम बोलते हैं

0: हम और आप।
1: हमारा आप कार्यक्रम AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पर 819 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 4:32 हो रही है। और आज हम जानना चाहते हैं कि क्यों आजकल घरों में हिंदी भाषा कम बोली जाती है, और हिंदी भाषा तो हमारी भाषा है, हमारी पहचान है, फिर क्यों इस भाषा को कम लोग बोलते हैं? क्या उन्हें शर्म आती है? ऐसा क्यों होता है? एक दोस्त लाइन पे उनसे मिलेंगे।
2: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका नाम?
2: जी, मैं हूँ राधा मोचिदा से।
1: हाँ राधा, कहिए क्यों लोग हिंदी कम बोलते हैं आजकल?
2: जी, मैं इसलिए बोलूंगी कि लोग हिंदी क्यों, क्योंकि आजकल जो है ना, प्रताप जी क्या करें, लोग बहुत सभ्य हो गए हैं। अपनी भाषा बोलने में उन्हें थोड़ा शर्म आती है,
1: अपनी भाषा में शर्म।
2: यदि हम चीनी लोगों को देखें, बांग्लादेशी लोगों को देखें, श्रीलंके को देखें, वो कहीं भी रहते हैं,
1: अपनी भाषा
2: बोलने में जरा भी वो हिचकिचाते नहीं। वो बस में हो, सड़क पर हो, कहीं भी हो, कुछ भी बोल रही है, हमारी समझ में आई ना आई, उनकी समझ में आ रही है वो क्या बोल रही है।
1: हाँ, वो लोग जानते हैं क्या बोल रहे हैं।
2: हाँ, लेकिन हमारे लोगों को ही पता नहीं क्यों तकलीफ है अपनी भाषा से। जैसे देखिए, भाषा कई प्रकार की है, किसी भी भाषा को बोलना गलत नहीं है, सीखना समझना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो वही बात हुई ना प्रताप जी, कि अपनी माँ को धुतकार कर किसी और की माँ को गले लगाना।
1: हाँ, ये तो
2: मतलब
1: है।
2: कि अपनी माँ को तो पहले मान्यता देनी चाहिए ना।
1: हाँ।
2: और देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल नहीं,
1: कभी स्कूल, माताजी कभी स्कूल नहीं गई थी,
2: कभी नहीं गई। जिस समय की वो थी, बहुत पुराने, अभी वो होती तो 91 साल की हो जाती, 90 ईयर्स 90। तो उस समय वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, और बहुत छोटी उम्र में वो शादी करके आई थी, वो 8-9 साल की उम्र
1: शादी हो गई थी माताजी की।
2: हाँ, उस जमाने में तो होती थी ना, छोटी छोटी बच्ची,
1: बाल विवाह।
2: तो वो जब शादी करके आई थी, तो वो उसे बिल्कुल पढ़ना लिखना, वो पढ़ना चाहती थी लेकिन कुछ मजबूरियां थी, पढ़ नहीं पाई। तो जब मेरी दादी जी जाती थी गीत गवाई में गाने, तो उसे लेकर जाती थी अपने साथ, और माँ जाकर वह चुकू मुकू बैठ कर गाल पर हाथ रखकर खूब ध्यान से सुनती। वो जितनी भी दादी चाची गाती थी, वो सब टेप रिकॉर्डिंग की तरह उसके दिमाग में वो।
1: पर माताजी बोलती थी हिंदी भाषा?
2: हाँ, बोलती थी हिंदी, नहीं, भोजपुरी खूब बोलती थी।
1: भोजपुरी बताता है।
2: हाँ, लेकिन मैं ये बोली, वो बिना पढ़े लिखे वो इतना गाना गाती थी, इतना गाना उसके दिमाग में था, मान लीजिए कंप्यूटर की तरह।
1: अब अगर वो पढ़ी लिखी होती तो कितनी बुद्धिमान बन जाती है। अगर उन्हें
2: कुछ भी हो गाती थी,
1: उन्हें अभी मौका नहीं मिला
2: पढ़े लिखे। हाँ,
1: मौका नहीं मिला पढ़ने के लिए, इतना कुछ सीखे, अगर मौका मिलता तो।
2: उस समय एक अलग ही जमाना था प्रताप जी, सोचिए, अभी वो 90 साल की थी, मैं किस काल की बात कर रही हूँ। हाँ, वो तो उस समय उसके पास इतना नहीं था, लेकिन उसने हमको डांट डांट कर सिखाया, कहा तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत तुम लोग लिखो, सीखो इन गानों को, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन वो लोग जब गाती थी, वो अकेली नहीं, और भी दादियाँ थी गाँव में, और भी मेरी बहनें हैं, इतना वो गाती थी कि उनके समान आज भी कोई ऐसी गिटारी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, वो बिन पढ़े लिखे इतनी वो चतुर थी।
1: आपके घर में नाती पोते हैं जो कॉलेज जाते हैं?
2: हमारे घर में बच्चे थे, अभी तो एक ही बच्चा है जो कॉलेज जा रहा है, बाकी जो बाकी
1: तो जो कॉलेज जाता है, क्या वो घर में हिंदी बोलता है?
2: थोड़ा थोड़ा माँ सिखाती है उसको, क्योंकि वो तो अभी के बच्चे हैं ना।
1: हाँ,
2: कोशिश करते हैं कि वो समझता, सब है, सब समझता है, हिंदी भोजपुरी सब समझता है, लेकिन बोलता भी है, थोड़ा थोड़ा बोलता है, क्योंकि उसे समझ में सब आता है, जितना आप बोलो।

0: को समझ जाता है,
1: समझ जाता है। हाँ जी,
0: हाँ, हाँ यही जी। लेकिन मैं अभी मैं आपके रेडियो के माध्यम से मैं हर लोगों को कहूंगी कि अपनी भाषा बोलने में, बच्चों को सीखने सिखाने में बिल्कुल भी शर्माना ही चकना नहीं चाहिए प्रताप जी।
1: हाँ जी,
0: नहीं तो एक दिन ये मर जाएगा।
1: यही तो मैं कह रहा हूँ, भाषा जब तक हम इसे बोलते हैं लिखते हैं तब तक वो जीवित रहती है, पर भाषा अगर नहीं बोला जाए तो भाषा मर जाएगी, डेड लैंग्वेज।
0: और अपनी भाषा बोलने में क्यों शर्माना चाहिए?
1: यही तो मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी आपके विचार के लिए। और एक दोस्त है धनी जी बाशरी से। भाई धनी शुभ नमस्कार।
2: भाई प्रताप जी नमस्कार। नमस्कार,
1: हाँ बोलिए। क्यों लोग हिंदी नहीं बोलते?
2: प्रताप भाई देखिए एक बात कहूँगा, आज की माताएं,
1: हाँ,
2: पिता को इतना समय तो मिलता ही नहीं है,
1: हाँ,
2: परंतु माताएं वो बच्चों से हिंदी नहीं बोलते हैं, हो सकता है कि वो ही नहीं जानते हैं।
1: आली एगो बात बोलते हैं, मैवा नहीं जाने ला तो जिन घर में माँ पढ़ा लिखल बा हिंदी पढ़ावेला तो वो देखते फांसी बचाता लिखवा से।
2: हाँ, ये गलत है, नहीं चाहत हूँ कि उन लोग के बच्चा हिंदी बोली।
1: भाषा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए
2: मैं
1: आपको अपना एग्जांपल, मैं एक फ्रेंच अध्यापक हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पर मैं हिंदी भोजपुरी घर में बोलता हूँ।
2: थोड़ा एक दो शब्द मुझे भी बोलने दीजिए।
1: हाँ,
2: यही मैं कहने वाला था, आप टीचर है, मुझे पता है, सभी को पता है आप टीचर है। देखिए बच्चों को एक तो स्कूल का काम मिलता है और ट्यूशन का भी काम मिलता
1: ये तो है, हाँ।
2: उनके पास समय ही नहीं है। और एक बात जो मैं बोल रहा था शुरू में, बच्चे माताएं मान लीजिए मामू है, चाचा है, फूफा है, सब किस गिनती में जाते हैं, अंकल,
1: हाँ,
2: सभी अंकल ही हैं, तो नाता बच्चे नाता भी नहीं समझते हैं।
1: देखो कि भाई चाचा हाँ मामू होते नहीं जाना था, तो खाली अंकल जाने लगा।
2: ये अंकल, ये मेरा मामू है, ये फूफा है, ये चाचा है,
1: हाँ,
2: मेरे पिता का भाई है,
1: हाँ, हाँ,
2: ये सब नहीं जानते हैं, जानते हैं अंकल।
1: तब बच्चों को भाई धनी बच्चों को सिखाना चाहिए ना
2: जी, बच्चों को सिखा। माताएं आज के माताएं नहीं जानते हैं क्योंकि वो लंबे लंबे नाखून रखते हैं
1: ना, ऐसे नहीं बिरंगे, ऐसे नहीं बोला हो काहे से सब प्लीज।
2: धन्यवाद धन्यवाद आपको।
1: ओके, आपने अपने विचार दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर ये सब नहीं। आप शायद आप थोड़ा सा हटकर विषय की हो गई, नहीं शायद आप कहना चाहते हैं कि जो माताएं जिन्हें हिंदी नहीं आती है तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगी। ओके, मान लीजिए बच्चा माता वो जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर अगर बच्चे है अगर घर में अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं तो और तो सदस्य पढ़े लिखे होंगे ना, कोई ना कोई तो बच्चे को सिखा सकता है कि चलो आज हम हिंदी में बात करेंगे या हिंदी में कहानी हो जाए, एक कविता। कितना अच्छा लगता है ना जब हिंदी बोलते या भोजपुरी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर पता नहीं धीरे धीरे लोग इस भाषा को भूल रहे हैं या बोलना नहीं चाहते। चलिए एक दोस्त से मिलेंगे, श्यामा जी हमारे साथ है। हेलो श्यामा जी, शुभ नमस्कार।
3: नमस्ते,
1: कैसी है श्यामा जी?
3: आजकल तबीयत इतना ठीक नहीं रहता है।
1: हाँ
3: हाँ, तो मैं ये कहूँगी प्रताप जी, जो हमारे माँ बाप थे ना वो घर पर हिंदी नहीं बोलते थे, लेकिन भोजपुरी तो जड़ है ना, भोजपुरी तो बोलते थे।
1: भोजपुरी तो नहीं बोले आजकल लिखी रहा,
3: तो सुना ना, तो उस समय जब भोजपुरी बोलते थे फिर भी अपने बच्चों को लिखा पढ़ा कर यहाँ तक लाई ना।
1: हाँ,
3: तो आपने तो विषय बहुत अच्छा चुना है आज के लिए, अच्छा विषय उठाया है। आजकल हमारे बच्चे हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं,
1: यही तो दुख की बात है ना माता जी।
3: तो अगर माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई में जोर नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से हिंदी बोलेंगे? दोष है,
1: मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, मेरी बेटी के नाम पर परी प्रोग्राम सुनना, आयो मोपा पुगा लेता हूँ, तो क्या कहेंगे माता जी?
3: यही तो बच्चे
1: लोग है। बच्चे लोग बहुत थिएटर जिद्दी है आजकल, बच्चे को कैसे
3: समझाएं? सुनो मैं क्या कर रही हूँ, जब खुद माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे तो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मेरी बेटी इसे कहती है ना, तो मैंने पूछा क्यों,
1: हाँ
3: है? क्यों नहीं हिंदी पढ़ते हैं? मैंने तो घर मेरे
1: डिस्को, जब होटल में जाती है डिस्को

0: डिस्को में भाग लेती है, पर हिंदी के बारे में कहेंगे बैठकर कुछ सुनो तो नहीं सुनेगी।
1: मेरे मुझे तो पत्र मिला था।
0: हाँ।
1: क्यों पत्र मिला था कि मेरी बच्चे, मेरी जो बच्ची है हिंदी में भाग नहीं लेंगी, नाटक में भाग नहीं लेंगी। वो किस नाटक में भाग लेंगी? वो क्रियोली के नाटक में भाग लेंगी। हाँ, फ्रेंच में भाग लेंगी। क्रियोली जी
0: नहीं, सभी भाषा सीखना चाहिए, अच्छी बात है, पर हमारी अपनी भाषा इसको भी मान देना चाहिए ना।
1: तो आपको पता है मैंने क्या कहा उस समय, जब किसी ने कहा मुझे कि हमने के लड़का तो नहीं पढ़े खोजा, मैंने कहा तो अच्छा तो लड़का नहीं पढ़े खोजेला तो शादी ब्याह पूजा पाठ पंडित नहीं बोलिया, प्रेत बला लिया, पादरी के बला लिया। हाँ, हाँ, तो आपको तो पता है
0: हमारे धर्म ग्रंथ रामायण वेद पुराण सब तो हिंदी संस्कृत में, अगर बच्चे नहीं जानेंगे, हम नहीं सिखाएंगे तो आगे समय में कठिनाई होगी। है बड़े लोग तो सब आदमी लोग तो जाता एक बार एक जाता।
1: आपको पता है जब मैं काम करती थी पछला पहर रिटायर्ड होने को 2 वर्ष रह गया था।
0: हाँ।
1: तो मैं ये कोचिंग क्लास करती थी क्रिश्चियन के बच्चों के साथ, क्योंकि वे चाहते थे उनके बच्चे हिंदी पढ़े, हिंदी सीखे, और मिनिस्ट्री की ओर से मुझे तनख्वाह मिलता था उन्हें शाम को वक्त। आपको तो पता है अपने काम किया है।
0: हाँ जी।
1: तो वो आप जिसे कहते हैं 4 के 3 बजे के बाद 2 घंटे की कक्षा मैं करती थी। तो देखो उनमें कितनी लगन है, श्रद्धा है हिंदी सीखने की, बोलने की, और बच्चे भी अच्छे अच्छे थे, वो सुनते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो आयो मो मामा अभी तो बैठका नहीं, कहाँ लेता बाटे
0: बैठका,
1: खाली
0: है बैठका, बहुत सी जगहों में बच्चे नहीं जाते। तो अध्यापक अगर आएंगे भी तो क्या सिखाएंगे, कोई सीखने वाला नहीं है। तो एक दिन हम एक मरनी में गई थी, मरनी में रामायण होला, तब पूछा मुझे बोला था तो कोई यहाँ पर कोई रामायण पढ़े नहीं था, कोई हिंदी नहीं जाना, तो वहाँ को बहन जी बैठा रहा था, बहन जी से बोलते भाई उपा कौन फिर रामायण, बोले नहीं हम मोपा भी थे तो हम ही रामायण वाले की पढ़ ले रही थोड़ा सुन, तो कौ ची बो रामायण पढ़ ली बता गो हिंदी में, का जिनी सरमान से की कामा का बोलबा कोई की बोलबा, तो तू ही मोदी
1: हवे बोलना। आजकल हमने के भाषा के मान सम्मान नहीं बा, बॉलीवुड के सोते डालडा नाचे के डालडा गीत गावे के डालडा होय सब। हां, ढोल बजाओ, जानदे बजाओ, कई हास हिंदू जाति में जानदे।
0: पर श्यामा जी, हिंदी जो बॉलीवुड के गीत नाचे गाना उसमें तो हिंदी की भाषा है ना।
1: हाँ।
0: उसमें उसे हम तो रेडियो सुन सुन के हमने पढ़ ले, रेडियो सुन सुन के गीत कैसे, कविता लिखे के, कहानी लिखे के, उपन्यास है तो सुन सुन के रेडियो में, जैसे कोई बच्चा लन सा राज्यों में आनी माते आने लोग से सीख रहे से भाषा तभी के लिए
1: कारण को बात तो तू नहीं पता प्रताप। हाँ, बोला दिनवा के ना लासनते जानी बिगड़ल बिगड़ल बाटे। हम आलोंजे हैं सोचत हैं हिंदी भाषा के बारे में, जे कैसे आदमी बोले ला हम निकल लई का हिंदी नहीं पढ़े खुजेला,
0: का जी
1: हम निकल लई का काहे नहीं पढ़े, हम नहीं जानिस पास तू है विषय वा दलब
0: एक दिन विषय दलब सफी करने कर दिया देखो
1: बड़ी। हां, हम तो कौन बोला था, हम सोचते रह गए री कब लइका लोग से बोलब
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। आपने फोन किया जी हाँ, और जैसे हम बोले कि भाषा जो है हम सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी भाषा हो, हर भाषा की अपनी जगह है, वो चाहे तमिल हो, फ्रेंच हो, क्रियोल हो, अंग्रेज़ी हो, मदारी हो, उर्दू हो, सब भाषा की अपनी अपनी पहचान है। बहुत अच्छी बात है कि भाषाओं को सीखते हैं, पर अपनी भाषा को भी मान देना चाहिए। जैसे कि आज हम हिंदी भाषा के बारे में बात करें, तो अगर कहीं मान लीजिए अब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्हें छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप मिला है एक देश में जाने के लिए जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, अब लड़का हिंदी नहीं जानी बतियाई तो कैसे वहाँ बड़ी बतियाई यूनिवर्सिटी में, तो एक गो भाषा नहीं, चाहे तू 10 गो भाषा पढ़ा अच्छी बात, 12 गो 20 गो भाषा, जितना भाषा तू पढ़ वो अच्छा, अच्छी बात है कि हम भाषा पढ़ते और भाषाएँ सीखते, ये हमें काम आएगा आने वाले दिनों में, पर कम से कम हिंदी भाषा को तो बोलनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है कुर्बान, ये धरती चांद सितारे।

इस गीत के साथ ही हमारा प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। आज का हमारा विषय था कि क्यों आजकल हमारे बच्चे हिंदी भाषा कम बोलते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, कौन से वो फैक्टर है जिससे कि हमारे बच्चे हिंदी भाषा कम बोलते हैं या बोलते ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, इस प्रोग्राम में भाग लिया। आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। ठीक 5 बजे होगा अगला प्रोग्राम, तो हर पर्सन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्यार से AM2 MBC रेडियो मॉरिशस।

0: घड़ी में नाले बखत मॉरिशस में शाम के ठीक 5 बजे बाद तू सुनते हुआ AM2 रेडियो मॉरिशस
1: 7 days a week 24 hours a day my this is radio mauritius
0: सब संग जालो के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। ये तो मनपसंद रेडियो चैनल MBC रेडियो मॉरिशस। तो हर पसंद अभी से लेके सांझ के 6 बजे ले रमन करता करो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमावा का जगो देव विद जगो विद सैंग 4-0-2-8-0-8-5 आज है दिमास के सांझ और दिमास के सांझ के गवटी गवट दिमास आज 10 मई 2026 मन करता नाचे के गावे के झूमे के कमरवा डोलाए के नाचे गावे झूमे ई भैर का गाना वंदना हमार सुना रोशन सरा सिंह गैलकबा है गीत संजय बिहारी की ओर से कल पत्नी सुरेखा बेटा कुशल बहु बेटी रिंकू दामाद और सब बिहारी परिवार के लिए माधव की ओर से करके है गीत चली कर पापा कवि मामा टीना पुपू पुपुरीना दादी माला भैरव परिवार संगीता मिरन की ओर से गीत चली रीता सीतालू जी के नाम और हे गीत चलावते सब परी की ओर से कर्मा रानी खतेर और हे गीत चलाते सब रेडियो मॉरिशस के सुनने वालों के नाम वंदना हमार सुना

0: जब मिली गमट करे के जलसा करे के जब चेहरा गमट करे के कहे के जिंदगी बहुत छोटा बा चूल्हा के ठिकान नहीं बा कोई नहीं जाने ना कौन सी हो की बागे नाचे गावा झूमा हमनी के संगे संगे एमबीसी रेडियो के जरिए AM2 रेडियो मॉरिशस। और बोल जरा संगतिया कि जीवन में चार गो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रम के पालन हमनी के चेहरा करे के अगला गीत टुकुर टुकुर देखेले अब के टुकुर टुकुर देखता चले एक साथ देखब जा। और भी देखब सर लाइन पे कौन संगतिया बस सोनन चितंग की। सोनन जी नमस्ते।
1: राम जी नमस्ते।
0: कैसे समाचार?
1: हाँ अच्छा हो तू अच्छा हो ना।
0: हाँ बड़ा जोर गमट होता।
1: हाँ होता सुना था हम। हाँ रेडियो मॉरिशस में सुना था।
0: और सब ठीक परिवार? हाँ चले कर ना आँख झुबा तेज़ है गावा तेज़ है। अरे बोला। हाँ बोला
1: जा हम जाने ना हम सुनानुयान के गीत हम
0: हाँ जाने ना
1: सोना
0: है सोना
1: सुनानुयान के गीत। हाँ
0: बोले हमारा नाम है सोना हम तो के पिया सिद्धोना
1: सिद्धोना।
0: अरे बोला कौन गीत सुनानुयान के
1: खातिर
0: मांगते
1: पत्नी माला
0: सुनन चितंकी सब चितंकी परिवार के लिए। ओके जी बहुत धन्यवाद। हेलो संगतिया शेला ग्रैंड रिवर साफ सी से। हेलो
2: हेलो
0: शेला जी नमस्ते कैसे समाचार?
2: नमस्ते
0: चला था
2: ना
0: गमट हुआ था। बोला अगला गीत।
2: हाँ अगला गीत मेरे नाम बाप आपके सुंदर लाठी तू ही होगा
0: लीलो माथुर के सुंदर लाठी खोजब खोजब साहब यार बोला
2: तोहर खातिर सब हमर परिवार बेचैन खातिर।
0: अरे बहुत धन्यवाद फोन कर रहा।
2: अरे धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद। और कुछ कहते वाला है अनीता त्रियोले से। अनीता जी नमस्ते।
3: नमस्ते प्रताप जी
0: कैसे समाचार?
3: समाचार ठीक नहीं मा मारा ढो रही।
0: आयु मामा कैसे गे माय से मारा
3: प्रार्थना
0: कर भगवान से तू अच्छा हो जाए बाली से।
3: प्रताप बाबू
0: हाँ बोला
3: एगो गीत डाल दिया हो गीतवा हमारे सब परिवार के
0: कौन सा
3: है सलाम वालेकुम नमस्ते बोंजू
0: सुन गा द
3: सलामकुम नमस्ते बोंजूर गुड मॉर्निंग बड़ा कमे भी
0: चला दियो आपसे

0: सर्गीत फिकर नहीं करिए
1: हां मतलब लाइक आलू खाती ने
0: आली हां सलाम वालेकुम नमस्ते बोंजू ला ला ला ला ला ला ला ला हाउ आर यू जी हाँ चलावब सर जरूर तोहर गीत और या तो गीत के भरमार लगल बा और जरूर या परी चलो के साथ देव थे जा रेडियो मॉरिशस पर सांझ के 6 बजे ले ओके अभी बोल बोले कि वो गीत गिरा मंगला सुना सुनन चुचांकी मंगला का सुना नयन के वो गावल गीत ओके नोटरडाम से के हब्बा नहीं काठोबोन से कमला जी नमस्ते
2: नमस्ते प्रताप जी
0: कैसे समाचार
2: अच्छा तो हर समाचार बोला
0: बड़ा जोर गमट हुआ था बोला
2: हो के चाहे ला गमट छोटा तक कमरवा चाहे ला
0: तक कमरवा डुलाव से ना हां बोला
2: हां
0: बोला
2: खराब घर
0: अगला में खाते हैं अगला गीत के खाते
2: हम परिवार खाते हैं और बेटा खातिन बहू खातिन और हम सब लड़का लोग खातिन सब हम संगतिया लोग खातिन गांव में और गीतवा डाल दिया शहर में महल बनवा दिया हो बलमा
0: शहर में महल बना दिया ओके जी बहुत धन्यवाद न तो नाम से रिहाना आई गीत रिहाना फेनिक्स की जो रहेगा आई गीत खातिर बोल बोले

0: बोले बोल बोले संगतिया लोग गिनजान में ढेर कोई ऐसन बा जेकर पेट में कोनो बात नहीं रहेगा। ऐसन व्यक्ति से दूर रहिया, कहे कि ऐसन व्यक्ति पर नहीं सब कोनो चीज की भरोसा करी। एक दिन से की तोर बात लेके सब कोई के बोल रही। ऐसन भी लोगन बा दुनिया में। सुंदर लाठी अगला गीत है लीलो माथुर गावल सुंदर लाठी। और देखो सर कि गीत के मांग कर लग बा बिगो संगतिया बा लाइन पे। हेलो हेलो नमस्ते
1: नमस्ते
0: के हवा जा
1: हम देवयानी रोजबे से
0: तो हाँ स्वागत बा देवयानी बोला
1: हाँ बस हम मन कर के गोगित की फरमाइश करे के
0: हाँ कौन गीत
1: हम पेनिला सरिया बला मैं देखे दूर से कहे मन मारे बला मैं देखे दूर
0: सुम्बाती दुमन सुम्बाती दुमन गए लगभग गीतवा
1: हाँ पफे ने जाने जाना के गए लेबा
0: आ जा जा जा हाँ
1: बस सभी सभी परिवार के लिए गणेशैया ललुआ गोकुल बेंडूर सभी परिवार की ओर से सबके लिए
0: हाँ
1: के लिए भी
0: और अभी कितना कितना बजे से हमने सुना तो वह कितना बजे से सुना तो वह सांझ के दिन
1: हम हर रोज सुनी ला
0: रोज के सुनी
1: ला फरमाइश करते रहिए आगे बेस एफएम में अबे आई एम टू सब में
0: रही रेडियो रेडियो मॉरिशस हाँ और
1: जी तो कर रहा हमको ना फरमाइश नहीं करे थे
0: कैसे
1: कहे बेचार बेचार एक कुमन का जिलक
0: ए ता हमने की राजू हमेशा खुला रहता लोग खाते ठीक बा
1: हम सुनते रही ला अपने अब सुनते नहीं प्रॉब्लम नहीं बा हमार होने होने होने दे सकते ही जाए हमें फरमाइश नहीं जाता उधर
0: ए ता नहीं हमने यहाँ पर इतना गीत चला
1: सब ठीक अब ये कुछ याद कर दी हमारे कुछ सही कर जाता
0: बहुत धन्यवाद हमने की याद कर ला ठीक बा
1: Okay.
0: आली अनीता जी हमन फ्लिको फ्लैग से तोहर स्वागत बा अगला गीत तोहर खातिर आफे सैपिया से तोहर खातिर चित्रा मदार बे से अनीता कविता कमला धीनु मातवा से गीत तोहर खातिर चली तोहर सब परिवार खातिर सुंदर लाठी और विश्वानी पुत्र जो हमले से गीत तोहर खातिर बसंती वो बासन से हवन गीत तोहर नाम फिर है गीत चली लाजवंती तोहर खातिर भी बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर लाठी

0: माँ बाप की सुंदर लाठी तू ही हवा हो। माँ बाप लोग लड़का लोग के पोसे लड़का लोग बड़ा तो कब कब लड़का लोग अपन माँ बाप के भूला जा रहा अपन माँ बाप के नहीं भूल तू अपन माँ बाप के सुंदर लाठी बनिय। और ई महीना के अंतिम वीकेंड के यानी कि भाई मई महीना के अंतिम वीकेंड के हमने मनाओ से मदर्स डे मातृ दिवस तो पैसा रमसिया माय खातिर चरक को कार्डो किने के हो कि नहीं ईशान की पहुँच बज के 26 मिनट। और स्वाभाविक सी बात है कि हर कपल में हर दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में कब कब नोक झोंक होला। पति को बात बोला तो पत्नी नाराज हो जाला, पत्नी को बात तो पति नाराज हो जाए, पर दोनों के चेहरा एक दूसरे के बैठ के मनाए के ये सब कपल में है, स्वाभाविक बात है, कदापि नेचुरल है। अब चलो सुरभ जा सलाम वालेकुम माफ करिए सलाम वालेकुम नमस्ते बोश बहुत ही प्यारा संगीत। और गीत गैली हवन विष्णु हरि इंदिरा चिंताराम जीवन गे तोहर कते तोहर बेटा जाय बहु पूनम ऑस्ट्रेलिया में हवन जा साथ में चंदन बेटा चंदन बहु प्रिया सलोनी दामाद और सब चिंताराम परिवार का तेरा गे चली रतन निहाल गांव से हवन जा बहुत बहुत प्यार के साथ गीत तोहर कते। और अभी गुरसंगतिया बाल लाइन पे बसंती कवि से इंतजार कर रहा था सुनब जाओगे। हेलो बसंती
1: प्रताप जी नमस्कार, मैं हूँ बसंती।
0: नमस्ते बसंती
1: जी, एक सुंदर गाना भोजपुरी गाना में मेरा नाम जोड़ देना। आए हमारे सभी परिवार के लिए, आपके लिए, सभी एमबीसी के स्टाफ के लिए भी।
0: ओके जी चला दो, सुनते रहो। और कुछ सुनते वाला पे हेलो
2: हेलो भाई जी नमस्ते।
0: नमस्ते की हवा जा
2: हम तो कौशिक से प्रतिभा हमारा एनिवर्सरी रहल सु के भाई जी एगो गीत मांगे थे हमारे पति के वासुदेवा मोहन के गीत।
0: वासुदेवा मोहन
2: दादा के कहानियाँ सुने सब नथियन नाती लोग खाती डाल दिया।
0: अरे बहुत धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: आपका। ओके जी और एक संदेश लाइन पे हेलो हेलो हेलो
3: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते जी तोहर नाम
3: नलिनी
0: सैंपिया से बोला
3: एगो गीत मांगा है किलो की फैमिली के और इसी हमारे कुजिन बेलगो लालिता मोर मामी और एगो कुजिन रहेला कौचे एगो पोविडांस सुनीता एगो भोजपुरी के गीत डाल दिया था।
0: अरे चला दियो आपसे बहुत धन्यवाद। चला एक साथ सुने सलाम वालेकुम नमस्ते बोंजूर। हाँ बहुत ही प्यारा सा विष्णु हरि के गावल और जितना कोई हमने की शादी होता बस शादी देते रहे गमटवा करते रहे सांझ के 6 बजे रही।

एक से एक बढ़िया भोजपुर गीत और अपन रेडियो एमबीसी रेडियो मॉरिशस एएम 2 रेडियो मॉरिशस पर अगला गीत है जोड़ी छोकरी से प्यार करी रहा कुनाल हीराल की आवल गीत गीत चंपा रामगतिया के उसे कर घरोला बेटा पतो बेटी दामाद सब रामगतिया परिवार खातिर देविका रामगतिया गीत तोहरों खातिर तोहर घरोला तोहर बेटा तोहर बेटा पतो बेटी दामाद और सब रामगतिया परिवार के नाम सुनील डोमा है गीत तोहरों खातिर तोहर पत्नी बेटा बेटी खातिर राधा सी बालक है गीत तोहर खातिर तोहर बेटा तोहर सब परिवार खातिर सुदेश जसवा है गीत तोहर खातिर चली शैलेश महावीर जी है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर लड़का और तोहर पिताजी जीवन महावीर खातिर जिमी दुखिया है गीत तोहर खातिर राजमन्ना है यो गीत चलाता तोहर नाम और जितना कोई हमने किसा दे था रेडियो मॉरिशस पर गीत तो लोग नाम एक जोड़ी छोकरी से प्यार करेगा गीत संगे संगे गापसा मन करता नाचे के कमरवा डुलाई के नाचे गावा झूमा जोली छोकरी से प्यार करा

जोली छोकरी से प्यार करिए, बहुत ही प्यारा सन गीत रहल सांझ के 5:40। दादी प्रभावती हमने सुनो तो नोवेल फ्रांस से प्रभावती लो नोवेल फ्रांस एरन गीत संगीता मंगलक बकर दादी प्रभावती खातिर पियर पियर उठी के नगिनवा। अब नगिनवा कौन सी बोला था पियर पियर उठी पर, चलो एक साथ सुने संगीता की ओर से दादी प्रभावती खातिर।

एक दिन तू चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, पर तू कोई के नीचा नहीं दिखाया, कोई के हंसी मजाक नहीं उड़ाया, कोई के दिल नहीं दुखाया। फिर कोई बड़का बड़का पूजा करे रहा, पूजा पाठ कर सब, कोई के दिल दुखा देवे सब। तो लिखल बामनी के वेद पुराण ग्रंथ में लिखल बा, तू सब कितना बड़ा बड़ा पूजा करे, अगर तू कोई के दिल दुखा दे रहा तो पूजा व्यर्थ हो जाला। ये खातिर पूजा पाठ के साथ साथ सबके मान सम्मान करिए, कोई के हंसी मजाक नहीं उड़ैया। अगला गीत देखछी में पकैया राजा, संभावती दुमन गीत गेरे वन। और ये तो हमने चलावती हंसिनी के नाम, हंसिनी जुड़ल बा थ्रियोली से। सबका ककतिया परिवार हवन जावा से, महाराणा प्रताप ने थ्रियोली तो आविष्कार को परिवार, ककतिया परिवार जीराखन परिवार थ्रियोली से। फिर है गीत चलावती से उदय धनी राम के नाम, रहरन रिव्या जुपस्त कर पत्नी बेटा पतो बेटी दामाद और सब परिवार के लिए। प्रवीण बुधन आप हवन रिव्या रिजोंगी से, ओकर माँ ओकर पिताजी और सब बुधन परिवार के नाम है गीत चली। है गीत हमने चलावती से चाची लीलावती खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ, चाचा आत्मा राम है गीत तुहर खातिर। जितना कोई कोशिश करता है लाइन नाम ही रहता है गीत तोरो नाम देख ची मैं पकैया राजा। और ही गीत चलावती से हमने उस सब लोगों के नाम जो विदेश में हमने किस सुनता,

देखची में पकैया राजा और प्यार से खाइए और अन्न के कबो अपमान न करिए। चाहे कोंच भी पकल बा, दाल भाजी आलू भुंजल कोनो भी तरकारी तोहर घरोली या तोहर माता जी तोहर कति तैयार कर लगवा तो के प्यार से अपनैया। अन्न अन्नपूर्णा गो देवी है, एक छा मान सम्मान करे के बहुत मुश्किल से खाए के मिलेरा, ये खाए के अपमान नहीं करे, खाए के जाया नहीं करिए, खाए के गस प्याज नहीं करिए। आजकल खरीजाली मौत है, खरीजने रचिक होता दुनिया भर में लड़ाई खातिर तो खातिर।

ऐसा खाए की गास्पी नहीं करे कि जो खाए की मिली कि गोर लग के खाया जाए। अभी सुनब जाएगो अंतिम गीत ही प्रोग्राम के विनोद शिवदत्त के गावल है बाप दादा लोग के बोली है गीता चरावत इस चंद्रमुनि परिवार खातिर श्रीमय कन्या से हवन बहादुर परिवार न्यू ग्रोव से है गीत चरावत सब कौलेसर परिवार रोजबेल से निधु परिवार मेबर्ग से बिना कुबुसामी मेबर्ग रह रहे गीत और खातिर तो घरोला तो सब लड़का लोग खातिर विश्वानी बाबूलाल लाहौजा से गीत तोहर खातिर तोहर सब बाबूलाल परिवार के नाम सुरमा दुखी है गीत तोहर खातिर तोहर घरोला तोहर बेटी हन्ना और तोहर सब नबीहा और सब दुखी परिवार के नाम और जितना कोई अभी इनकी सुनता रेडियो मॉरिशस पर गीत लोग के नाम बाप दादा लोग के बोली। और हे गीत के संगे हमने तो लोग से इजाजत चाहब जा सांझ के 3 बजे से अभी हमने के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद लोग के फोन कॉल्स और मैसेज खातिर शुक्रिया। 6 बजे से मजा पूरा समाचार बुलेटिन हम निकल तो लोग की मुलाकात है कल लेंदी के रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। तब तक हमने की इजाजत दे अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबके प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय लव यू ऑल गॉड ब्लेस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं।

रविवार 10 मई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में पेनाल्टी पॉइंट्स सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित है। इसीलिए मंत्रिमंडल ने इसे अपराध के लिए सजा सख्त करते हुए पॉइंट्स 5 से 10 बढ़ाकर 10 किए जाने की मंजूरी दी है। मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की दिशा में देश के पूर्वी इलाके खासकर कैगोलिन गांव में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गहलोत राजपूत महासभा के अध्यक्ष के अनुसार मॉरिशन सरकार इस महान योद्धा के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर देश में राजपूत संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर रही है। कल 11 मई से केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन शुरू होगा। 2 दिनों के दौरान चलने वाली चर्चाओं में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, युवा, रोजगार और अफ्रीकी महाद्वीप के सामने संप्रभुता को लेकर मौजूद चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 1 मई से बिजली के टैरिफ में 15% की बढ़ोतरी लागू की गई है। घर के सामान्य उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर कुछ बदलाव करने से बिजली बिल कम कैसे किया जा सके, इस पर ज्यादा जानकारी इस बुलेटिन में। और विदेश में भारत खासकर दक्षिण प्रांत में साउथ के स्टार विजय ने आज भारत के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण की।

0: नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि देश में पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित हैं। इसीलिए मंत्रिमंडल ने पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा और सख्त करने की मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार ऐसे अपराध के लिए पॉइंट 5 से बढ़ाकर 10 किए जा रहे हैं। समाचारों को बढ़ाते हैं। शुक्रवार को इंजन लिमिटेड की एक पाइपलाइन मरम्मत के लिए साफ की जा रही थी, जब उससे हैवी ऑयल का रिसाव हुआ। तेल नाले में बहकर बंदरगाह के क्षेत्र तक पहुंच गया। इंजन कंपनी ने समुंदर से तेल हटाने के लिए पॉलीग्रीन कंपनी की सेवाएं ली। आज सुबह शुरू हुआ यह सफाई अभियान आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। अनिशा मादाया की रिपोर्ट पर करुणा लालू ज्यादा विस्तार दे रही है।
1: पॉलीग्रीन की टीमें रविवार सुबह से ही घटनास्थल पर तैनात रही। कंपनी ने पानी से तेल और मलबे को हटाने के लिए आवश्यक उपकरण भी उपयोग किए। युधिष राम भरत ने कहा, करीब 250 से 300 मलबे इकट्ठा किए गए हैं। अब तक सब नियंत्रण में है। ये आश्वासित करेंगे कि तेल घेरे से बाहर न जाए।
2: Del will qui est non to under control l'équipe là pour qui nous make sure qui peine aucun del will qui sorti en dehors hier y a des hauts.
1: वहीं दूसरी ओर इंजन लिमिटेड ने कहा कि वो सुनिश्चित कर रही हैं कि सफाई कार्य पूरा हो और भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। इंजन पेट्रोलियम के अध्यक्ष क्रिस लक्ष्मी नारायण ने कहा, जैसे ही पूर्ण सफाई हो जाएगी 10 दिनों तक एक फॉलोअप होगा और संबद्ध लोगों को एक रिपोर्ट सुपुर्द की जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय को भी, ताकि स्थल की स्थिति के बारे में सूचित की जा सके। कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ कल सुबह एक मुलाकात की जाएगी और इस हादसे के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।
3: On va analyser la cause.
1: सफाई अभियान आने वाले दिनों तक जारी रहेंगे और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच भी शुरू कर दी गई है।
0: और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है कि देश में पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ने पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा और सख्त करने की मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार ऐसे अपराध के लिए पॉइंट 5 से बढ़ाकर 10 किए जा रहे हैं। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से अधिकारियों ने एक बढ़ती हुई समस्या पर ध्यान दिया है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का

0: उपयोग। दर्ज की गई 6400 यातायात उल्लंघनों में से लगभग 17% मामले इसी से जुड़े हैं, जिसे सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। कैबिनेट ने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत दंड को और सख्त करने को मंजूरी दे दी है। 50-60% लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल, बस, लॉरी सब में देखा गया है खुद की, अपने परिवार की और दूसरों की जान जोखिम में डालती हैं। रास्ते पर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, खासकर फोन के कारण। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, सोचता हूँ अच्छा फैसला है। चालकों से अपील करूँगा, खासकर बस ड्राइवरों से बहुत सावधान रहना चाहिए। कई लोगों की जानें हमारे हाथों में होता है, हमारी भारी जिम्मेदारी होती है। नई व्यवस्था के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले पेनल्टी पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे, जबकि पहले ये 3 से 6 अंकों के बीच था। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा, सभी जानते हैं कि जब ड्राइवर मोबाइल का उपयोग करता है तो खुद की और दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए कैबिनेट ने अंक बढ़ाने का फैसला किया। अब ये 5 से शुरू होता है, 28 दिनों में अदायगी नहीं की गई तो 10 अंक हो जाएंगे और जुर्माना भी दुगना हो जाएगा। ये स्पष्ट करूंगा कि 33 उल्लंघनों के लिए जुर्माना नहीं बढ़ा है, केवल अंक बढ़े हैं। अतः गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इस कदम का उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। ये उल्लेख्य है कि इस साल के जनवरी महीने से पेनल्टी पॉइंट्स प्रणाली लागू होने के बाद से सड़क सुरक्षा के आंकड़ों में सामान्य स्थिरता देखी गई है। सरकार अगले सप्ताह से रोड ट्रैफिक एक्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगी, ताकि ये नया प्रावधान जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कल 11 मई से केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन शुरू होगा। वहां अंतिम तैयारियां पूरी की जा रही है। इस महत्वपूर्ण अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन में कई देशों के राजनीतिक नेता, निवेशक, आर्थिक ऑपरेटर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2 दिनों के दौरान चलने वाली चर्चाओं में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, युवा रोजगार और अफ्रीकी महाद्वीप के सामने संप्रभुता को लेकर मौजूद चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच ये अफ्रीकी महाद्वीप के लिए संबंधों और सहयोग को ज्यादा मजबूत करने का एक मौका रहेगा। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
2: सम्मेलन कक्ष में अफ्रीकी और फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडलों के आगमन से पहले इस बड़े आर्थिक और राजनीतिक आयोजन की अंतिम तैयारियां जारी हैं। ये शिखर सम्मेलन 7 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहेगा: ऊर्जा परिवर्तन, वित्तीय संसाधनों का जुटाव, ब्लू इकोनॉमी, टिकाऊ कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूती और साथ ही अफ्रीका में शांति और सुरक्षा। 11 मई का दिन इंस्पायर एंड कनेक्ट विषय के अंतर्गत एक व्यापारिक मंच के साथ शुरू होगा, जिसमें फ्रांस और अफ्रीका के आर्थिक साझेदारी संबंधों की गहराई को उजागर किया जाएगा। 12 मई को अफ्रीकी राजनीतिक नेताओं की बैठक आयोजित होगी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों भी उपस्थित रहेंगे। ये बैठक मुख्य रूप से विकास की फाइनेंसिंग और वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित रहेगी। युवाओं की शिक्षा और रोजगार, संप्रभुता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में होंगे। साथ ही अफ्रीकी संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए विदेशी मीडिया भी सक्रिय हो चुकी है। नैरोबी की सड़कों पर केन्या में अपेक्षित कई खास हस्तियों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के कुछ निष्कर्ष आगामी G7 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में भी शामिल किए जाएंगे, जिसकी मेजबानी फ्रांस 15 से 17 जून तक करेगा।
1: नई दिल्ली में 7 से 8 मई को बदलती दुनिया में हिंद महासागरीय क्षेत्र विषय पर 10वां इंडियन ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल ने किया। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में महत्वपूर्ण विकास और बदलाव तथा उभर

0: की चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। पॉल बेरांजे ने कल आधिकारिक तौर पर अपने नई पार्टी फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस की लॉन्चिंग की। वाक्वा नगर पालिका में लगे इस एक जुटाव के दौरान एमएमएम के पूर्व लीडर ने इस पार्टी के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया और आने वाले कुछ महीनों के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया। नौजवानों को कृषि और ब्लू इकोनॉमिक क्षेत्रों की ओर कैसे आकर्षित किया जाए, मोंट्रेजो में लॉन्च किए गए नेशनल यूथ चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड फोरम का उद्देश्य इसी नई गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट यूथ सर्कल FAO द्वारा समर्थित और सतत परियोजनाओं पर केंद्रित इस परियोजना से लाभ उठा रहा है। उद्घाटन समारोह के मौके पर उपस्थित डॉ. अरविंद बुलेल ने सतत कृषि खाद्य क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में एक संरचित दृष्टिकोण की उम्मीद जताई। 1 मई से बिजली के टैरिफ में 15% की वृद्धि लागू होने के बाद से कई मॉरिशन निश्चित रूप से अपना बिजली इस्तेमाल कम करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपना रहे हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो या फिर स्टैंडबाय मोड पर रखे जाने वाले उपकरण को लेकर हो। रोजमर्रा के जीवन में कुछ विशेष आदतें अपनाने से बिजली बिल कम जरूर की जा सकती हैं। ज्यादा विस्तार गीता सुनारायण के साथ।
1: 1 मई से बिजली 15% महंगी हो गई है। ऐसे में यदि आप हर महीने लगभग 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो अब तक आप करीब 1200 रुपये का भुगतान करते थे, लेकिन अब आपकी खपत के अनुसार बिल लगभग 1400 रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसे में बिजली का बिल देखकर झटका न लगे, इसके लिए एक ही उपाय है, बिजली की बचत।
2: Depuis dernier bill, nos billings bien augmenté parce que nous savions qu'on et tout. Mais heureusement que côté climat, l'IVAP est rentré.
3: Je fais attention, mon papa est faire beaucoup de gaspillage parce que sinon, c'est pas facile pour gagner.
1: आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, फ्रिज को ज्यादा देर तक खुला छोड़ने से गर्म हवा अंदर चली जाती है। इसके बाद फ्रिज को फिर से ठंडा होने के लिए अधिक बिजली खर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रिज को 1 मिनट तक खुला छोड़ दिया जाए तो ऊर्जा की हानि 10 गुना तक बढ़ सकती है। सुझाव है, फ्रिज खोलने से पहले तय करें कि आपको क्या निकालना है। फ्रिज के दरवाजे की रबर सील की जांच करें। इलेक्ट्रिक शावर आपकी कुल बिजली खपत का 30-50% तक हो सकता है। हर रोज 10 मिनट तक इसका उपयोग करने से लगभग 30 किलोवाट घंटा बिजली हर महीने खर्च होती है। सुझाव है, नहाने का समय 10 मिनट से घटाकर 5 मिनट करें। तापमान कम करें, साबुन लगाते समय पानी बंद कर दें। एयर कंडीशनर यानी एसी सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। ये प्रति घंटे 800 से 2000 वाट तक बिजली खर्च कर सकता है। तुलना के लिए कहें तो ये लगभग 40 लेड बल्ब एक साथ जलने जितनी खपत है। सुझाव है, एसी को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, फिल्टर की नियमित सफाई करें। इससे लगभग 15% तक बिजली बचाई जा सकती है। इसके मुकाबले पंखा कहीं ज्यादा किफायती विकल्प है, क्योंकि वो एसी की तुलना में 10 से 20 गुना कम बिजली खर्च करता है। सुझाव है, रात में पंखे का ज्यादा उपयोग करें। ताजी हवा आने के लिए खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि कमरा गर्म हवा का चक्र न बन जाए। पंखे की नियमित सफाई करें और जो उपकरण स्टैंडबाय मोड पर रहते हैं उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वे कुल बिजली बिल का 5-10% तक बढ़ा सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के निदेशक प्रोफेसर खलील इलाही कहते हैं, कुछ उपकरणों को स्टैंडबाय में रख सकते हैं, जैसे डिकोडर, क्योंकि रात के वक्त ऑटोमेटिक तरीके से रिप्रोग्रामेशन होता है। नए जेनरेशन के डिकोडर ऐसे नहीं हैं। सुझाव है, स्विच वाली मल्टीप्लग का उपयोग करें ताकि सभी उपकरण पूरी तरह बंद किए जा सकें।

0: वॉशिंग मशीन चलाते समय कोशिश करें कि मशीन पूरी भरी हो ताकि कम बार उपयोग करना पड़े। इस्त्री करते समय सारे कपड़े एक साथ प्रेस करें और काम खत्म होते ही प्लग निकाल दें। आजकल काफी लोकप्रिय एयर फ्रायर लगभग 20 से 30 मिनट के उपयोग में 0.4 से 1 किलोवाट घंटा बिजली खर्च करता है, यानी छोटे इलेक्ट्रिक ओवन के बराबर। बिजली की खपत कम करने के लिए खाना पकाते समय इसे बार बार खोलने से बचें। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, ज्यादा किफायती क्या है, बल्ब या ट्यूब? जवाब है दोनों, बशर्ते कि वे लेड हों। प्रोफेसर खलील इलाही कहते हैं लेड यानी लाइट इमिटिंग डायोड जो बहुत ही अच्छा है। अब टाइमर्स भी हैं, ये ऐसे गैजेट्स हैं जिनका उपयोग करना ज्यादा आसान है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 मई के बाद से बिजली की खपत में कमी आई है, जिसमें मौसम के ठंडा होने का भी योगदान है। बिजली की बचत की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है।
1: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की दिशा में देश के पूर्वी इलाके खासकर काहोलिन गांव में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गहलोत राजपूत महासभा के अध्यक्ष के अनुसार मॉरिशन सरकार इस महान योद्धा के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर देश में राजपूत संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रात केन्या खासकर नैरोबी के लिए रवाना हो रहे हैं। वे वहां अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय अफ्रीका फॉरवर्ड रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस और अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। सम्मेलन में नवाचार यानी कि इनोवेशन, आर्थिक विकास, युवाओं के भविष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर बात होगी। प्रधानमंत्री ब्लू इकोनॉमी पर एक गोलमेज की सह अध्यक्षता संभालने वाले हैं। साथ ही मॉरिशस के निजी सेक्टर का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी बिजनेस फोरम में शामिल होगा। इस दौरे का लक्ष्य अफ्रीका के साथ मॉरिशस के आर्थिक और राजनयिक संबंधों को और बेहतर बनाना है। ये शिखर सम्मेलन फ्रांस और मॉरिशस सहित अन्य अफ्रीकी देशों के बीच नए और महत्वाकांक्षी संबंधों को विकसित करने का एक उपयुक्त मंच है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियान नवामारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगी। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कैट्रोबो नगर पालिका में आज वॉइस ऑफ हिंदू के सदस्यों की बैठक लगी, जिसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव समिति का चुनाव किया गया। इस मौके पर संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अपनी शाखाओं के सदस्यों को सम्मानित भी किया, साथ ही भावी राष्ट्रीय बजट को लेकर विचार प्रस्तुत किए गए। वॉइस ऑफ हिंदू पेंशन प्रणाली पर फिर से गौर किए जाने की मांग कर रहा है, खासकर स्कैवेंजिंग और निर्माण कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
2: वॉइस ऑफ हिंदू के प्रतिनिधियों की सभा के दौरान बजट 2026-2027 के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गए। अध्यक्ष कृत मनोहर ने कहा, सरकार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आ रही है। नौजवानों को एक आवास प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करना चाहिए, कृषि की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि आज खाद्य संबंधी कई कठिनाइयां हो रही हैं। सरकार से मांग है कि वे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए फिर से पेंशन पर गौर करें। इस अवसर पर संगठन के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति दोहराई गई। देश भर के विभिन्न शाखाओं से जुड़े सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बच्चों के साथ मानव मूल्यों पर काम करता था, खासकर वे बच्चे जो कम सीन उम्र में स्कूल छोड़ चुके थे। इस पुरस्कार समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में सदस्यों के प्रति आभार जताया गया, खासकर संस्कृति, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में।

0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि विदेशी स्तर पर भारत में खासकर साउथ के स्टॉप विजय ने आज तमिलनाडु के नई मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण की। अपने प्रथम भाषण में उन्होंने राज्य में भारतीय संविधान की रक्षा और ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ काम करने का वादा किया। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आउट ऑफ लिविंग के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया। यह विशेष समारोह संगठन की स्थापना की वर्षगांठ और संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया।
1: बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग का नया ध्यान मंदिर मेडिटेशन और होलिस्टिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित एक विशेष केंद्र है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस ध्यान मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस समारोह में भाग लेते हुए मोदी जी ने आर्ट ऑफ लिविंग संगठन द्वारा आयोजित की जा रही कई राष्ट्रव्यापी गतिविधियों की लॉन्चिंग की। इनमें मानसिक स्वास्थ्य अभियान, गांवों में विकास परियोजनाएं, प्राकृतिक संरक्षण कैंपेन्स तथा सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अपने संदेश में मोदी जी ने कहा कि अगर विजन स्पष्ट है और कार्य सेवा भाव से किए जाएं तो परिणाम सकारात्मक ही होता है।
2: जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है।
1: साथ ही उन्होंने भविष्य निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील।
0: और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे इलाके को प्रभावित करने लगेगा अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात हवाई ढलानों पर बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी। कल सुबह पूर्व दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर हल्की सी बारिश होने का अनुमान है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर 50 सेंटीमीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 5:43 पर जबकि कल सूर्योदय लगभग 6:30 बजे।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। जोली स्ट्रीट कैट्सियर में, जोली स्ट्रीट कैट्सियर में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुवीना दोवारा का प्रसाद, श्रीमती सुवीना दोवारा का प्रसाद, पैदाशी नाम मंगत रॉय,

और जिन्हें सब लोग सुविना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर जोली स्ट्रीट कैथोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए देफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। इलो कॉन्डियाब में 92 साल की 92 years old की श्रीमती केसिया जिन्हें सब लोग लीलो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री आनंद शुरुदीन के घर इलो कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाबला की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। दुखी रोड ग्रैंड रिट्रेट में 28 साल की 28 years old की श्रीमती विदुषा रितु पैदाइशी नाम सिगुलाम और जिन्हें सब लोग विदु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनके पति श्री अक्षय रितु के घर दुखी रोड ग्रैंड रिट्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुनाकई की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। आप सभी सुनने वालों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचती है, तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

प्रेम, दया, करुणा और सत्य का स्वरूप माने जाते हैं। ये इस सृष्टि के पालनहार हैं और हर चीज, हर जीव में उनका अंश बसता है। मनुष्य जब सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उस मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को जारी रखेंगे। भगवान हमें अच्छे कर्म करने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भक्ति और विश्वास से जीवन में सकारात्मकता आती है और कठिन समय में भी हिम्मत बनी रहती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

श्रोताओ, हर धर्म में भगवान को अलग अलग नामों से पूजा जाता है, लेकिन उनका संदेश हमेशा प्रेम और मानवता का होता है। भगवान का स्मरण मन को पवित्र बनाता है और जीवन को सही दिशा देता है।

श्रोताओं, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई होती है, वही भगवान का वास होता है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारी तकनीकी सहायक यूसुफ को हम धन्यवाद देंगे। शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खाती
2: कमर जलसा हंगामा
1: भोजपुरी तड़का।
3: रविवार 10 मई घड़ी मिला ले जा रात के 9:02 होता है। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सबको के स्वागत बातें सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करा जा। आप सबको के पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का लेके चला ले जा, आप सबको के साथ दे के आप सबको के मनोरंजन करे के अभी से लेके रात के 11 बजे लेक। तो कैसे हवा जा? अच्छा हवा जा ना। और आशा करत है जो सप्ताहांत रहल, जो वीकेंड रहल, अच्छा से बीतल और रविवार के दिन है और यहाँ पर ही परिवार के संगे मिल के हमने के संगे जुड़ल हवा जा। आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से लेके रात के 11 बजे लेक हो भरपूर मनोरंजन, जलसा, गमत, हंगामा और भोजपुरी गीत सुने के खुशी रहें। तो सक बजा एक कार्यक्रम में भाग ले, अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत के फरमाइश करें। हमने के नंबर तो याद बाना, सक बजा हमने के टेलीफोन करें 4028085 पर, नहीं तो सक बजा मैसेज व्हाट्सएप करें 5251700005 पर।
4: सलाम

0: भोजपुरी तड़का
1: चलो जाए। यहाँ पर भोजपुरी तड़का एक कार्यक्रम शुरू हो गल बात है और यहाँ पर आप सबको एक फरमाइश जन हमने के मिला था और यहाँ पर अगला गीत खासकर कायरा खातिर हमने करब जा। कायरा के जन्मदिन बातें, कायरा आपके जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना मामा रीता और पापा कुनल की ओर से, दादा विजय बेनी पौसाद की ओर से, सब बेनी पौसाद परिवार, सब बोने वाले परिवार की ओर से कायरा आपके जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक बधाई। और ये जो अगला जन्मदिन के गीत है खासकर आपके खातिर और जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन MBC रेडियो के पूरा टीम की ओर से आप सबको के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामना और ये गीत खासकर आप सबको खातिर।

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का।
2: चरजा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हमनी के संगे जुड़ल हवा जा आप सबको के धन्यवाद। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर ही कार्यक्रम चलाता है बखत। और अगला गीत की ओर हमने बढ़ब जा। रामा राम तोहल जी के गावल गीत है जुबेदा। और ये गीत खास कर लावेनीय के आफिस जी आपके खातिर, आफिस जी भोजपुरी गीत सुने के खुशी रहलन। तो ये गीत खास कर उनकर खातिर और उनकर ओर से जितना श्रोता है बखत हमने के सुनत हवन सबको खातिर।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का। चलो चाहे यहाँ पर भोजपुरी तड़का में अगला जन गीत है बिजमावती संपत जी के गावल गीत है, और ये गीत के फरमाइश आल बाते मौदालबिया से मीराबाई जी की ओर से, मीराबाई जी बखत हमने के सुना था वन, और ये गीत उनकर ओर से उनकर बेटी उनकर दामाद खातिर, और ख़ास कर सब धर्मिया परिवार और सब पायदिया परिवार खातिर। तो सक बचा 4028085 पर हमने की टेलीफोन करे, तो सक बचा व्हाट्सएप करे 5251700 पर।

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का। जी हाँ, यहाँ पर ही अगला गीत की ओर हमने बढ़ब जा। लीलो माथुर जी के गावल गीत है और ये जो अगला गीत है पीतों से अमृता जी की ओर से गीत के फरमाइश आल बातें और भोजपुरी तड़का में ये अगला गीत इन करोर से खास कर सोनिया खातिर, परी खातिर, विश्याम, मीनाक्षी खातिर और पूनम खातिर और यह गीत इनकर पीतों के पूरा परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का। चर्चा भोजपुरी तड़का के दूसर का घंटा में आप सबको एक स्वागत बात है। रात के 10:05 हुआ था और यहाँ पर ये बहुत बहुत धन्यवाद 4028085 और साथ ही 5251707005 पर आप सबको एक साथ हमने के मिला था। बड़ब जामनी अगला फरमाइश की ओर अभिमन्यु हरपाल जी के गावल गीत है और ये जन गीत है खासकर एक फरमाइश आलबाते लाफ्लोरा से भाई राजन की ओर से सिया मांगे अयोध्या के राज और ये गीत इन करोर से सब लक्ष्मण परिवार खातिर।

चला जाए यहाँ पर ही अगला गीत जो ना भोजपुरी बाजा बाजे बॉयस के गीत है और ये गीत के फरमाइश आल बातें पालमा से माहिन जी की ओर से घर दामाद ये गीत उनकर ओर से सब जगमोहन परिवार खाते और खासकर उनकर दीदी मान खाते और जितना कोई भोजपुरी गीत सुने के खुशी रह लन ये गीत उनकर ओर से सबको खाते तो भूले या नहीं 4028085 है नंबर हमने के नेता सकबर जा व्हाट्सएप करे 5251700005

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का।
2: चले जब भाई बहन लोग, रात के 10:25 हो गल बातें। बढ़ अब जामनी अगला गीत के ओर। सुनीता ननकू जी के गावल गीत और ये गीत के फरमाइश आल बातें फौजी साक से रूपा जी की ओर से। रूपा जी, खास कर ये गीत मंगले हवन अपन सब सहेली खातिर और सब रामचंद परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का।
2: चले जा भाई बहन लोग, देखते देखते रात के पौने 11 बज गल बाते। और अभी भी हमने के जन श्रोता लगन हा, हमने के संगे जुड़ल हवन जा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत धोती पोथी पगड़ी विक्रम कोलाचंद जी के गावल गीत है। थ्रियोले से भाई बिहारी की ओर से गीत के फरमाइश आल बाते, खासकर उनकर पूरा परिवार खातिर, प्रीतम रतन और सब बिहारी परिवार। इ वक्त सुदेवी जी वाकवा से हमने के संगे जुड़ल हवन ये गीत उनकर दीदी लालिता खातिर, सब कुशल परिवार खातिर। आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालिंगा से कृष्णी, कृषय, कृषिका, लक्षिता, सब राम रतन परिवार खातिर, हमने के पूरा टीम खातिर, और जितना कोई वक्त हमने के संगे जुड़ल हवन ये गीत उनकर ओर से सब कोई खातिर। परी गीत हमने करब जा मीला जी आपके खातिर, जोन इ बखत हमने के सुनत हवन।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
1: कमर जलसा हंगामा।
3: और ये गीत खास कर बोबासा के बसंती जी आपके खातिर।

भाई बहन लोग एक साथ जन है भोजपुरी तड़काई कार्यक्रम समाप्त हो जाए रात के 9 बजे से अभिलेख आप सबको एक साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 बजे जन है सग बजे सुने सुनहरे पली प्रोग्राम गिनीशा की प्रस्तुति में और रात के 12 बजे से काल फजीर लेख आप सबको एक मनोरंजन खातिर गीत जन है यहाँ पर ही चलते रही तो हमने क्या आज्ञा था नमस्कार शुभरात्रि आप सबको।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुन रहे थे

आज की शाम होगी सिर्फ आपके नाम, पुराने बॉलीवुड के उन अमर नगमों के जो आज भी दिल को धड़कन बनकर जीते हैं हम। तो जुड़े रहे हमारे साथ इन सुनहरे पल सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, और महसूस कीजिए म्यूजिक का असली सुकून। और अगला गाना सारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

0: इस तरह से और मिलना क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूं।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो?
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कभी किसी गाने ने रुलाया है आपको, कभी किसी मेलोडी ने किसी अपने की याद दिलाई है, तो फिर सुनहरे पल आपके लिए ही है मेरी जान। पुराने गीत, खूबसूरत एहसास और यादों भरी शाम, और अगला नगमा सारे लवर्स के नाम जो बस किसी की यादों में खो चुके हैं।

रेडियो मॉरिशस लेकर आ गई है एक ऐसी महफिल जहां सुर, जहां हर सुर में बसी होती है मोहब्बत, और हर गीत सुनाएंगे जिंदगी की एक कहानी, सुनहरे पल पुराने बॉलीवुड गानों के साथ। पुराने गाने के शौकीन हो ना आप, तो चलिए जी, ये नगमा खासकर आपके लिए और आपके परिवार वालों के नाम।

दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए मेरी जान, क्योंकि गीतों के जरिए हम आपके दिल की बात पहुंचा रहे हैं आपके चाहने वालों तक, क्योंकि शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच ये खूबसूरत सा सफर, सुनहरे पल, जहां पुराने बॉलीवुड गाने फिर से सजाएंगे यादों की महफिल, आपकी यादों को चीरने के लिए गुस्ताखी माफ, लेकिन मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादें दोबारा याद करना कितना अच्छा लगता है।

लता जी की आवाज का जादू, रफी साहब के सुरों की मिठास और किशोरता, उनकी तो मस्ती कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ एक साथ सिर्फ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। और उम्मीद करते हैं कि आप हर एक गीत को दिल से एंजॉय कर रहे हो।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए ये गिरिशा को आप इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत गाने हम सुना रहे हैं कि हम खुद उसमें खोते चले जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हो चुका है टाटा बाय बाय बोलने का। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत सुनहरे पल में, जहां पे फिर से सजेगी खूबसूरत यादों का सफर। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस